लोक में भगवन नाम रूपी धन, पर ठगों ने तुम्हें भ्रमित करके मनोरंजन में फंसा दिया। काम क्रोध की क्रीड़ाएं ये हमारा नाश करती हैं, हम जान नहीं पाते। ये मन बुद्धि ठग का काम हमारे साथ कर रहे हैं। निष्काम हो करके, क्षमावान बन करके, नाम जप करते हुए जो हमें परम पद की प्राप्ति का ये अवसर मिला, हम काम क्रोधाद से युक्त हो करके अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। पर शुद्ध हृदय ना होने के कारण ये बातें आपको समझ में नहीं आती। इसलिए प्रार्थना है, किसी की तो मान ले। ऐसा तो नहीं कह रहे कि आप 8 घंटे पद्मासन लगा के बैठे, 24 मिनट मात्र, 25वां ना बैठना, 24 मिनट आप एक नियम ले लो,

रमण करते हैं वो एक घड़ी हमारे प्रभु के लिए दे दे, फिर वो देखे उनका जीवन कैसा श्रृंगारित होता है। अभी उजड़ा हुआ जीवन है, उजाड़ दिया इन विकारों ने आपको। थोड़े दिन नाम जप कीजिए, फिर ऐसा अनर्थ निवृत्ति होकर रुचि होगी कि आपसे कसम दिलाई जाए कि अब आप नाम जप ना करना, तो भी आप नहीं, कसम का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। बिना नाम जप के आप जी नहीं सकते। ये नाम ऐसा अमृत है, ये ऐसा महाअमृत है कि जिसने चखा वो निहाल हो गया और दूसरों को निहाल करने वाला बन गया। अंतिम समय सुधर जाए ये खास बात है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाए वैसे वैसे आपकी भूमिका बढ़नी चाहिए अध्यात्म की। आप खिलवाड़ में मत अपने जीवन को नष्ट कीजिए। यावत स्वस्थमिदं कलेवरम यावत च दूरे जरा, जब तक बुढ़ापा दूर है शरीर स्वस्थ है, प्रसन्न मुद्रा में आप निश्चय करो मुझे केवल प्रियालाल चाहिए। जो मनुष्य अंतकाल में मेरा स्मरण करता है, स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए, तनिक भी संदेह नहीं है। जो अंतिम समय भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है वो श्री भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए हमें पता नहीं हमारा कब अंतिम समय है, तो एक एक क्षण निरंतर अंतर रहित तैल धारावत भगवन नाम भगवत स्वरूप मंत्र प्रभु की लीला गुणों के चिंतन में व्यतीत करना है। पता नहीं कौन सा क्षण अंत हो, हमारी बाजी हार जाएगी अगर हम अंतर बना लेंगे।

नाम जापक पहुंच जाए, उसको नाम कीर्तन सुना दे, उसको भगवान की चर्चा सुना दे, वहां बैठ करके थोड़ी देर मंत्र जप ले, तो उसका निश्चित कल्याण हो जाता है जो शरीर छोड़ने वाला है। कितनी बड़ी महिमा है, अगर वो जीवन में स्वयं ये कर ले तो जरूरत ही नहीं किसी की, ये जीवन ही इसीलिए मिला है। पर अगर कहीं दुर्भाग्यवश उसने भजन नहीं किया और उसको ऐसा संग मिल जाए, कोई भजन करने वाला अंतिम समय उसके समीप, ये बिना भगवान की हेतु की कृपा के नहीं हो सकता। भगवत पार्षद ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे उनके पास, हेतु की कृपालु श्री हरि उस पे रीझ जाए तो ऐसा संयोग बन सकता है। कोई भगवत चर्चा सुना दे, भगवान नाम कीर्तन सुना दे, या वहां समीप बैठकर उसके पास मंत्र जप कर ले, उस वैष्णव उस भगवत प्रेमी महात्मा के सानिध्य से उस वातावरण में यमराज के दूत प्रवेश नहीं करेंगे, उसका कल्याण हो जाएगा। या अंतकाल में ऐसी कोई भयंकर भयावह स्थिति हो और वो अभी मूर्छा को प्राप्त नहीं हुआ, उसको ये याद आ जाए कि इस समय तो भगवान ही हमें बचा सकते हैं, तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाए। यदि ऐसी याद आ जाए उसको, प्रभु की स्मृति एन केन प्रकारेण भी हो जाए तो उसका परम कल्याण हो जाए। ऐसे किसी जीव का शरीर छूट गया है और उसको कोई भगवत प्रेमी महात्मा देख ले मुर्दे को, तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसके शरीर के समीप पहुंच करके उसे छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। या उसकी चिता लगाई जा रही हो उसे देख ले, या उसकी अस्थि राख आदि भी पड़ी हो उसको भी छू दे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। महापातक युक्तावा, एक कोई जवानी शब्द नहीं, केवल तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। महापुरुष भगवत प्रेमी महात्मा कलेवरम वा तदभस्म तद्धूमम, उसके शरीर को छू दे, मर गया है पर, या उसका धुआं देख करके, अच्छा चिता जलाई जा रही, भगवत स्मरण करते हुए देख, उसका कल्याण हो गया। या तद्भस्म, उसकी जली हुई चिता की जो राख पड़ी है छू जाए, पैर में छू जाए, वो हाथ से ऐसे छू ले, या उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। ये भगवान की भगवत प्रेममयी वृत्ति का कैसा महत्व है, देख ले छू ले उस जीव को मोक्ष पद भी प्राप्त हो जाएगी, मुक्त हो जाएगा, वो आवागमन में नहीं जाएगा। जब ऐसी महिमा नाम जापक की है तो आप सोचो, वो नाम क्या आप नहीं जप सकते हैं? अरे ऐसा सौभाग्य मिला है, चूको मत, किसी की मत सुनो, राधा राधा राधा, बड़ा घाटा हो जाएगा यदि चूक गए, अन्य किसी साधन की तरफ दृष्टि मत डालो। कलिकाल में अन्य कोई साधना सिद्ध हो जाए बड़ा कठिन है। जैसे योग मार्ग है, इसकी नींव है ब्रह्मचर्य, कई कई घंटे आसनों पर सुदृढ़ भाव से बैठ करके चित्त वृत्ति को परमात्म स्वरूप मिला, बड़ा कठिन है। आहार संयम वातावरण ये सब, यज्ञ आदि के द्वारा भगवान श्री हरि को प्रसन्न करना, तपस्या आदि के द्वारा बड़ा कठिन है। प्रकृति का थोड़ा भी प्रतिकूल व्यवहार शरीर सहने की क्षमता नहीं रह गई, बहुत ही कमजोर शरीर हो रहे हैं, कैसे आप तपस्या कर सकते हैं? धर्म क्या है इसका परिचय ही भूल गए हैं, कैसे कोई भगवत मार्ग में जो अन्य साधन है उन पर चल सके? एक उपाय

पात्र चाहे, चाहे जैसे हो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी नाम जप। इसके उदाहरण में प्रसंग चल रहा था अजामिल जी का, ना तो ब्रह्मचर्य रह गया, ना पवित्रता रह गई, ना धर्म रह गया, और अभक्ष पदार्थ खाते थे, मांसादी मदिरा आदि, घोर वैश्यागामी। कहीं भी कोई भी ऐसा आप नहीं रह गया था इनके पास कि जिससे इनको परम कल्याण की तो बात जाने दो, किसी तरह नरक से बचाया जा सके, कोई उपाय नहीं रह गया था। यही है भगवान की हेतु की कृपा, जब द्रवही दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। भगवान जब जिस पर प्रसन्न होते हैं तो संत संग प्रदान करते, संतों से अपनापन हो जाता है, ऐसा अपनापन कि वो फिर उनके बिना जी नहीं सकता, भगवत चर्चा के बिना जी नहीं सकता, भगवत प्रेमी महात्माओं के संग के बिना नहीं जी सकता। बिछुड़त एक प्राण हरि ले ही, अगर संतों से बिछुड़ना पड़े तो ऐसा कष्ट होना चाहिए मानो हमारे प्राण छूट रहे हैं। ये भगवत कृपा, बिना श्रद्धा के भी संत संग कल्याण कर देता है। कर दिया अजामिल का, अपने पुत्र का नाम नारायण रखना अब जो हो, पुत्र मोह में नारायण पुकारा, भगवान श्री हरि के दिव्य पार्षद उसी क्षण प्रकट होकर के यम पाश से उन्हें मुक्त किया अजामिल को। यम दूतों को, तुम धर्म की वृत्ति को जानते हो, धर्म किसे कहते हैं अधर्म किसे कहते हैं, पर यहां धर्म का लेश नहीं दिखाई दे रहा, तुम तो निरपराध को दंड दे रहे हो। पूरा प्रसंग आपने सुना, हरि पार्षदों ने भागवत धर्म का निरूपण किया, किसने कोटि कोटि जन्मों का प्रायश्चित कर लिया पुत्र के ब्याज से ही सही, पर इसने हमारे स्वामी श्री हरि के नारायण नाम का उच्चारण किया। अजामिल के हृदय में आया कि पुत्र के बहाने नारायण बुलाया तो इन महान दुर्लभ भगवत पार्षदों के दर्शन, यम पाश से मुक्ति, यदि मुझे कुछ भी समय अब दे दिया जाए तो मैं पूरे चित्त से नाम को जपूं, नाम मैं हो जाऊं, ऐसा प्रार्थना करना चाहते थे, पर बोलने का अवसर नहीं दिया भगवत पार्षदों ने, अंतर्धान हो गए। यद्यपि मैं इस जन्म में महापापी हूं, फिर भी मेरे ऊपर संतों की कृपा है, यह हेतु की कृपाल संत, अगर उन्होंने मुझे बालक का नाम नारायण रखने को न कहते तो हमारा आज सौभाग्य न होता। कहां मैं कुलटागामी अपवित्र, और कहां भगवान का सर्व पाप नाशक मनोमोहक नाम, ये तो केवल संत कृपा। हाय मैं महाकपटी पापी निर्लज्ज, ब्रह्म तेज को नष्ट करने वाला, पर मैं कृपा पात्र हो गया, तभी मेरी जिभ्या से ये नाम निकला। आज से मैं दृढ़ निश्चय करता हूं, ये संत संग का फल है। सबको ऐसा ही दृढ़ निश्चय करना चाहिए। अब मेरा जितना भी समय है, मन इंद्रियों के अधीन ना होकर प्राणों को वशीभूत करके मैं ऐसा भजन करूंगा कि एक क्षण भी प्रभु का नाम नहीं छोड़ूंगा। देखो निश्चय में ताकत है, निश्चय में करते करते ऐसा निश्चय होगा तो ऐसा भी होगा, अगर आज ही निश्चय तो ऐसा भी होगा। जैसा सोचना है वैसा तुम अभी निश्चय करो, तुम्हारी सोच ही तुम्हारे आगे का जीवन होगा। जैसा जीवन तुम चाहते हो, सुखमय शांतिमय, वो केवल तुम्हारी सोच होगी, सोच से ही वो जीवन बनेगा, और जैसी सोच करनी अभी निश्चय करो। यदि भोगों का चिंतन, भोग भोगों की क्रियाएं, नाना प्रकार का छल कपट, तो दुर्गति अशांति क्लेश विषाद, क्या चाहिए तुम्हें, शांति सुख आनंद, तो निश्चय करो। अजामिल जी निश्चय करते हैं, अब मेरे को जो समय मिलेगा
मन और इंद्रियों की गुलामी नहीं करूंगा, अब लो निशानी अब नान से जितनी श्वासें हैं अब बहुत सावधानी पूर्वक नाम जप करते हुए व्यतीत करूंगा। ये बड़ी बात। अब ये वासनाएं मुझे फंसा नहीं सकती। क्या हो गया? निश्चय हो गया। हमारा निश्चय ढुलमुल होता है, आज नहीं करूंगा, फिर वही जहां वेग आया फिर उसी में प्राण निकल जाए, नए आज्ञा के विपरीत कदम नहीं, अभी महात्मा बन जाओगे। महात्मा आंतरिक स्थिति होती है। भगवान की इस माया ने मुझ अधम को कैसा फंसा लिया, बहुत ही नाच नचाया, अब नहीं नचा पाएगी। क्यों? क्योंकि आप समर्थ बल मिल गया नाम का, अब नहीं नचा पाएगी। प्रहलाद जी भगवान श्री नरसिंह देव से कहते हैं, मुझे आपकी माया से कोई भय नहीं, आपका चरणामृत और आपका नाम जाप करके, आपकी लीला कथा का गायन और श्रवण करके मैं इस दुस्तर माया को पार कर जाऊंगा। मुझे भय है तो इन प्राणियों को जो आपके नाम से आपकी लीला कथा से दूर हैं और माया प्रपंच में रत हैं, प्रभु इन पर कृपा कर दीजिए, अब मुझे आपकी कृपा की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपकी कृपा हम पर हो गई है, हमें नाम मिल गया है, आपका चरणामृत मिलता है, आपकी लीला कथा, इससे बढ़कर भगवत कृपा और क्या होगी। प्रभु कृपा चाहिए इन प्राणियों को। भगवान नाम का निरंतर रटन करते हुए अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। नियम लो अव्यर्थ कालत्वम, कबहू काल वृथा नहीं जाए। राधा राधा, हर सेकेंड सार्थक करो, कोई भी सेकेंड खाली न जाने पावे, यही चतुरता है। राम ही भजे ते चतुर नर, बेईमानी करना, छल कपट करना, इंद्रियों की गुलामी करना, ये चतुरता नहीं है। चतुरता है जो तुम्हें समय मिला है उसमें नाम रूपी धन, एक बार बोला राधा, जमा हो गया श्री कृष्ण की बैंक में, कभी इसका विनाश नहीं हो सकता और ये ब्याज सहित आपको मिलेगा, महासुख मिलेगा। सोचो, एक नाम त्रिलोक तारे, ऐसे नाम को हम क्यों छोड़ेंगे, हर समय नाम जप करेंगे, पता नहीं कौन सा अंतिम समय हो, क्योंकि अंतिम समय राधा नाम स्मरण हुआ तो हम पहुंच जाएंगे किशोरी जी के चरणों के समीप। अजामिल के चित्त में संसार से घोर वैराग्य हो गया। अब वो हरिद्वार गंगा के किनारे बैठ करके शांत भाव से अपने चित्त को भगवान के नाम में लगा दिया। भगवान नाम में लगाते ही मन शांत, बुद्धि शांत, निर्मल हो गई, क्योंकि निश्चय बड़े जोर का हो गया ना। ये निश्चय जोर का हुआ भगवत पार्षदों के दर्शन से। भगवान के एक नाम उच्चारण मात्र से उसकी कैसी महान सदगति हुई। सद्यो विमुक्तो भगवन नाम ग्रहण, देखो भगवान के नाम का उच्चारण का फल, नाम ने ही तो सब बात बना दी। वेदांत पढ़ने की जरूरत नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं, नाम जप करो अलग एकदम दिखाई देगा, अलग दिखाई देगा। देखो ना अजामिल को कैसे अनुभव हुआ स्वरूप का, नाम जप करो सब हो जाएगा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं, अलग से करोगे तो विक्षेप हो जाएगा, क्योंकि सोहम और दासोहम का मार्ग ऐसे है, ज्ञान के पंथ कृपान के धारा परत खगेश लगे नहीं बारा, और दासोहम में करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी, आंख मूंद के दौड़ो वात्सल समुद्र हरि तुम्हें ऐसे घेरे हुए गिर भी नहीं सकते, वहां परत खगेश लगे नहीं बारा, ज्ञान के मार्ग में गिरने में देर नहीं लगती, और बचाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि तुम खुद ब्रह्म हो, बचो माया से। सत्यो भी मुक्त हो, देखो ना एक नाम ने सत्यो माने तत्काल काम बना दिया। नातह परम कर्म निबंध कृंतनम, हा
मुमुक्षताम तीर्थ पदानुकीर्तनात् नयत् पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस्तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। एक कर्म बंधनों का नाश कर देना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। जो इस संसार बंधन से मुक्त होना चाहता है ध्यान से सुन ले, अपने श्री चरणों के स्पर्श से तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले प्रभु के जो जन हैं उनका संग तीर्थपाद श्री हरि के नाम से प्रीति कराता है। बिना संग के नाम में ना परिचय होगा ना प्रीति होगी, भजन न होई संग बिनु भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए धरिए या ध्रु नेम। प्रभु से प्रार्थना करे, हे दीन बंधु दया करके नाम जापक संतों का संग दे दीजिए, भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य दे दीजिए। जिसको संत संग मिल गया और नाम की महिमा सुनने को मिली, नाम जपने का उत्साह मिला, इससे बढ़कर और कोई साधना नहीं है। नाम का आश्रय लेने से नयत पुनः कर्मसु सज्जते मनो रजस तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। आहा, कोई भी कर्म दलदल से फंसा नहीं पाएगा। कर्म को दलदल की तरह कहा गया, जैसे दलदल में गिर जाए तो निकलना असंभव। नाम का आश्रय ले लो, दलदल ही नहीं रहेगा, सूख जाएगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। न नौका की जरूरत है न तैरने की जरूरत है, राधा सूख ही जाएगा, समुद्र ही सूख जाएगा, आराम से चलो। प्रभु के नाम के अतिरिक्त और ऐसी किसी साधना में सामर्थ्य नहीं है। बैठा लो हृदय में, दौड़ भाग बंद करो, चाहे और कोई साधना करो, रजोगुण और तमोगुण अपना प्रभाव दिखाता रहेगा, पापों का पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं होगा। रजस तमोभ्याम कलिलम ततोन्यथा। एकमात्र नाम ऐसा है कि रजोगुण तमोगुण का नाश करके सात्विक विकास करके त्रिगुणातीत स्थिति प्रदान कर दे। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि जिस स्वरूप का बोध करने के लिए बड़ी कठिन साधनाएं बताई गई, नाम जब से सहज में। कोई भी ऐसा, अभी पीछे एक दिन स्वाध्याय कर रहे थे, उसमें लिखा था कि कुंडलनी जागृत और सुषुम्ना नाड़ी का खुलना ये बहुत कठिन। गोपाल शास्त्र नाम में भी सुषुम्ना मार्ग संचारी, सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती मानो ब्रह्माकार वृत्ति, ये नाम से स्वाभाविक हो जाती है, स्वाभाविक हो जाती। कुंडलनी के जागरण में जो बड़े बड़े विघ्न है नाम जप को पता भी नहीं चलता, वो जागृत हो जाती है, सुषुम्ना मार्ग अपने आप संचरित हो जाता है। कुछ उसको इन सब विषयों को ना पढ़ने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। राधा राधा राधा, हर समय नाम जप, सब सिद्धियां सब वैभव भगवान के ही तो नाम में छुपा हुआ है। परिचित, ये जो हमने तुम्हें बताया ये गोपनीय है। गोपनीय शब्द इसलिए कहा कि सब नाम पर विश्वास नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। रोज चर्चा होती क्या आपका निरंतर नाम जपने में भाव बना, नहीं। कोई बिरला ऐसा जिसके ये बात हृदय में बैठ जाए कि वो मुझे तो बहुत बड़ी बात मिल गई, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई। छोटा न समझो नाम को, इतना बड़ा अंकुश होता है और विशाल मत वाले गजराज को घुटनों के बल लाने के लिए पर्याप्त है। एक अंकुश मारे घुटने टेक देगा, जैसा कहेगा महावत वैसे चलना पड़ेगा। ये नाम अंकुश है, ये काल को भी घुटने में ले आवे ऐसा अंकुश है नाम। देखने को लगता है राधा, देखने को लगता है कृष्ण, मत वाले काल को भी अधीन कर, समुझ जाए शरण ते डरतना काल डर।
जिए काल वश ना पड़े, जीवित है लेकिन काल के अधीन नहीं, ये नाम का चमत्कार है। विश्वास मानो, जल में घर्षण शक्ति से बिजली पैदा हो जाती है, नाम जिभ्या पे चलेगा तो ऐसी बिजली पैदा होगी कि लोक लोकांतर में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। पर करो ना, नाम जप करो, जिभ्या से निरंतर नाम रटो, मारे घूम रहे दुख निवृत्ति के लिए, कुछ नहीं होना। यदि नाम नहीं है तो थोड़ी देर के लिए ओस चाटने से थोड़ा तो गीलापन लगा, लेकिन प्यास नहीं बुझने। ये प्रभु के चरणारविंद की शीतल धारा, भक्ति की छोड़कर, नाम की छोड़ करके अन्य साधन रूपी ओस कण चाटने से प्यास नहीं बुझेगी। राम राम राम जीह जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है, सुर

भाग के जा, तू कहां जाएगा? कोई तेरा दुख निवृत्ति का उपाय नहीं, क्योंकि जिससे तू दुख निवृत्ति चाहता वो भी काल से तो भयभीत ही है। जो काल को भयभीत कर दे वो है भगवान नाम। ले लो प्रभु के नाम का आश्रय, ले लो प्रभु के नाम का निरंतर जप करो। जो पुरुष श्रद्धा और विश्वास पूर्वक ये बात सुने और इसे जीवन में उतारे, तो चाहे जितने पातक हो गए उसे और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। ये नाम ही समस्त पातकों का नाश करके भगवत

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कई बार ऐसे रैंडम लोग हमको ये बात बोल देते हैं ना कि तुमको पता है तुम्हारी लाइफ में एक नए नजरिए की जरूरत है। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ और शो की शुरुआत हो रही है और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। और सिस्टर, यहीं से मैं शुरू करना चाहूंगा कि जब हम मॉर्निंग की बात करते हैं या एक मॉर्निंग रूटीन्स की बात करते हैं या एक फ्रेश स्टार्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे मन में आते हैं। अक्सर हम ये सुनते हैं ना कि आपकी जो मॉर्निंग है वो डिसाइड करती है आपका पूरा दिन कैसे रहने वाला है। हम वो कहते थे ना, सुबह उठ किसका चेहरा आप देख के उठे थे, तो ऐसे बहुत सारे कोट्स हैं। तो एक ऐसी आइडल या एक ऐसी सुबह की शुरुआत क्या होनी चाहिए एक नॉर्मल इंसान के लिए?
1: देखिए, अगर मैं सबकी ही बात करूं और विशेष जो हम भारत में रहने वाले हैं, जहां आंख खुलते ही सबसे पहले परमात्मा का नाम, परमात्मा का सिमरन या इस तरह की कुछ भी रिचुअल्स की जाती हैं, तो अगर हम आज भी उस चीज को लेकर चलते हैं तो इसमें मैं रूढ़िवादिता नहीं समझूंगी। ये बिल्कुल साइंटिफिक है और बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो इसी चीज को अगर हम आज भी रखें कि जब हम आंखें खोलते हैं, जिसमें हमारा सबकॉन्शियस लेवल बहुत एक्टिव होता है, हम कॉन्शियसली भले नींद में होते हैं लेकिन सबकॉन्शियस जो कहते हैं कि बहुत एक्टिव रहता है, तो उस दौरान हम जो थॉट्स करते हैं तो वो थॉट्स हमारे बहुत डीप में जाने की वजह से हमारी डेस्टिनी तक जाते हैं। तो उस दौरान अगर मैं परमात्मा का शुक्राना करती हूँ, उनको याद करती हूँ और जो लक्ष्य मुझे लेना है इस जीवन में, उस लक्ष्य के कुछ चलचित्र या कुछ भी इस तरह का शब्द या कुछ भी, अगर मैं उन चीज़ों को एफर्मेशन के रूप में दोहराती हूँ तो वो चीज़ बहुत इम्पैक्टफुल होता है माइंड के लिए और बॉडी के लिए भी, और डेस्टिनी में वो चीज़ की प्राप्ति होना बहुत सहज हो जाता है।
0: तो एक मॉर्निंग को फ्रेश स्टार्ट करने के लिए आपके रूटीन में क्या होना चाहिए, इस चीज़ की टिप यहाँ पर आपको सिस्टर ज्योति और सिस्टर प्रिया ने दे दी है ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: मैंने ना अक्सर दो तरह के लोग देखे, एक जो जल्दी उठते हैं और एक जो लेट उठते हैं। 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। सिस्टर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हमने अक्सर देखा है कुछ लोग जल्दी उठ जाते हैं, सनराइज से पहले उठ जाते हैं, कुछ लोग बहुत लेट उठते हैं कि मतलब आधा दिन भी उनका को निकल गया हो, बट मैं ये जानना चाहता हूँ इन दोनों लोगों के नेचर में, मूड में या फिर एनर्जी में ऐसे क्या डिफरेंस होते हैं या क्या फर्क होता है?
1: जी बिल्कुल हो रहा है और बहुत, मैं कहूँ इसके जो इम्पैक्ट्स हैं, जिसका असर है वो बॉडी से, माइंड से लेकर लाइफस्टाइल में जो हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा विकृत रूप में आ रहा है। और मैं कहूँ कि अगर हम जैसे भले हम आँख खोलते हैं, कई बच्चे 10 बजे सो रहे हैं तो सुबह 6 बजे उठते हैं, लेकिन कई बच्चे रात को 1 बजे सो रहे हैं और वो दिन में 12 बजे उठ रहे हैं। तो जब वो 12 बजे उठ रहे हैं जिसमें उन्होंने ना सुबह की धूप देखी है, जबकि कई कहते हैं कि इट्स ऑफ नो यूज, हम उठते हैं तो हम अपना डाइट अच्छा लेते हैं, हम जिम चले जाते हैं, जिम इज अ वन थिंग एंड सूर्योदय का जो सनराइज है वो डिफरेंट है। आप जिम में ही हर चीज प्राप्त कर लें ये हो ही नहीं सकता, इट इज नॉट कि मैं कहूँ पॉसिबल। तो हमें चीजों को अगर बेहतरीन अपनी बॉडी के लिए, अपने माइंड के लिए, अपने इमोशंस के लिए करना है तो अपने आप को नेचर से जोड़ने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि नेचर में बहुत एनर्जी है, बहुत वास्ट, जो हम आज तक पूरा समझ भी नहीं पाए हैं। तो सुबह उठकर अगर मैं नेचर में जाती हूँ, चाहे मेरे पास 4 ही गमले हैं, लेकिन मैं बाहर जाऊं, फ्रेश एयर में जाऊं, बर्ड चिपरिंग सुनूं, तो उससे जो मेरे माइंड का जो ऊर्जा है या फ्रेशनेस होगी वो बहुत फर्क आएगा उससे।
0: तो देखिए, पॉजिटिव नेगेटिव सुबह जल्दी उठने के या लेट उठने के सब आपको यहाँ पर पता चल चुका है। आपको डिसाइड करना है आप कौन सी कैटेगरी में यहाँ पर जाना पसंद करेंगे। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: रिजर्वेशन ने इंग्लैंड के मैच की टिकटें भेजी हैं।
1: डॉक्टर कॉलिंग।
2: Hello everyone, myself Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. To हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी। आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है। तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे। दिस इज़ नॉट राइट। आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी। अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है। तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा। और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ। थैंक यू।

0: कभी आपके मन में ये चीज की क्यूरियोसिटी हुई है, ब्रह्म मुहूर्त जो हम बोलते हैं उसके पीछे का क्या रीजन है? 89.6 रेडियो महारानी पर तुषार है आपके साथ और मेरे साथ है सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। सिस्टर, मैं अब आपसे ही जानना चाहता हूँ, अक्सर सुबह 4 बजे या 5 बजे वाले टाइम को हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं और अक्सर कहा जाता है उस टाइम पे जब हम उठते हैं तो हमारी एनर्जीज जो होती हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं बाकी पूरे दिन के मुकाबले। उसी टाइम अगर आप प्रेयर करते हैं या कुछ याद करते हैं तो वो आपके साथ पूरे डे लॉन्ग या लॉन्ग टाइम तक रहता है। इसके पीछे क्या स्पिरिचुअल रीजन है और क्या एक साइंटिफिक रीजन है, मैं दोनों आपसे जानना चाहूंगा।
1: बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आज के समय में इस क्वेश्चन की बहुत जरूरत है, इसके जवाब की भी, कि ब्रह्म मुहूर्त, नाम भी कितना अच्छा दिया मुहूर्त, क्योंकि कोई भी काम हम करते हैं तो मुहूर्त निकाल के करते हैं, है ना, कि मुहूर्त अच्छा है नहीं है, कुछ गलत हो जाए कहते गलत मुहूर्त में हमने काम शुरू किया। अगर हम उस समय को साइंटिफिक रूप में भी अगर देखते हैं तो उस समय सारी निगेटिव एनर्जी सो गई होती है, निगेटिविटी। आप देखिए पेशेंट भी इनफेक्ट पूरी रात जगते हैं लेकिन मॉर्निंग में वो भी रिलैक्स हो जाते हैं क्योंकि चारों तरफ पॉजिटिव एक वाइब्स उनको मिल रही है जो उनकी डिसीज को भी हील कर रही है, उनको रिलैक्स दे देती है।

0: पर गुरुवाणी हो रही है, वो एक जो माहौल है वो एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करता है, जो हमारी आत्मा को हमारे अंदर तक वो फील होता है, और उसी एनर्जी में अगर हम उठते हैं तो पूरे दिन वो एनर्जी वर्क करती है। उस टाइम पे हमने जैसा थॉट लिया है पूरे दिन उस थॉट का इम्पैक्ट रहता है।
1: तो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के क्या एक पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, इनके बारे में आपको बखूबी यहाँ पर पता चल गया होगा, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप बाहर निकलकर रिव्यू नहीं करते बल्कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूं गीत और अब बात करेंगे उस फिल्म की जिसने लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी का भी डोज दिया है। नाम है हनुमान अंश। ये फिल्म नीम करोली बाबा की लाइफ और टीचिंग से इंस्पायर्ड है और ऑडियंस से इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इमोशनल डेप्थ, फेथ और सोलफुल म्यूजिक इसकी खासियत बताए जा रहे हैं और इसका म्यूजिक भी लोगों को कनेक्ट कर रहा है, खासकर डिवोशनल ट्रैक पार्वती को लेकर बहुत ही

अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। तो अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लगता है कि सिनेमा में बस एक्शन ड्रामा और क्योस ही चल रहा है, तो हनुमान अंश शायद वो फिल्म है जो थोड़ा पॉज बटन दबाती है, क्योंकि हर फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती, कुछ फिल्में आपको भीतर से भी टच कर जाती हैं।

0: दिन में ऐसा कौन सा टाइम है जब आप मेडिटेशन करें तो आप यूनिवर्स से इजिली कनेक्ट हो सकते हैं? 89.6 रेडियो महारानी, तुषार है यहाँ पर आपके साथ और इस वक्त मेरे साथ हैं सिस्टर ज्योति एंड सिस्टर प्रिया। सिस्टर, हमने अक्सर ये सुना है ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारी एनर्जीज जो होती हैं वो बहुत हाई होती है, तो हम जो एक सुप्रीम एनर्जी है या जो यूनिवर्स है उससे जल्दी कनेक्ट होते हैं, इसके पीछे का क्या कॉन्सेप्ट है, क्या ये सच है भी कि नहीं है?
1: बिल्कुल करता है, क्योंकि सुबह का साई इस तरह के शब्द हमारे शास्त्र बताते हैं। सुबह अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, हर चीज में अगर आप देखें, चाहे वो ईस्ट है या वेस्ट है, सुबह की बात की जाती है। भारत के शास्त्रों में भी सुबह प्रातः ये शब्द बहुत ऐसा माना जाता है कि एनर्जी अगर आपको लेनी है, चाहे वो विशेष मेंटल लेवल पे, फिजिकल तो आएगी ही आएगी, लेकिन मेंटल लेवल पे अगर अपने आप को एनर्जाइज करना है तो आपको जल्दी उठना है। और जल्दी में भी मैं कहूँ, कई लोग 6 बजे सोचते हैं, लेकिन अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त जैसे आपने बात की वो उठ रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में सबसे ज्यादा ग्रास्पिंग एनर्जी माइंड की रहती है। ब्लॉटिंग पेपर, अगर माइंड काम करता है एज अ ब्लॉटिंग पेपर, वो सुबह करता है।
2: सुबह जैसा हम थॉट लेते हैं पूरा दिन हमारा वैसा ही जाता है। अगर हम सुबह सिर्फ ये भी कह दें कि मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे पूरा दिन खुश रहना है, तो वो खुशी की जितनी भी एनर्जी है वो हमारे पास आएगी और उसी तरीके से कार्य करते हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, हम लोग इसको प्रैक्टिकल करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, अपने आप को अफर्मेशन देना, और पूरा दिन हम उस चीज को फिर फील करते हैं, और रात में फिर हम उसको चेक भी करते हैं, क्योंकि सुबह का सारा श्रेय जो है वो हमारे रात के सोने पर भी जाता है। अगर हम रात को रिलैक्स होकर के सो रहे हैं, सारे अपनी प्रॉब्लम्स को छोड़ करके और बिल्कुल रिलैक्स होकर के सोते हैं, तभी हम सुबह भी जल्दी उठ पाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ पाते हैं और हम रिलैक्स होते हैं।
0: सिस्टर, जिस तरह से आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करा है, मुझे लग रहा है कि मेरे जो डाउट हैं वो तो यहाँ पर क्लियर हो ही गए हैं, बट जितने लिसनर्स हैं उनके डाउट भी यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ आज जुड़ने के लिए और हमारे मॉर्निंग रूटीन पे ऐसे हमें मोटिवेट करने के लिए या उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करने के लिए कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लेकिन कल सुबह 6 बजे हम आपको फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जहां पर बीके ज्योति और बीके प्रिया भी हमको फिर से ज्वाइन करेंगे। रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हाँ जी, गुड मॉर्निंग फरीदाबाद। तो भाई देखिए, सितंबर के सेकंड डे में आ गया और आ गए हैं वेडनेसडे में। ना तो आपकी वीकडेज वाली बोरियत है और ना ही वीकेंड वाली एक्साइटमेंट है। यह बड़ा मिक्स्ड सा डे होता है, यानी कि बड़े ना मिक्स्ड से सिग्नल होता है, पता नहीं चलता करना क्या है। और आज का दिन पता नहीं क्यों मुझे इतना बोरिंग सा लग रहा है ना। मैंने सुबह ना तीन बार अपने अलार्म को स्नूज मोड पे डाला यार, कि भाई बस कर भाई, तू मुझे अब इरिटेट कर रहा है। और इसी के साथ ना सोचा, चलो ठीक है यार, अब उठ जाते हैं, आपसे बातें भी तो करनी है। सुबह 7 बजे आ गई हूँ आपके पास, 11 बजे तक रहने वाली हूँ, बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, एंटरटेनमेंट का डबल डोज लेकर आई हूँ, और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो सब जानने के लिए ना आपको बना रहना पड़ेगा ना मेरे साथ। तो बने रहिए और तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक, बिकॉज गाने में बहुत ही बेहतरीन बजाती हूँ।

भाई साहब ऐसे लगाना कि अगस्त आया और चला गया, पता ही नहीं चला यार, और आधा साल निकल गया। अब हम सितंबर में आ गए और सितंबर का एक दिन भी निकल गया। अब ना जाने ये सितंबर भी कितना जल्दी निकल जाएगा। और इसी तरह से ना वक्त बहुत जल्दी बीत रहा है। अभी मॉनसून थे, पता नहीं कहाँ गए। अभी इतनी तेज बारिशें थी, पता नहीं कहाँ गई। और फिर एकदम से आगे गर्मियाँ। और अगर आज मैं प्रिडिक्शन की बात करूँ ना, तो देखिए आज का वेदर ये कहता है कि थोड़ा सा क्लाउडी रहने वाला है, थोड़ा सा रेनी रहने वाला है, और जो आपका मूड है ना वो एकदम मॉनसून वाला होने वाला है। तो भाई 2 सितंबर है आज और दिन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुहाना सा मौसम है। हाईएस्ट टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो 31 डिग्री आज आपको हाईएस्ट टेम्परेचर मिलेगा, मिनिमम जाएगा 25 डिग्री। इसी के साथ अगर मैं विंड स्पीड की बात करूँ तो भाई विंड स्पीड भी अच्छी खासी है, ह्यूमिडिटी भी 75% है। तो अपने साथ पानी जरूर कैरी कीजिएगा, कहीं भी अगर जा रहे हैं तो अपने हाइड्रेशन का ख्याल रखिएगा। इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन फ्रॉम यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। या किडनी केयर मंत्रा की मैं बात करूं तो किडनी को हेल्दी रखने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एडिक्वेट हाइड्रेशन मेंटेन रखें, अपना ब्लड प्रेशर और शुगर कंट्रोल रखें, मोटापे से बच के रहें, वजन को कंट्रोल रखें और अननेसेसरी पेन किलर नहीं रहें, क्योंकि किडनी खराब होने का जो सबसे कॉमन रीजन है वो अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी एंड इनजुडिशियस यूज ऑफ पेन किलर है। तो इन चीजों का ख्याल रख के हम अपनी किडनी को हेल्दी रख सकते हैं। थैंक यू।
1: Doctor calling.

हाँ जी, जब भी नारियल की बात आती है तो कोकोनट चटनी याद आती है ना यार। इतने ज्यादा चटोरे हो गए हो ना कि चटनी के अलावा आगे बढ़ते ही नहीं हो यार। अगर मैं नारियल की बात करूँ ना तो आपको पता है ये सिर्फ पूजा और कोकोनट चटनी के लिए नहीं बल्कि ऑलराउंडर फ्रूट है नारियल। और आज मैं बताने वाली हूँ कि भाई क्या खास है इस नारियल में, बिकॉज आज तारीख पर तारीख कहती है कि हम लोग 2 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड कोकोनट डे। अगर मैं कोकोनट की बात करूँ तो खाने में इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है। पहले तो भाई आपका कोकोनट वाटर, साथ ही आता है आपका कोकोनट ऑयल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तो बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसे। और आपको पता है इंटरेस्टिंग बात क्या है, ये जो नारियल है यानी कि कोकोनट, इसे ना कई जगहों पर ट्री ऑफ लाइफ भी कहा जाता है क्योंकि इसकी ऑलमोस्ट हर पार्ट का यूज किया जा सकता है। ये बात पता थी आपको? हम कोकोनट शेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो लीव्स होती हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोकोनट का तो इस्तेमाल करते ही है ना। इसका पानी भी पिया जाता है और कोकोनट खाया भी जाता है, इसकी चटनी भी बनाई जाती है और भाई फेस पर भी कोकोनट ऑयल लगाया जाता है। तो बहुत ही अच्छा सा ऑलराउंडर सा फ्रूट है ये। अगर आप नहीं खाते ना इस फ्रूट को तो भाई खाइए ना यार, खाइए इस फ्रूट को, बहुत इजीली मिल जाएगा आपके सुपरमार्केट में, तो जाइए जाकर खरीदिए और बस एंजॉय कीजिए। साथ ही बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

कभी कभी ना फिल्म का नाम देखकर लगता है कि भाई ये तो ब्लॉकबस्टर मटेरियल है, लेकिन फिल्म देखने के बाद ऑडियंस ही बोल दे कुछ तो गड़बड़ है दया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत और आज की पहली सिनेमा की अपडेट थोड़ी सी टॉक्सिक है। जी हाँ, बात हो रही है यश की टॉक्सिक की। यश की स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन और विजुअल्स की तो तारीफ हो ही रही है, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले को लेकर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन काफी मिक्स्ड है। कई लोगों को लगा कि फिल्म के विजुअल पर इतना फोकस कर दिया है कि कहानी रास्ते में छूट गई है। मतलब भाई नाम टॉक्सिक, एक्सपेक्टेशन ब्लॉकबस्टर वाली, और रिव्यूज में कहीं कहीं ऑडियंस बोल रही है ये कहानी थी या पेशेंस टेस्ट। अब यश के फैंस तो शायद कहेंगे भाई बस यश

अगर मैं बात करूं पाप, जहर और अक्सर, इन फिल्म्स की लीडिंग लेडी को तो आप सभी याद करते होंगे। अगर याद नहीं करते हैं तो आज मैं बता देती हूँ, आज हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं उदिता गोस्वामी का। और अगर उदिता की बात करूँ ना तो भाई देहरादून से है, मॉडलिंग से इन्होंने करियर की स्टार्टिंग की थी। 2003 में पाप से बॉलीवुड डेब्यू किया था और इसके बाद जहर, अक्सर, अगर और रूक, इन सारी मूवीज में ना नजर आई है, अपने फैंस का दिल जीता है इन्होंने। और उदिता ने ना बाद में फिल्म मेकर मोहित सूरी से शादी भी कर ली थी। तो देखिए भाई, बहुत ही बढ़िया इनकी जो है जर्नी रही है और बहुत सारे फैंस हैं इनके जो इन्हें अक्सर याद करते हैं। तो उदिता, उन फैंस की तरफ से, रेडियो महारानी की तरफ से विशिंग अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आप ऐसे ही अपने फैंस का दिल जीतते रहे, हैप्पी रहे, हेल्दी रहे, साथ ही सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं म्यूजिक ब्रेक के बाद। Thank you.

हेलो हेलो जी, तो आ गई हूँ आज का बिजनेस बस लेकर। और आज का बिजनेस वाला आइडिया ना खासकर उन लोगों के लिए है जो हमेशा ये बोलते हैं बिजनेस करना है पर इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा नहीं है। तो भाई देखिए, आज का आइडिया आप लोगों के लिए, आपने करना क्या, जितने भी लोकल शॉप्स है ना उनके लिए व्हाट्सएप कैटलॉग बनाना और मैनेज करने का काम है। क्योंकि आपने देखा होगा आज भी बहुत सारे ऐसे नेबरहुड के बुटीक्स, बेकरीज, यहाँ तक कि सैलून है जिनके होम बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं लेकिन किसी को नजर ही नहीं आते। तो आपने क्या करना है, आपने ऑनलाइन दिखाने के लिए ना कैटलॉग्स बनानी है। तो भाई आपने करना है क्या, उनके प्रोडक्ट्स की फोटो क्लिक करनी है, व्हाट्सएप बिजनेस कैटलॉग सेट करना है, साथ ही वीकली ऑफर स्टेटस लगाने हैं और ऑर्डर्स को ऑर्गेनाइज करना है, दैट्स इट। तो भाई देखिए, यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, शॉप उनकी डिजिटल दुकान ऐप की यानी कि सर्विस ऐप। और आपने इसकी शुरुआत अपने एक दो लोकल बिजनेसमैन से कर सकते हैं, मंथली सर्विस

कई लोगों का ना सपना होता है कि यार इंडिया से बाहर जाना है, लेकिन जाना कैसे ये पता नहीं होता। तो भाई उन्हीं लोगों के लिए ना मैं लेकर आ गई हूँ, आपको ये बताने वाली हूँ कि यार फटाफट से ना अपना पासपोर्ट रेडी रखो, बिकॉज सेंट्रल एशिया ने इंडियंस के लिए एकदम एक्साइटिंग ट्रेवल अपडेट निकाली है। और अपडेट ये है कि उज्बेकिस्तान ने इंडियन सिटीजंस के लिए 30 दिन वीजा फ्री एंट्री अनाउंस कर दी है। अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, आपका मोस्ट वेलकम है वहाँ पर। और अगर इस अनाउंसमेंट की मैं बात करूँ ना, तो ये अनाउंसमेंट पीएम मोदी के उज्बेकिस्तान विजिट के दौरान हुआ है। और इसका सिंपल सा एम है टूरिज्म बिजनेस और पीपल टू पीपल कनेक्शन को बूस्ट करना। सो अगर आप जाना चाहते हैं ना बाहर की किसी कंट्री में, तो आप जा सकते हैं। आप फ्रीली 30 दिन तक बिना वीजा के वहाँ घूम सकते हैं और ट्रेवल कर सकते हैं, वहाँ के लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं, वहाँ का कल्चर देख सकते हैं, उस कंट्री को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो भाई देखिए, फरीदाबाद से बाहर निकलना है तो निकल जाइए, फिर मत बोलिएगा कि भाई टाइम नहीं था, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी ना फिर से नहीं आएगी। और ट्रेवल कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनिशिएटिव लिया गया है। दोनों कंट्रीज के बीच हर वीक 14 डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट हो रही हैं, तो किसी भी फ्लाइट में जा सकते हैं आप जो ऑपरेट हो रही है। सो बस यही कहना चाहती हूँ कि इस एक्साइटमेंट को बरकरार रखिएगा और फटाफट से निकल जाइएगा घूमने के लिए, बिकॉज यार मैं ना यही कहती हूँ, जियो तो हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी है। आज ना फरीदाबाद से ऐसे निकल जाओ जैसे कि कल फिर मुड़के नहीं आना।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
0: डॉक्टर।

अक्सर कहती हूँ यार, एज इज जस्ट अ नंबर। ना तो एज के पीछे भागो भाई, और ना ही एज से डर की किसी काम को छोड़ दो। और ये ना बात प्रूफ कर दिखाई है 43 साल की शिवानी मेहरोत्रा ने ना फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपने सामने 5642 मीटर की हाइट को ना मात दे दिया। और हमेशा कहती हूँ ना, एज सिर्फ नंबर है, असली गेम तो हिम्मत और डिसिप्लिन की है। तो भाई देखिए, यूपी से उत्तर प्रदेश की 43 साल की शिवानी मेहरोत्रा ने 15 अगस्त को रशिया के माउंट एल्ब्रस यूरोप की हाईएस्ट पीक सबमिट करके वहां ना तिरंगा फहराया। और उनकी 18 साल की बेटी भी है, लेकिन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ साथ उन्होंने माउंटेनियरिंग का पैशन हमेशा जिंदा रखा। और यही रीजन है कि हम लोग यहाँ झंडा फहरा रहे थे और वो उन पीक्स पर झंडा फहरा रही थी। तो भाई देखिए, हिम्मत होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, रास्ते ना खुद ब खुद निकल आते हैं। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी उनका नेक्स्ट ड्रीम भी। और नेक्स्ट ड्रीम ये है कि माउंट एवरेस्ट पर जाना है, 7 समिट्स कंप्लीट करने हैं। तो भाई शिवानी, आपकी स्टोरी ना हम सभी के लिए मैसेज है कि हिम्मत रखने वालों की कभी हार नहीं होती और कोशिश करने वालों की भी कभी हार नहीं होती। सो भाई देखिए, हिम्मत रखिए, कोशिश करिए, सपनों को ना पोस्टपोन करिए, लेकिन सपनों को कभी कैंसिल मत कीजिए और बस बढ़ते रहिए आगे। जब रिटायरमेंट का टाइम आएगा ना, खुद अपने सपनों से रिटायरमेंट ले लोगे, लेकिन तब तक के लिए ना यार प्लीज शुरू जरूर कीजिएगा। और इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए ट्रैक, बिकॉज एज इज जस्ट अ नंबर।

फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप बाहर निकलकर रिव्यू नहीं करते बल्कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और अब बात करेंगे उस फिल्म की जिसने लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी का भी डोज दिया है। नाम है हनुमान अंश। ये फिल्म नीम करोली बाबा की लाइफ और टीचिंग से इंस्पायर्ड है और ऑडियंस से इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इमोशनल डेप्थ, फेथ और सोलफुल म्यूजिक इसकी खासियत बताए जा रहे हैं और इसका म्यूजिक भी लोगों को कनेक्ट कर रहा है। खासकर डिवोशनल ट्रैक पार्वती को लेकर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लगता है कि सिनेमा में बस एक्शन, ड्रामा और क्योस ही चल रहा है तो हनुमान अंश शायद वो फिल्म है जो थोड़ा पॉज बटन दबाती है, क्योंकि हर फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती, कुछ फिल्में आपको भीतर से भी टच कर जाती हैं।

जब बात हमारी मम्मी तक आ जाए ना तो कोई नहीं जीत सकता उनसे, मम्मियां खुद जीत जाएंगी अपनी रेस में। तो भाई ये चीज ना प्रूफ कर दी है महाराष्ट्र की रमाबाई ने। उन्होंने दौड़ के दिखा दिया कि अपने बच्चों के लिए ना माँ से बेटर तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। सुबह देखिए 47 साल की रमाबाई रणबीर ने महाराष्ट्र के बीड़ में अमृत दौड़ मैराथन में बिना किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग के साड़ी पहनकर रेस में पार्टिसिपेट किया। पहले तो रेस के बीच चप्पल परेशान कर रही थी तो उन्होंने अपनी चप्पलों को भी साइड कर दिया और जो दौड़ी है वो रेस में भाई नंगे पैर दौड़ी थी। सबसे पहले फिनिश लाइन इन्होंने ही क्रॉस की है, जिसके बाद जीतने के बाद ना इन्हें 3,000 रुपए का कैश प्राइस मिला था। जब उनसे पूछा गया ना कि इस उम्र में आपने क्यों दौड़ा और साड़ी पहनकर दौड़ा वो भी बिना चप्पलों के, तो उन्होंने बताया कि उनको अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए थे, हस्बैंड उनके है नहीं, सिंगल पेरेंट है, कुकिंग करती है, जिसकी वजह से ना वो अपनी बेटी को पढ़ा नहीं पा रही थी। तो उनके सामने एक मौका है और इस मौके को उन्होंने अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। तो भाई देखिए मौके आपके पास हमेशा आते हैं लेकिन आपको ना वो मौके ग्रैब करने आने चाहिए। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी थी जो आज हमें रमाबाई की तरफ से मिली है और इस तरह की इंस्पायरिंग स्टोरीज मैं आप तक लेकर आती हूँ, आपका जज्बा आपका हौसला बढ़ाती हूँ। अगर आप भी कुछ करने का सोच रहे हैं ना तो प्लीज किसी के बारे में सोचिए, सिर्फ अपने बारे में सोचिए और अपनी इस रेस में ना बस पार्टिसिपेट कर लीजिए और उसके बाद देखिएगा चीजें खुद ब खुद स्मूथ हो जाएंगी। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

जब से हम सबके लाइफ में सोशल मीडिया है, हमारी लाइफ बहुत इजी हो गई है ना। अगर बात की जाए व्हाट्सएप की, तो भाई देखिए व्हाट्सएप पर कोई भी डॉक्यूमेंट भेजना किसी को कितना इजी हो गया ना। सबसे पहले उसकी फोटो खींचनी है, सेंड करना है, डन, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि अगर ये डॉक्यूमेंट आपका पैन, आधार या फिर आपके बैंक की कोई स्टेटमेंट है तो आपके साथ कितना बड़ा फ्रॉड हो सकता है? नहीं सोचा ना। और अक्सर ये सारी चीजें हम किसी को व्हाट्सएप के थ्रू सेंड भी कर देते हैं। तो देखिए आज का साइबर अलर्ट आपके लिए यही एक अपडेट लेकर आया है। कोई भी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट अगर किसी एजेंट या फिर एम्प्लॉय के पर्सनल फोन पर चले गए, डिलीट कभी नहीं होते हैं। उनकी कॉपीज फोन पर, गैलरी पर या फिर आपकी क्लाउड बैकअप में हमेशा रह सकती है। इसलिए KYC के लिए ऑफिशियल वेबसाइट या फिर अथॉरिटीज सिक्योर वेरिफिकेशन सिस्टम को ही प्रेफरेंस दें हमेशा। कभी भी किसी को पर्सनली अपने डॉक्यूमेंट्स मत भेजिए। अगर मैं बात करूँ ना आधार की, तो भाई आधार की तरफ से तो ये एडवाइजरी भी जारी की गई है, आधार को पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ओपनली शेयर नहीं करना चाहिए। जरूरत हो तो मास्क आधार जरूर बनवाए, ऑप्शन में रखिए, बिकॉज मास्क में होता क्या है, आपके जो 8 डिजिट है वो हमेशा हाइड रहते हैं और जो लास्ट के 4 डिजिट है सिर्फ वो ही दिखाई देते हैं। सो इससे जो फ्रॉड का चांस है ना वो कम हो जाता है। सो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई आपसे बोलता है कि अपना आधार और पैन भेज दीजिए व्हाट्सएप पर, तो पता है ना आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल भी नहीं भेजना है। और इसी के साथ ये था आज का साइबर मंत्रा। स्टे अलर्ट, स्टे सेफ और सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: जब मैं छोटी थी ना, वैसे देखो हाइट से तो मैं अभी भी छोटी हूँ, लेकिन जब मैं छोटी थी ना, अपने बचपन की बात करूँ, तो मेरे दिमाग में ना बहुत अलग अलग चीजें आती थी। कभी मेरा पुलिस वाला बनने का मन करता था, कभी मेरा डॉक्टर बनने का मन करता था, और अक्सर जब मैं ट्रैफिक पुलिस वालों को देखती थी ना, तो यार मेरा बड़ा ही मन होता था वो बीच रोड पर खड़े होकर सिग्नल्स के बारे में बताना, अपने हाथ इधर से उधर करना और अपनी पूरी ट्रैफिक को मैनेज करना। लेकिन ना वो सपना मेरा सपना ही रह गया यार। फरीदाबाद में ना कभी वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली नहीं। लगता है फरीदाबाद वालों ने ना मेरी टैलेंट को नहीं समझा। लेकिन भाई बैंगलोर ने ना एक ऐसा इनिशिएटिव निकाला है जहाँ पर अगर आपका मन है ना ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी करने का, तो आप कर सकते हो। आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले सकते हो। तो वही बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस ने कॉप ऑफ द डे इनिशिएटिव दोबारा से लॉन्च किया है, जहाँ सिटीजन्स एक दिन ट्रैफिक कॉप्स के साथ ऑन ग्राउंड ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं और साथ ही रोड्स को सेफ बनाने के लिए अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं। तो भाई अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूँ ना, आई लव दिस इनिशिएटिव बैंगलोर। और मैं फरीदाबाद से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी यार, प्लीज इस तरह के इनिशिएटिव आप भी लेकर आइए ना। इससे पता क्या होता है, इससे ना जब हम एज सिटीजंस निकलते हैं ना इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सड़कों पर, तो हमें पता होता है कि भाई कितना टफ है ये जॉब और हमें क्या करना चाहिए रोड पर, किस तरह से हमें ट्रैफिक के बारे में समझना चाहिए। तो जो अब तक हम ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ते थे ना, रूल्स फॉलो नहीं करते थे, वो अपने आप ही हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूँ, तो चलिए फिर से बैंगलोर लौट पड़ते हैं, मैं तो कहाँ फरीदाबाद आ जाती हूँ। तो देखिए अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूँ ना, तो भाई ज्वाइन करने के लिए आपको एक ऐप है BTP, इस ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है। होम पेज पर ट्रैफिक कॉप ऑफ द डे ऑप्शन मिलेगा आपको, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अपनी डिटेल सबमिट करनी है, साथ ही सिलेक्शन पुलिस रजिस्ट्रेशन रिव्यू के बाद करेगी। सो देखिए ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत अगर आप इस प्रोसेस पर खरे उतर जाते हैं, तो आप होंगे ट्रैफिक कॉप ऑफ द डे। मतलब एक दिन चालान काटने का मौका मिलेगा। जितने चालान अभी कटे थे ना यार, उन चालानों को याद करके ना, जितने भी व्हीकल आपको ऐसे दिखते हैं जो कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे हैं, उनके चालान आप लोग काट देना। तो भाई देखिए यहाँ पर आपको चालान भी काटना है, ट्रैफिक भी संभालना है, और इस इनिशिएटिव से ना आपको ये भी पता चलेगा कि भाई कितनी मेहनत चाहिए ट्रैफिक कॉप बनने के लिए। ये जो हम सड़कों पर निकल जाते हैं ना, रूल्स फॉलो नहीं करते, फिर आपको पता चलेगा बेटा। तो इस इनिशिएटिव का पार्ट बनना हो तो जरूर बन जाइए। और हाँ, फरीदाबाद में भी अगर ऐसा आ गया ना इनिशिएटिव, तो मैं आपको स्टूडियो में ही मिलूंगी, मैं आपको फरीदाबाद की सड़कों पर मिलूंगी, बिकॉज मेरा तो ना ये ड्रीम जॉब है। तो भाई देखिए अभी फिलहाल आगे चलते हैं, अब वक्त हो गया इस गाने का, तो एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं ना थोड़ी ही देर में।
1: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

everyone. Myself, Dr. Rajni Benwar. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google or Instagram or social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. तो हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी

हाँ जी, डू यू नो से चलिए बात कर लेते हैं डिड यू नो पर। यार ये उवासियों की अगर मैं बात करूँ तो एक इंसान लेता है उसे देख कर ना सामने वाले इंसान की भी उवासी निकल जाती है, यानी कि योनिंग अगर मैं इंग्लिश में बात करूँ तो। बोला था ना, अगर बात भी कर लो ना तो आ जाती है यार। तो देखिए भाई, नींद मैं पूरी कर आई हूँ फिर भी उवासी आ गई मुझे। सो आज मैं डिड यू नो लेकर आई हूँ। अभी जब मैंने उवासी ली तो आपको भी उवासी आई गई होगी ना भाई, क्यों नहीं आएगी? क्योंकि कहते हैं जब आप किसी को यौन करते हुए देखते हैं, इवन जो हवा वाली आवाज है ना, अगर आप वो भी सुन लेते हैं ना तो उससे बिना आपको यौन आ जाती है। पढ़कर भी उवासी आ जाती है भाई, क्योंकि ना इसका कनेक्शन पता है किसी चीज से है। इस यौनिंग को कहते हैं कंटीजियस यौनिंग। तो अगर आपको कोई पूछे ना कि यार ऐसे क्यों होता है, तो बता देना कि भाई ऐसे इसलिए होता है। तो देखिए सामने वाला इंसान आपको कितना इंटेलिजेंट समझने वाला है ना। एंड आई एम डैम श्योर जब मैंने यौन की थी ना, आपने भी यौन जरूर की होगी। तो देखिए आज के डिड यू नो में यही था कि इस चीज को कहते हैं। और कल नहीं, अभी थोड़ी देर में फिर से मिलेंगे इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक एंजॉय कीजिए ट्रैक, बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

एक ऐसा घर जहाँ लोग पहले दिन बोलते हैं मैं किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, और फिर तीसरे दिन ही आपने मेरा नाम नॉमिनेशन में क्यों लिया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत, और अब सिनेमा घूमने वाला है उस घर की तरफ जहाँ प्रिवेसी नहीं लेकिन ड्रामा अनलिमिटेड है। जी हाँ, बिग बॉस 20 की तैयारी पूरे रफ्तार पे है और सलमान खान एक बार फिर से होस्ट के रूप में वापस आ रहे हैं। शो का प्रीमियर 6 सितंबर को स्केड्यूल्ड है। इस बार जिन नामों की कॉन्टेस्ट लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से है कुशल, तनवर, अका गुल्लू, खुशी दुबे, गीता बसरा, मैरी कॉम, काजी तकीर, विक्रांत सिंह राजपूत, आशिफा खान, ईशा रिखी, शोविक चक्रवर्ती और आम्रपाली दुबे जैसे नाम शामिल है। और ट्विस्ट ये भी है कि रिया अहीर और लव गिल में से एक को ऑडियंस वोटिंग के जरिए Day 1 एंट्री मिलने की बात भी सामने आई है। अब बस देखना यह है कि इस घर में पहले प्यार होता है, दोस्ती होती है या नॉमिनेशन। तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ सिनेमा का कैप्सूल में।

हाँ जी, तो हो जाए। हाँ जी, फिर से आ गई हूँ मैं लेकर दिमाग की बत्ती जलाने वाला सेगमेंट। और वेलकम टू रेडियो महारानी, दिस इज अर्जेंटली इन द हाउस। तो भाई चलिए, आपके दिमाग की ना थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। आप सभी को पता है, जब मैं दिमाग की एक्सरसाइज कराने के लिए आती हूँ तो एक सेगमेंट लेकर आती हूँ, फरीदाबाद की पहेली। तो भाई टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली का, और आज की पहेली है, मैं फरीदाबाद की एक ऐसी ऐतिहासिक जगह हूँ जिसे 18वीं सदी में बनाया गया था। अभी यहाँ राजा महाराजा रहते थे, और आज भी लोग मेरी खूबसूरती, आर्किटेक्चर और इतिहास को देखने दूर से आते हैं। मेरा नाम एक वीर राजा के नाम से जुड़ा हुआ है। तो भाई देखिए, यहाँ पर मैंने आपको एक हिंट भी दे दी है, तो इस हिंट को जरूर पहचानिए। और तो फटाफट से मिलते हैं थोड़ी ही देर में, इस पहेली के जवाब का इंतजार खत्म होगा। लेकिन आपको पता है ना, आपको क्या करना है, फटाफट से जाना है रेडियो महारानी के इंस्टाग्राम पेज पर, वहाँ पर अपना वॉइस मैसेज हमें भेजना है, देखते हैं कि आप फरीदाबाद को कितना जानते हैं। लेकिन तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

नशा हो जब तेरे रुखसार देखूं, खुदा ने जब तराशा होगा वो असरार देखूं। निगाहों में बसा है इस कदर ये नूर तेरा, कुर्बान हर दफा हूं तुझको जितनी बार देखूं।

आज का एक छोटा सा प्लांट और कल के सांसों के लिए एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट, यही कहा जाता है प्लांट्स के लिए और यही माना भी जाता है। अगर आज आप एक प्लांट लगाएंगे ना, तो कल आपकी आने वाली जनरेशन को एक बेहतर इन्वायरमेंट मिलेगा। सो देखिए, यही इनिशिएटिव लेकर हम आ गए हैं, यानी कि रेडियो महारानी ने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट ऑक्सीजन। सो ये एक तरह की प्लांटेशन ड्राइव है, जहाँ पर हमारे साथ स्कूल, कॉलेजेस, आसपास के लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और ये ड्राइव पूरे 10 दिन रहने वाली है। यानी कि 10 दिन हम हर जगह को हरा भरा करने वाले हैं। हम अपने पास से प्लांट्स लेकर जाएंगे, स्कूल्स में लगाने वाले हैं, कॉलेजेस में लगाने वाले हैं। और यहाँ सिर्फ हम इस प्लांटेशन ड्राइव का हिस्सा नहीं होंगे, हम ये मौका आपको भी दे रहे हैं। आप भी बन सकते हैं ऑक्सीजन मास्टर, यानी कि अब आप आ सकते हैं रेडियो महारानी के ऑफिस, हम यहाँ पर आपको एक प्लांट देंगे और बस वो प्लांट आपको अपने एरिया में लगाना है। सो ये ड्राइव सिर्फ हमारी नहीं है, ये ड्राइव आप सबकी है। और इस ड्राइव में सिर्फ हम या आप नहीं जुड़ेंगे, हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे, जो हमें ये बताएंगे कि प्लांट लगाने का सही तरीका क्या है, किस तरह से केयर करनी चाहिए, किस तरह से हमारे प्लांट्स को सर्वाइव करना चाहिए, और साथ ही मिट्टी कैसी होनी चाहिए, पानी कैसा होना चाहिए। सो इन सारी चीजों पर भी बात करेंगे। तो फरीदाबाद रेडी हो प्लांट टुडे ब्रीच टमोरो के लिए, और 10 दिन हमारे साथ जुड़े रहिए और बनिए ऑक्सीजन मास्टर। और इसी के साथ ही ना, एंजॉय कीजिए ट्रैक, मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: बातें तो बहुत सारी की हैं और इन्हीं बातों के बीच में मुझे याद आ गया है कि टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली जानने का। तो भाई बहुत सारे मैसेजेस मुझे आए हैं और थैंक यू सो मच, आप फरीदाबाद की पहेली को इतना प्यार दे रहे हैं। डेली आते हैं, डेली अपने जवाब देते हैं, कुछ सही होते हैं और कुछ तो ऐसे होते हैं जो मैंने कभी सुने भी नहीं होते, लेकिन आप फरीदाबाद को बहुत प्यार करते हो, फरीदाबाद को बहुत अच्छे से जानते हो, ये सेगमेंट हमें ये बताता है। तो चलिए भाई टाइम हो गया है फरीदाबाद की पहेली जानने का। तो जो मैंने पहेली पूछी थी ना आज, मैंने एक हिंट भी दिया था, लेकिन पहेली थोड़ी सी टफ थी। तो चलिए देखते हैं किसने सही जवाब दिया है। तो मैं पहले इनका जवाब आपको सुनाती हूँ।
1: हाय अंजलि, मैं हूँ दीक्षा फरीदाबाद से, और आपकी आज की पहेली का सही जवाब है राजन हार सिंह बल्लभगढ़।
0: बिल्कुल सही पकड़े हैं दीक्षा, इतना सही जवाब, और ये हमें ये बताता है कि आप फरीदाबाद को कितना अच्छे से जानते हैं। बिकॉज ये अगर मैं इस पहेली की बात करूँ ना तो थोड़ा सा टफ था, ऐतिहासिक थी थोड़ी सी पहेली, लेकिन क्या गैस किया है भाई, तुम्हें मिलते हैं 1 करोड़ रुपए। नहीं, 1 करोड़ रुपए तो नहीं मिलेंगे तुम्हें, लेकिन हाँ ये जरूर बताता है कि फरीदाबाद को प्यार बहुत करते हो दिल से, क्योंकि आपने ये जगह बिल्कुल सही गैस की है, और इसी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर से मिलेंगे एक और नई पहेली के साथ, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

कभी नोटिस किया है, बॉलीवुड में एक फिल्म आती है, फिर उसकी कहानी से ज्यादा चर्चा होती है किसने क्या कहा, किसने क्या किया और किसका क्या रिएक्शन आया। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूं गीत। और अब बात करते हैं उस चीज की जो आजकल फिल्मों जितनी ही इम्पोर्टेंट हो गई है, ओटीटी और एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या चल रहा है। तो इस हफ्ते ओटीटी पर भी नए टाइटल्स ने एंट्री ली है, कुछ मिस्ट्री लेकर आए हैं, कुछ ड्रामा, कुछ थ्रिलर और कुछ ऐसे जिन्हें देखकर आप सोचेंगे ये मैंने कब अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया था। बबीता सिंह रिपोर्टिंग, चुंबक, पार्ट टाइमर्स, द विस्पर मैन, डार्क मैटर सीजन 2 और ग्रेवयार्ड सीजन 3 जैसे टाइटल्स इस हफ्ते अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए रेडी हैं। तो मंडे हो या संडे, एंटरटेनमेंट की कोई छुट्टी नहीं होती, बस आपकी वॉच लिस्ट में एक चीज की कमी होती है, वो है टाइम। तो मैं हूँ गीत, आप सुन रहे थे सिनेमा का कैप्सूल, जहाँ सिनेमा की दुनिया की हर इंटरेस्टिंग अपडेट मिलती है थोड़े से मसाले और ढेर सारी मस्ती के साथ।

चलिए भाई फरीदाबाद को मिलकर बनाते हैं फिट फरीदाबाद। हाँ जी, बहुत ज्यादा परेशान है ना आजकल, और शायद डिप्रेशन में भी। लेकिन आपको पता है, टाइम ना सब कुछ हील कर देता है ऐसा कहते हैं, लेकिन जब तक टाइम कुछ हील नहीं करता तब तक आप अपने आप से कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो चलिए फिर इस डिप्रेशन को थोड़ा सा कम करते हैं, और कम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपनी डाइट में 100% फ्रूट जूस और स्मूदीज इंक्लूड करनी है। फिर देखेगा 4 हफ्तों के बाद आपकी डिप्रेशन के सिम्टम में ना थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। और ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा कहती है न्यूकैसल यूनिवर्सिटी की स्टडी। तो रिसर्चर्स के मुताबिक एक स्टडी में जूस या स्मूदीज लेने से मेटाबॉलिक हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा डिप्रेशन वाला जोन है ना वो हल्का पड़ने लगता है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपको जूसेस से फ्रेश लेना है, वो पैक्ड जूस नहीं लेना है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 100% आपको शुगर मिलती है। इस तरह के जूसेस से जो है आपको दूर रहना है, आपको फ्रेश एंड सीजनल फ्रूट्स लेना है। साथ ही आप इनके साथ इसका फाइबर भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए हेल्दी है। तो अगली बार जब भी आपका मूड लो होना तो सिर्फ और सिर्फ एक ग्लास जूस पी लीजिएगा, क्या पता है ये मैजिकल ड्रिंक आप पर इंस्टेंट काम कर जाए। और तब तक के लिए बस यही कहना चाहूंगी, अपना ख्याल रखिए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, दोस्तों से मिलिए, और हाँ अपने आप को ना थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार कीजिए। और इसी के साथ सुनते रहे रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलते हैं इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

Hi, I'm Dr. Tanu. I am a MD medicine diabetologist. I've been practicing for last 10 years. And yes, I also run a supplement company. I am a fellow in regenerative medicine. And my advice today comes for women who have done their first inning and now they're in their second inning. पहली इनिंग में मेनार्की, प्रेगनेंसी, बच्चे, सिंगल लाइफ, मैरिड लाइफ, सो मेनी थिंग्स. एंड नाउ यू आर इन अ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रजाइल फेज ऑफ योर लाइफ, वेर आपकी बॉडी में जितनी सारी चीज़ों से आप खूबसूरत लगते थे, आप इतना एक्टिवली काम करते थे, अब वो सारी चीज़ें कम होती चली जाएंगी. अब बहुत ज़रूरी है कि हम 5 चीज़ों पर ध्यान दें. पहली चीज़, हो सकता है कि आप पहले स्लीप को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बट टेक अ गुड मैग्नीशियम सप्लीमेंट एंड ट्राई टू स्लीप बेटर. सेकेंड, प्रोटीन, एज इन हमें बचपन सिखाया गया है कि लेना चाहिए लेना चाहिए लेना चाहिए, बट हम ऑब्वियसली एक 40 साल की जिंदगी में, काम में, बच्चों में, बहुत सारी चीज़ों में भूल जाते हैं वो चीज़ें. अब आपकी उस एज में हो, अब आपकी बॉडी बहुत वियर ऑफ हो चुकी है, यू नीड मोर प्रोटीन देन बिफोर. थर्ड थिंग, अब आपकी स्किन पहले जैसी नहीं रह सकती. यू हैव टू एक्सेप्ट द स्किन विल ड्राई आउट, योर वेजाइना विल ड्राई आउट, योर बॉडी नीड्स मोर एंड मोर, यू नो, आपको और अच्छी क्रीम्स और अच्छे सप्लीमेंट्स और अच्छी डाइट फुल ऑफ हाइड्रेशन यूज़ करनी है. फोर्थ, आपको अब एक ब्रेन फॉग, आपको अपना आधी चीज़ें थोड़ी कम याद रहेंगी, अब आप थोड़ा कन्फ्यूज रहोगे, ये सब पेरीमेनोपॉज में होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है. ऑलवेज टॉक टू योर डॉक्टर्स, मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट ऑन टाइम, टेक द मेडिकेशन एज एडवाइज्ड, मीट ऑल योर फ्रेंड्स, कीप यू नो योर सेल्फ अराउंड विद पीपल जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ताकि आप अकेला ना फील करो. इस टाइम पे बहुत लोगों के डिवोर्स होते हैं, बहुत लोग बहुत मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं अपने पार्टनर से, दे आर गोइंग थ्रू अ एरे ऑफ प्रॉब्लम्स, बट देयर इज अ सोल्यूशन टू एवरीथिंग व्हेन यू आर सिटिंग विद द राइट पीपल. पांचवी चीज, यू विल हैव टू रियली रियली टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, बिकॉज अब आपकी जैसा आपका पहले जैसा सुंदर दिखना, आपकी डाइट का चेंज होना, आपका वेट गेन होना, आपको बहुत वेट गेन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेंगी. ये पांचवी चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है. मीटिंग अ साइकोलॉजिस्ट, अ गायनेकोलॉजिस्ट, अ न्यूट्रिशनिस्ट शुड बी इन योर लिस्ट, बिकॉज राइट नाउ यू आर अर्निंग वेल, यू हैव गुड मनी ऑल्सो, यू हैव गुड लाइफ ऑल्सो, पर ये पांच चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. थैंक यू.

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

एक नारी की असली खूबसूरती किस चीज में है? 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। और ये मैंने बात इसलिए बोली और शुरुआत में इसलिए बोली क्योंकि आज सुबह ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रहा था तो एक कोट मेरे सामने आया और उस कोट में लिखा हुआ था, एक औरत की असली खूबसूरती उसकी सोच, हिम्मत और हौसले में होती है। कि उसकी सोच कितनी दूर की है, उसकी हिम्मत कितनी है उसके अंदर, और उसका हौसला जो अपने साथ वाले लोग हैं उनको लेके कितना बुलंद है, ये दिखाता है कि एक औरत कितनी हिम्मत वाली है या एक औरत कितनी खूबसूरत है। और ऐसी कहानियों के एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए देता हूँ क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में चल रहा होता है। जैसे आप घर में मम्मी का एग्जाम्पल ले लीजिए, मम्मी हर चीज से कॉम्प्रोमाइज कर सकती है, जब बात लेकिन आप पे आए या आपकी फैमिली किसी मेंबर पे आए तो मम्मी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है। तो ये है उस लेडी की खूबसूरती कि वो अपने से पहले अपनों को रखती है। समझ रहे हैं आप इसके बीच का डिफरेंस? तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि जब भी आपको टाइम मिले, थोड़ा सा टाइम निकाल के उनके साथ बैठ के अगर आप बात भी कर लोगे ना तो उनका दिन बन जाएगा। और ऐसे ही दिन बनाने वाली बातें अगले 3 घंटे यहाँ पर होने वाली हैं क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो चुकी है नारी नंबर 1 की, ओनली ऑन 89.6 रेडियो महारानी। कुछ हटके।

आगे का रास्ता खराब था, ये लगा था बड़ा बोर्ड। मैंने बस ये सोचा होगा छोटा मोटा मोड़। हुआ जब ये हादसा और आया मुझे होश, तब जाके जाना बस यहीं तक।

0: आज की सोशल स्पॉटलाइट में एक ऐसी महिला है जिनकी जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। और ये महिला ने कुछ ऐसा करा है जो आप और मैं इमेजिन भी नहीं करेंगे ऐसी कंडीशन में खड़े होके, जहां पर मौसम जो है वो एकदम से चेंज हो जा रहा है। अभी जैसे हम लोग देख रहे हैं रेनी सीजन वाला माहौल चल रहा था, तो बारिश इस बार बहुत अनप्रिडिक्टेड सी हो रही है। कब कहां कैसे हो जा रही है हमें पता ही नहीं चल रहा है, और माउंटेन एरिया में इसके रिस्क और बढ़ जाते हैं, वहां पर फ्लड आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। तो ऐसे ही चंबा रिवर जब अपने उफान पे आई तो एक बाइक वाला जो लड़का था वो वहां पर फंस गया। अब इस महिला ने वहां पर अपनी होशियारी दिखाई, अपना माइंड को स्मार्टली यूज करके अपना दुपट्टा उसकी तरफ फेंका और उससे कहा इसको बस पकड़े रहना, और बाकी लोगों से हेल्प लेके धीरे धीरे धीरे धीरे उसे एक सेफ जोन पे साइड पे लेके आई ताकि वो बहके उसके फ्लो में चला ना जाए। तो ये महिला ने जिस हिसाब से उनको वहां पर बचाया है, जिस हिसाब से वहां पर सेव किया है, तो इनका जो जज्बा, इनका जो उस टाइम माइंडसेट, क्योंकि ये खुद एक ऐसे जोन पे है जहां इनको नहीं पता है कि ये फ्लड शायद उनको भी डैमेज कर सकती है या उन्हें भी नुकसान पहुंचा सकती है, बट उन्होंने क्या प्रायोरिटी दी कि अभी जो फंसा है हम उन्हें बचा लेते हैं, अपनी वाली चीजें हम बाद में देखेंगे। तो ये एक महिला ही कर सकती है, और ये एक महिला का ही जज्बा हो सकता है अपने लव वंस के लिए, अपने नियर बाय लोगों के लिए। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।
1: दुनिया की एक सबसे बड़े लूजर की है दास्तान, उसको था वरदान फटी रहेगी रमेश रहेगा वो परेशान, स्ट्रगल और कंगाली में ही निकलेगा उसका सारा जीवन, और कोई नहीं है बदनसीब भाई साहब मैं ही हूँ महान, हमेशा

0: कभी आपको मेरी आवाज सुनाई दे।
1: ललचाता था अपनी बेसिक जरूरतों की चीजों को देख देख, चाय पे जी रहा था जब दोस्त खा रहे थे केक स्टेक्स और प्रोटीन शेक्स, जैसे तैसे फोन को चला रहा था लगा लगा के सेलो टेप्स, चिन्नरों की आवाज से हमेशा बसती रहती थी मेरी जेब। सब देते प्रवचन।

0: ऐसा घर जहाँ लोग पहले दिन बोलते हैं मैं किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, और फिर तीसरे दिन ही आपने मेरा नाम नॉमिनेशन में क्यों लिया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत, और अब सिनेमा घूमने वाला है उस घर की तरफ जहाँ प्रिवेसी नहीं लेकिन ड्रामा अनलिमिटेड है। जी हाँ, बिग बॉस 20 की तैयारी पूरे रफ्तार पे है और सलमान खान एक बार फिर से होस्ट के रूप में वापस आ रहे हैं। शो का प्रीमियर 6 सितंबर को स्केड्यूल्ड है। इस बार जिन नामों की कॉन्टेस्ट लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से है कुशल, तनवर, अकागुल्लू, खुशी दुबे, गीता बसरा, मैरी कॉम, काजी तकीर, विक्रांत सिंह राजपूत, आशिफा खान, ईशा रिखी, शोविक चक्रवर्ती और आम्रपाली दुबे जैसे नाम शामिल है। और ट्विस्ट ये भी है कि रिया अहीर और लव गिल में से एक को ऑडियंस वोटिंग के जरिए डे वन एंट्री मिलने की बात भी सामने आई है। अब बस देखना यह है कि इस घर में पहले प्यार होता है, दोस्ती होती है या नॉमिनेशन। तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ सिनेमा का कैप्सूल में।
1: Your voice. I am singing songs. Soup songs.

0: club song. Club song.
1: एक महिला ना पूरा संसार बदल सकती है, संसार क्या आप सबके माइंडसेट भी बदल सकती है अगर उसने ठान लिया। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आज जो वुमेन की हम बात करने वाले हैं, शी चेंज द वर्ल्ड, नहीं शी हैव चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल, कि अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो एक लगन है या वो डेडिकेशन है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आज से कुछ साल पहले एक अपार्टमेंट में आग लगती है और वहां आग लगने की वजह से बहुत सारे लोग उसके अंदर फंस जाते हैं, लगभग 70 लोग वहां पर फंसे होते हैं। उस बीच में ये एक महिला है जो उसी बिल्डिंग में काम करने जाती थी लोगों के घरों में, बट वहां पर इसने कहा नहीं, मैं आज इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। और वो सिर्फ 17 साल की थी और नाम था करीना थापा, और उन्होंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला। ये LPG ब्लास्ट था जिसकी वजह से बिल्डिंग में आग लगी थी, और ये वहाँ गई और जितने भी लोग वहाँ थे उनको वहाँ से सेफली निकाल के बाहर लेके आई। लगभग 70 से ज़्यादा लोगों की जान इन्होंने अकेले वहाँ पर बचाई थी। तो और इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए इन्हें बाल पुरस्कार से भी नवाजा गया है, और ये बाल पुरस्कार उनको मिलता है जिन्होंने छोटी उम्र में कुछ ऐसा कर दिया होता है जो शायद सोसाइटी के बड़े बड़े लोग भी सोच नहीं पाते हैं। तो ये जो सोच है ना इनकी, कि खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचो, वहां से उनको बचा के लाओ, क्योंकि मैं तो सेफ हुई, मुझे पता है कि कहां से किसको कैसे निकाल के आ सकते हैं क्योंकि मैं इस बिल्डिंग में डेली काम करने जा रही हूं, तो उसको उन्होंने बहुत ब्रेवली वहां पर यूज किया और सब लोगों को सेव करके बाहर लेके आई। शी हैव सेव्ड द पीपल, शी हैव चेंज्ड द वर्ल्ड, शी हैव चेंज्ड द माइंडसेट। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

भाई अब सीएम भी ऐसे हो गए ना, वो सीएम वाला फील देना बंद कर चुके। ऐसा लगता है कोई अपना सा बंदा है यार, ये तो बिल्कुल हमारी तरह चीजें कर रहा है। ऐसा ही सीएम तो हमको लाइफ में चाहिए था। और परफेक्ट एग्जांपल है विजय थालापति। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ। अभी ये ऐसे ही गांव का इंस्पेक्शन करने गए, गांव गांव लोगों को देखने गए, तो वहाँ एक लेडी इनके पास आई, इनसे बहुत प्यार से मिली, इनसे बात आत कर रही थी, तो विजय थालापति बहुत इमोशनल हो गए और 40,000 रुपए का एक चश्मा उस टाइम लगाए हुए थे तो उन्होंने उतारा, कह रहा अम्मा आप लगा के दिखाइए आपके ऊपर ये चश्मा कैसे लगता है। और उसके बाद वो चश्मा उसको दे के ही चले आए कि अम्मा ये आप रखिए, आप पे अच्छा लग रहा है, मैं दूसरा ले लूंगा, घर पे और पड़े। बट वो जो प्यार था वो ये नहीं था कि शो ऑफ के लिए, सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि वहाँ कोई कैमरा उस टाइम उन्होंने ऑन नहीं कराया था, वो तो बाई चांस पब्लिक में से किसी का कैमरा ऑन था जिसने वो वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दी और काफी वायरल इस पर चल रही है, काफी ट्रेंडिंग पे चल रही है। बट विजय थालापति का ये जो रूप है कि वो हर एक की मदद करना चाहते हैं, हर एक को अपना सा मान के चलना चाहते हैं, ये सबसे यूनिक है। मतलब कोई सीएम अपने लोगों के बारे में सोच रहा है कि उनके बीच में जा रहा है, उनकी प्रॉब्लम बीच में जाके समझ रहा है और उसके बाद उनके जैसे ही रिएक्ट भी कर रहा है। उनको पता है इनको क्या चाहिए, इनको चाहिए कि बस मैं इनको

से सुन, तो वो सबकी सुनते हैं, उसके बाद उस चीज पे एक्शन लेते हैं। और नायक मूवी ध्यान है आपको, वो एक दिन का जो सीएम बनाया जाता है और सब तख्ता पलट कर देता है। विजय थालापति ऐसा ही कर रहे हैं भाई तमिलनाडु में, पूरी तख्ता पलट की, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। हार्ट्स ऑफ यार, जो रियल मूवीज में उन्होंने दिखाते हैं ना साउथ की, कि एक जब सीएम बनता है क्या करना चाहिए, तो विजय थालापति वो मूवी ही दिखा रहे हैं हमको, ऐसा लग रहा है। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

जब मैं छोटी थी ना, वैसे देखो हाइट से तो मैं भी छोटी हूँ, लेकिन जब मैं छोटी थी ना, अपने बचपन की बात करूँ, तो मेरे दिमाग में ना बहुत अलग अलग चीजें आती थी। कभी मेरा पुलिस वाला बनने का मन करता था, कभी मेरा डॉक्टर बनने का मन करता था, और अक्सर जब मैं ट्रैफिक पुलिस वालों को देखती थी ना, तो यार मेरा बड़ा ही मन होता था वो बीच रोड पर खड़े होकर सिग्नल्स के बारे में बताना, अपने हाथ इधर से उधर करना और अपनी पूरी ट्रैफिक को मैनेज करना। लेकिन ना वो सपना मेरा सपना ही रह गया यार। फरीदाबाद में ना कभी वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली नहीं, लगता फरीदाबाद वालों ने ना मेरे टैलेंट को नहीं समझा। लेकिन भाई बैंगलोर ने ना एक ऐसा इनिशिएटिव निकाला है जहाँ पर अगर आपका मन है ना ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी करने का, तो आप कर सकते हो, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले सकते हो। तो वही बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस ने कॉप ऑफ द डे इनिशिएटिव दोबारा से लॉन्च किया है, जहाँ सिटीजन्स एक दिन ट्रैफिक कॉप्स के साथ ऑन ग्राउंड ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं और साथ ही रोड्स को सेफ बनाने के लिए अपनी सजेशंस भी दे सकते हैं। तो भाई अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूँ ना, आई लव दिस इनिशिएटिव बैंगलोर, और मैं फरीदाबाद से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी यार, प्लीज इस तरह के इनिशिएटिव आप भी लेकर आइए ना। इससे पता क्या होता है, इससे ना जब हम एज सिटीजन्स निकलते हैं ना इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सड़कों पर, तो हमें पता होता है कि भाई कितना टफ है ये जॉब और हमें क्या करना चाहिए रोड पर, किस तरह से हमें ट्रैफिक के बारे में समझना चाहिए। तो जो अब तक हम ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ते थे ना, रूल्स फॉलो नहीं करते थे, वो अपने आप ही हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूँ, तो चलिए फिर से बैंगलोर लौट पड़ते हैं, मैं तो कहाँ फरीदाबाद आ जाती हूँ। तो देखिए अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूँ ना, तो भाई ज्वाइन करने के लिए आपको एक ऐप है BTP, इस ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, होम पेज पर ट्रैफिक कॉप ऑफ द डे ऑप्शन मिलेगा आपको, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अपनी डिटेल सबमिट करनी है, साथ ही सिलेक्शन पुलिस रजिस्ट्रेशन रिव्यू के बाद करेगी। सो देखिए ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत अगर आप इस प्रोसेस पर खरे उतर जाते हैं, तो आप होंगे ट्रैफिक कॉप ऑफ द डे, मतलब एक दिन चालान काटने का मौका मिलेगा। जितने चालान अभी कटे थे ना यार, उन चालानों को याद करके ना, जितने भी व्हीकल आपको ऐसे दिखते हैं जो कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे हैं, उनके चालान आप लोग काट देना। तो भाई देखिए यहाँ पर आपको चालान भी काटना है, ट्रैफिक भी संभालना, और इस इनिशिएटिव से ना आपको ये भी पता चलेगा कि भाई कितनी मेहनत चाहिए ट्रैफिक कॉप बनने के लिए। ये जो हम सड़कों पर निकल जाते हैं ना, रूल्स फॉलो नहीं करते, फिर आपको पता चलेगा बेटा। तो इस इनिशिएटिव का पार्ट बनना हो तो जरूर बन जाइए। और हाँ, फरीदाबाद में भी अगर ऐसा आ गया ना इनिशिएटिव, तो मैं आपको स्टूडियो में ही मिलूंगी, मैं आपको फरीदाबाद की सड़कों पर मिलूंगी, बिकॉज मेरा तो ना ये ड्रीम जॉब है। तो भाई देखिए अभी फिलहाल आगे चलते हैं, अब वक्त हो गया इस गाने का, तो एंजॉय कीजिए ट्रैक। Best of Anjali.

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

हाँ जी, तो महिलाओं के थोड़े से हक की बात और कर ले और महिला को थोड़ा सा और उनके ही राइट्स के बारे में नॉलेज दे ले। 89.6 रेडियो महारानी और तुषार है यहाँ पर आपके साथ। और आज जो मैं राइट की बात करने जा रहा हूँ, हर महिला को बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए क्योंकि कई बार ये मिसअंडरस्टूड हो जाता है। राइट टू पे इक्वल। अब यहाँ पर आप जब डेट पे जा रहे हैं या आप किसी से मिलने जा रहे हैं, वहां पर आपको इक्वल पे करना, ये उस चीज की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर राइट टू पे इक्वल से होता है जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो जितनी सैलरी आपके उस लेवल पे एक मेल एम्प्लॉय को मिल रही है उतनी ही आपको भी मिलनी चाहिए। पे इक्वल यहां से हम रिलेट कर रहे हैं, जितना काम आप कर रहे हो अगर सेम एक कोई मेल कर रहा है, जितनी जिम्मेदारी आपके पास है उतनी ही एक मेल एम्प्लॉय के पास है, और जिस लेवल पे आप हो और उसी लेवल पे वो मेल एम्प्लॉय है, मतलब सब इक्वल हुआ तो सैलरी भी इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं, अब ये हो सकता है कि वो बहुत साल पुराना हो किसी कंपनी में और आप अभी आए हो तो धीरे धीरे आप वहां तक पहुंचो और आप थोड़े से कम एक्सपीरियंस हो, तो ये सारी चीजों आपको मैच करनी है। ये नहीं कि आप भी डायरेक्टर पोस्ट पे गए, वो भी डायरेक्टर पोस्ट पे है, तो आप कहो नहीं मुझे इक्वल सैलरी चाहिए। एक्सपीरियंस वहां पर मैटर करता है, बट आप भी उतने ही एक्सपीरियंस हो, 6 साल, वो भी 6 साल एक्सपीरियंस और सेम पोस्ट पे हो, देन यू कैन फाइट फॉर योर राइट कि मुझे भी इतना पे मिलना चाहिए क्योंकि ये मेरा अधिकार है और अपने अधिकार के लिए बोलना कभी भी गलत नहीं होता है। तो राइट टू पे इक्वल का सिंपल ये मतलब है। और बाकी अगर आप अच्छा कमा रही हैं तो डे रेट पे जाइए तो वहां भी पे इक्वल कर लिया करिए, थोड़ा मेन का बर्डन जो है वो कम हो जाएगा। बी अ स्मार्ट वुमेन वाला एक कदम उठा लीजिएगा और 89.6 रेडियो महारानी सुनते रहिएगा।

हर रिलेशनशिप की एक चाबी होती है और वो चाबी होती है रिस्पेक्ट की। और अगर आपने वो रिस्पेक्ट थोड़ी सी चाबी टेढ़ी करी तो ताला खुल जाएगा, आप रिलेशनशिप से आजाद हो जाओगे। आजाद इन सेंस रिलेशनशिप से अलग अलग हो जाओगे भाई, ये आजादी वाली आजादी नहीं है। 89.6 रेडियो महारानी तुषार है यहाँ पर आपके साथ। और हम अक्सर ये बोलते हैं ना, एक आदमी को चाहिए क्या रिलेशनशिप में, तो उसे भैया रिस्पेक्ट चाहिए। उसे ये चाहिए जब आप उससे बात करो तो उसको भी समझो, उसकी चीजों को भी समझो, नॉट ओनली कि वो आपको समझे, आप अपनी चीजें ही उस पर लाते रहो। तो वो रिस्पेक्ट जो इक्वल होती है ना, वो कई बार जज्बातों से और बातों से होती है। कि आपने उसको ऐसे उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया, देख नहीं रहे वो कितने लोगों के सामने हो आप, उसके दोस्त खड़े हैं वहां पर, उसे गलत बोलने लग जा रहे हो। तो ये चीजें जो होती है ना, ये उसे कहीं हर्ट करती है और ये उसके धीरे धीरे धीरे धीरे बैगेज बनने लगता है, जिस वजह से रिलेशनशिप वीक होने लग जाते हैं और मैन जो है वो थोड़े धीरे धीरे आपसे कटने लग जाते हैं या दूर होने लग जाते हैं। तो ये जो एक चीज है ना, जो आज आपको लाइफ टाइम प्रो टिप दी है मैंने, कि रिस्पेक्ट कम फर्स्ट। जब आप 10 लोगों के सामने हो तो उनको वैसे ही ट्रीट करो। अकेले कमरे में आप उनसे कैसे बात कर रहे हो, क्या आपकी कम्युनिकेशन है, ये वहां पर आप अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हो कि देखो यार ये वहां पर मुझे गलत लगा था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना अपनी बातें। और ये दोनों के लिए फॉलो होता है, एक मेल को भी ये चीजें करनी चाहिए वुमेन के साथ, कि पब्लिकली जहां आप साथ में गए हो वहां उसी का साथ देना, क्योंकि वो आपके भरोसे वहां पर आई है। तो ये दोनों तरह से इक्वल बैलेंस वाली चीज है, नॉट ओनली मैन नॉट ओनली वुमेन, बट दोनों को अपने माइंड में ये रख के चलना चाहिए, रिस्पेक्ट इन रिलेशनशिप इज मस्ट। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।

देखो हम रेडियो महारानी वाले ना हर थोड़े थोड़े टाइम में कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएटिव आपके लिए लाते रहते हैं जो शायद आपकी लाइफ का एक ऐसा हिस्सा बन जाएगा कि आपको आज तो नहीं आज से 10 साल 15 साल बाद भी उसके असर दिखाई देंगे। 89.6 रेडियो महारानी तुषार यहाँ पर आपके साथ, और इस बार हम ऐसा ही एक प्रोजेक्ट लेके आए हैं जिसका नाम है प्रोजेक्ट ऑक्सीजन। और इसमें हम कुछ बड़ा करने के लिए आपसे नहीं कह रहे, हम आपसे ये कह रहे हैं आप ऑक्सीजन मास्टर बन जाइए। अब आप ऑक्सीजन मास्टर कैसे बनेंगे? सिंपल सा इसका एक प्रोसेस होने वाला है कि आप अपने आसपास कोई ऐसी जगह ढूंढिए जहां पर आप पेड़ लगा सकते हैं जो बड़ा होकर एक बड़ा विशाल वृक्ष बन जाए। और उसके लिए भी आपको मेहनत नहीं करनी है, उसके लिए आपको करना क्या है, हमें मैसेज करना है, हमें डीएम करना है रेडियो महारानी के नाम से, हम आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, वो भी ना मिले तो इट्स आरजे तुषार के नाम से मैं मिल जाऊंगा। वहां पर आगे डीएम करिए कि हम ये करना चाहते हैं, प्लांट हम आपको देंगे, पेड़ आप आके हमसे लेके जाइए, हमारे ऑफिस से कलेक्ट करके जाइए, उसको लगाइए और लगाने के बाद उसकी जो फोटो है वो हमको भेजिए और हम आपको सर्टिफिकेट देंगे कि आप एक ऑक्सीजन मास्टर हैं, आपने ऑक्सीजन में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है। तो यार इतनी अच्छी चीज जो हमारे फ्यूचर जनरेशन को प्लांट से ऑक्सीजन से इंट्रोड्यूस कर रही है, तो मुझे नहीं लगता इसके लिए किसी को रुकना चाहिए या अपने कदम रोकने चाहिए। लाइन लग जानी चाहिए मेरे ऑफिस के बाहर, इतने प्लांट आपको चाहिए हो कि हम देते देते थक जाए, और हम सारे प्लांट देने की कोशिश करेंगे। बस आपको पहला कदम उठाना है, बाकी कदम तो हम उठा ही चुके हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: सिनेमा का कैप्सूल।
1: कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप बाहर निकलकर रिव्यू नहीं करते बल्कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और अब बात करेंगे उस फिल्म की जिसने लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी का भी डोज दिया है। नाम है हनुमान अंश। ये फिल्म नीम करोली बाबा की लाइफ और टीचिंग से इंस्पायर्ड है और ऑडियंस से इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इमोशनल डेप्थ, फेथ और सोलफुल म्यूजिक इसकी खासियत बताए जा रहे हैं और इसका म्यूजिक भी लोगों को कनेक्ट कर रहा है। खासकर डिवोशनल ट्रैक पार्वती को लेकर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लगता है कि सिनेमा में बस एक्शन, ड्रामा और क्योस ही चल रहा है तो हनुमान अंश शायद वो फिल्म है जो थोड़ा पॉज बटन दबाती है, क्योंकि हर फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती, कुछ फिल्में आपको भीतर से भी टच कर जाती हैं।

एक महिला के बैग में ये चीज आपको अक्सर मिल ही जाएगी, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ कि लेडीज के बैग में आखिर है क्या। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। और एक बहुत आसान सी चीज आज हम डिकोड करने जा रहे हैं, एक बिंदी। अक्सर इस पे बहुत सारे गाने बन जाए ना, बिंदी अचम के, चूड़ी खन के, और अभी रिसेंटली लड़की वही अच्छी लगती है जो लगाती बिंदी हो। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री ने, हॉलीवुड ने, बॉलीवुड ने दिए हैं। बट इस बिंदी की हिस्ट्री क्या है? जब मैंने जानने की कोशिश करी तो पता चला इसकी जो हिस्ट्री है वो सालों पुरानी तो है, बट भारत में ये कहाँ से आई? ये टीका जो हम लगाते हैं या एक छोटी सी बिंदु जो हम टीके से लगाते थे, ये परंपरा वहां से शुरू हुई थी। और ये बिंदु लगाने का जो एक मोटिव था वो ये था कि हमारी थर्ड आई जो होती है वो हमारे माथे के सेंटर पे होती है, तो हम उस चक्रा को एक्टिव कर रहे होते थे उस टाइम वो बिंदु लगा के। और धीरे धीरे बिंदी जो है वो विवाहित महिलाओं की पहचान बननी शुरू हो गई, और धीरे धीरे ये उनके श्रृंगार का पार्ट बनता गया। और आज जब हम बिंदी की इस परंपरा की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये फैशन और सेल्फ एक्सप्लेनेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल बन चुकी हैं। कई महिलाएं तो इसे अपनी पर्सनालिटी और स्टाइल को हाईलाइट करने के लिए भी लगाती हैं। और अब बिंदी के साइज के हिसाब से बताया जाता है कि उनका लुक कितना बोल्ड हो रहा है। छोटी सी बिंदी मतलब वो ज्यादा अपने आप को उस वे में हाईलाइट नहीं करनी चाह रही, और बड़ी बिंदी जो दूर से ही लोगों को अट्रैक्ट कर लेती है, तो आप उसी लेवल पे अपने चक्रास एक्टिवेट कर लेते हैं। तो महिलाओं ने तो इसे बिंदी के रूप में ले लिया, बट पुरुष आज भी इसे टीके के रूप में ही लगाते हैं, बट वो लगाते जरूर हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: चली।
1: जब मैं छोटी थी ना, वैसे देखो हाइट से तो मैं अभी भी छोटी हूँ, लेकिन जब मैं छोटी थी ना, अपने बचपन की बात करूँ, तो मेरे दिमाग में ना बहुत अलग अलग चीजें आती थी। कभी मेरा पुलिस वाला बनने का मन करता था, कभी मेरा डॉक्टर बनने का मन करता था, और अक्सर जब मैं ट्रैफिक पुलिस वालों को देखती थी ना, तो यार मेरा बड़ा ही मन होता था वो बीच रोड पर खड़े होकर सिग्नल्स के बारे में बताना, अपने हाथ इधर से उधर करना और अपनी पूरी ट्रैफिक को मैनेज करना। लेकिन ना वो सपना मेरा सपना ही रह गया यार। फरीदाबाद में ना कभी वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली नहीं, लगता है फरीदाबाद वालों ने ना मेरी टैलेंट को नहीं समझा। लेकिन भाई बैंगलोर ने ना एक ऐसा इनिशिएटिव निकाला है जहाँ पर अगर आपका मन है ना ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी करने का, तो आप कर सकते हो, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले सकते हो। तो वही बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस ने कॉप ऑफ द डे इनिशिएटिव दोबारा से लॉन्च किया है, जहाँ सिटीजन्स एक दिन ट्रैफिक कॉप्स के साथ ऑन ग्राउंड ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं और साथ ही रोड्स को सेफ बनाने के लिए अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। तो भाई अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूँ ना, आई लव दिस इनिशिएटिव बैंगलोर, और मैं फरीदाबाद से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी यार, प्लीज इस तरह के इनिशिएटिव आप भी लेकर आइए ना। इससे पता क्या होता है, इससे ना जब हम एज सिटीजन्स निकलते हैं ना इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सड़कों पर, तो हमें पता होता है कि भाई कितना टफ है ये जॉब और हमें क्या करना चाहिए रोड पर, किस तरह से हमें ट्रैफिक के बारे में समझना चाहिए। तो जो अब तक हम ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ते थे ना, रूल्स फॉलो नहीं करते थे, वो अपने आप ही हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूँ, तो चलिए फिर से बैंगलोर लौट पड़ते हैं, मैं तो कहाँ फरीदाबाद आ जाती हूँ। तो देखिए अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूँ ना, तो भाई ज्वाइन करने के लिए आपको एक ऐप है BTP, इस ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है। होम पेज पर ट्रैफिक कॉप ऑफ द डे ऑप्शन मिलेगा आपको, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अपनी डिटेल सबमिट करनी है, साथ ही सिलेक्शन पुलिस रजिस्ट्रेशन रिव्यू के बाद करेगी। तो देखिए ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत अगर आप इस प्रोसेस पर खरे उतर जाते हैं, तो आप होंगे ट्रैफिक कॉप ऑफ द डे। मतलब एक दिन चालान काटने का मौका मिलेगा, जितने चालान अभी कटे थे ना यार, उन चालानों को याद करके ना, जितने भी व्हीकल आपको ऐसे दिखते हैं जो कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे हैं, उनके चालान आप लोग काट देना। तो भाई देखिए यहाँ पर आपको चालान भी काटना है, ट्रैफिक भी संभालना, और इस इनिशिएटिव से ना आपको ये भी पता चलेगा कि भाई कितनी मेहनत चाहिए ट्रैफिक कॉप बनने के लिए। ये जो हम सड़कों पर निकल जाते हैं ना, रूल्स फॉलो नहीं करते, फिर आपको पता चलेगा बेटा। तो इस इनिशिएटिव का पार्ट बनना हो तो जरूर बन जाइए। और हाँ, फरीदाबाद में भी अगर ऐसा आ गया ना इनिशिएटिव, तो मैं आपको स्टूडियो में ही मिलूंगी, मैं आपको फरीदाबाद की सड़कों पर मिलूंगी, बिकॉज मेरा तो ना ये ड्रीम जॉब है। तो भाई देखिए अभी फिलहाल आगे चलते हैं, अब वक्त हो गया इस गाने का, तो एंजॉय कीजिए ट्रैक। बेस्ट ऑफ अंजलि।

0: 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ, और आज की जो हमारी गेस्ट है ना, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। और आज की जो हमारी गेस्ट है उनका नाम है डॉक्टर लीना, और ये फाउंडर प्लस मैनेजिंग डायरेक्टर के साथ साथ ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब की भी मेंबर है। मैम, पहले तो ये फाउंडर और डायरेक्टर वाली जर्नी के बारे में बताइए।
1: नमस्कार लिसनर्स, एंड मैं डॉक्टर लीना रलन कश्यप हूँ, और मैं फाउंडर और मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ काइजन हीला की, जो कि एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है ग्रेटर फरीदाबाद में।
0: मैम, आप ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब के साथ कैसे जुड़े और ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई?
1: जो मेरा बिलीफ है, अगर मैंने जॉब से चेंज करके अपना एक एंटरप्रेन्योरशिप को चूज किया, तो मैंने अपने स्पेसिफिक रीजंस की वजह से ये डिसीजन लिया होगा, जो बहुत मेजर था। जब मैंने शुरू किया काइजन हीला, उसी वक्त ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब भी फॉर्म हुआ था। मतलब वुमेन एम्पावरमेंट के जो नारे हैं
2: जी,
1: मैं उनमें विश्वास नहीं रखती। अब आप बोलोगे कि कैसी बात मैंने बोल दी, लेकिन मुझे लगता है हर एक वुमेन अपने में एम्पावर्ड है। हर एक औरत में इतनी शक्ति है कि उसे शायद खुद रियलाइज करने की जरूरत, और वो रियलाइज कराने के लिए आपको कई बार वो माहौल चाहिए होता है, और ग्रेटर फरीदाबाद वुमेन्स क्लब वही माहौल है।
0: तो ये हमारे साथ आज स्टूडियो में है डॉक्टर लीना, और हम इनसे और भी चीजें जानेंगे वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट और इन सारी चीजों को लेकर।

0: सुबह की बेल
1: आंखों में नींद,
0: बैग में बुक्स दिमाग में स्पीड, टीचर बोले
1: नोटबुक खोलो,
0: हम बोले मैम बस 2 मिनट्स प्लीज।

0: 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। और आज की जो हमारी गेस्ट है ना, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। मैम, क्लब में अक्सर हम लोग वुमेन्स को लेके बहुत सारे अलग अलग एक्टिविटी और कैंपेन्स करते रहते हैं, कुछ उनके बारे में बताइए।
1: तो बीइंग इनटू वेलनेस, जब मैं इस ग्रुप से जुड़ी, एक मुझे लगा कि बहुत सारी फीमेल्स एक प्लेटफॉर्म पे जहां हम एक दूसरे को बेटर समझ पाएंगे, और दूसरा ये कि बीइंग इनटू वेलनेस, और अगर हम देखें होम मेकर्स, तो वो फीमेल्स जो जानती हैं सिर्फ वो चार दीवारी, घर, बच्चा, हस्बैंड, फैमिली लाइफ और अपनी फैमिली का ध्यान रखना।
0: तो ये हमारे साथ आज स्टूडियो में है डॉक्टर लीना, और हम इनसे और भी चीजें जानेंगे वुमेन सेफ्टी, वुमेन एम्पावरमेंट और इन सारी चीजों को लेके।

0: डॉक्टर कॉलिंग।
1: हाय, आई एम डॉक्टर तनु। आई एम एम डी मेडिसिन डायबिटोलॉजिस्ट। आई बीन प्रैक्टिसिंग फॉर लास्ट 10 ईयर्स एंड यस, आई ऑल्सो रन अ सप्लीमेंट कंपनी। आई एम अ फेलो इन रीजनरेटिव मेडिसिन एंड माई एडवाइस टूडे कम्स फॉर वुमेन हु हैव डन देयर फर्स्ट इनिंग एंड नाउ देयर इन देयर सेकेंड इनिंग। पहली इनिंग में मेनार्की, प्रेगनेंसी, बच्चे, सिंगल लाइफ, मैरिड लाइफ, सो मेनी थिंग्स एंड नाउ यू आर इन अ वेरी वेरी डिफरेंट फ्रजाइल फेस ऑफ योर लाइफ वेर आपकी बॉडी में जितनी सारी चीज़ों से आप खूबसूरत लगते थे, आप इतना एक्टिवली काम करते थे, अब वो सारी चीज़ें कम होती चली जाएंगी। अब बहुत ज़रूरी है कि हम 5 चीज़ों पर ध्यान दें। पहली चीज़, हो सकता है कि आप पहले स्लीप को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, बट टेक अ गुड मैग्नीशियम सप्लीमेंट एंड ट्राई टू स्लीप बेटर। सेकेंड, प्रोटीन, एज इन हमें बचपन सिखाया गया है कि लेना चाहिए लेना चाहिए लेना चाहिए, बट हम ऑब्वियसली एक 40 साल की ज़िंदगी में, काम में, बच्चों में, बहुत सारी चीज़ों में भूल जाते हैं वो चीज़ें। अब आपकी उस एज में हो, अब आपकी बॉडी बहुत वियर ऑफ हो चुकी है, यू नीड मोर प्रोटीन देन बिफोर। थर्ड थिंग, अब आपकी स्किन पहले जैसी नहीं रह सकती। यू हैव टू एक्सेप्ट द स्किन विल ड्राई आउट, योर वेजाइना विल ड्राई आउट, योर बॉडी नीड्स मोर एंड मोर, यू नो, आपको और अच्छी क्रीम्स और अच्छे सप्लीमेंट्स और अच्छी डाइट फुल ऑफ हाइड्रेशन यूज़ करनी है। फोर्थ, आपको अब एक ब्रेन फॉग, आपको अपना आधी चीज़ें थोड़ी कम याद रहेंगी, अब आप थोड़ा कन्फ्यूज रहोगे, ये सब पेरीमेनोपॉज में होता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। ऑलवेज टॉक टू योर डॉक्टर्स, मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट ऑन टाइम, टेक द मेडिकेशन एज एडवाइज्ड, मीट ऑल योर फ्रेंड्स, कीप यू नो योर सेल्फ अराउंड विद पीपल जिनको ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ताकि आप अकेला ना फील करो। इस टाइम पे बहुत लोगों के डिवोर्स होते हैं, बहुत लोग बहुत मिसअंडरस्टूड किए जाते हैं अपने पार्टनर से, दे आर गोइंग थ्रू अ एरे ऑफ प्रॉब्लम्स, बट देयर इज अ सॉल्यूशन टू एवरीथिंग व्हेन यू आर सिटिंग विद द राइट पीपल। पांचवी चीज, यू विल हैव टू रियली रियली टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ, दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट, बिकॉज अब आपकी जैसा आपका पहले जैसा सुंदर दिखना, आपकी डाइट का चेंज होना, आपका वेट गेन होना, आपका बहुत वेट गेन हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पैक्ट करेंगी। ये पांचवी चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। मीटिंग अ साइकोलॉजिस्ट, अ गायनेकोलॉजिस्ट, अ न्यूट्रिशनिस्ट शुड बी इन योर लिस्ट, बिकॉज राइट नाउ यू आर अर्निंग वेल, यू हैव गुड मनी ऑल्सो, यू हैव गुड लाइफ ऑल्सो, पर ये पांच चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। थैंक यू
0: डॉक्टर कॉलिंग।

0: 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ, और आज की जो हमारी गेस्ट है ना, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने मिलने वाला है। मैम, हमने अक्सर ये सुना है ना कि जो घर होता है उसकी मुखिया तो फीमेल्स ही होती हैं, इसके पीछे का क्या एक कॉन्सेप्ट आप शेयर करना चाहेंगी?
1: नानी का घर है, कभी सुना है कभी नाना का घर है, इसलिए क्योंकि इसका मतलब नानी इज कंट्रोलिंग द हाउस। बोला तो जाता है कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, लेकिन घर, समाज और रिश्ते हमेशा फीमेल ही चलाती है और फीमेल के हाथ में ही है। तो इसलिए आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस वेयर इन दैट टीम वी कुड एक्चुअली वर्क ऑन टू पीपल, वी कुड एक्चुअली वर्क ऑन टू द टीम ऑफ फीमेल्स, जो खुद रियलाइज कर पाए कि उनकी अपनी पावर्स कितनी है और कितना वो स्ट्रॉन्ग रह के अपनी चीजों को, अपनी लाइफ को बेटर मैनेज कर सके।
0: थैंक यू सो मच मैम अपना कीमती वक्त यहाँ पर हमको देने के लिए और इतनी सारी अवेयरनेस के बारे में चीजें हमको बताने के लिए। एंड आई होप जितने भी लिसनर्स हैं और जितनी स्पेशली वुमेन्स हैं, उन्हें आपके इस मोटिवेशनल टॉक से बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली होगी। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

कभी नोटिस किया है, बॉलीवुड में एक फिल्म आती है, फिर उसकी कहानी से ज्यादा चर्चा होती है किसने क्या कहा, किसने क्या किया और किसका क्या रिएक्शन आया। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूं गीत। और अब बात करते हैं उस चीज की जो आजकल फिल्मों जितनी ही इम्पोर्टेंट हो गई है, ओटीटी और एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या चल रहा है। तो इस हफ्ते ओटीटी पर भी नए टाइटल्स ने एंट्री ली है, कुछ मिस्ट्री लेकर आए हैं, कुछ ड्रामा, कुछ थ्रिलर और कुछ ऐसे जिन्हें देखकर आप सोचेंगे ये मैंने कब अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया था। बबीता सिंह रिपोर्टिंग, चुंबक, पार्ट टाइमर्स, द विस्पर मैन, डार्क मैटर सीजन 2 और ग्रेवयार्ड सीजन 3 जैसे टाइटल्स इस हफ्ते अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए रेडी हैं। तो मंडे हो या संडे, एंटरटेनमेंट की कोई छुट्टी नहीं होती, बस आपकी वॉच लिस्ट में एक चीज की कमी होती है, वो है टाइम। तो मैं हूँ गीत, आप सुन रहे थे सिनेमा का कैप्सूल, जहाँ सिनेमा की दुनिया की हर इंटरेस्टिंग अपडेट मिलती है थोड़े से मसाले और ढेर सारी मस्ती के साथ।

एक महिला के बैग में ये चीज आपको अक्सर मिल ही जाएगी, जिसके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ कि लेडीज के बैग में आखिर है क्या। 89.6 रेडियो महारानी, तुषार यहाँ पर आपके साथ। और एक बहुत आसान सी चीज आज हम डिकोड करने जा रहे हैं, एक बिंदी। अक्सर इस पे बहुत सारे गाने बन जाए ना, बिंदिया चमके चूड़ी खनके, और अभी रिसेंटली लड़की वही अच्छी लगती है जो लगाती बिंदी हो। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री ने, हॉलीवुड ने, बॉलीवुड ने दिए हैं। बट इस बिंदी की हिस्ट्री क्या है? जब मैंने जानने की कोशिश करी तो पता चला इसकी जो हिस्ट्री है वो सालों पुरानी तो है, बट भारत में ये कहाँ से आई? ये टीका जो हम लगाते हैं या एक छोटी सी बिंदु जो हम टीके से लगाते थे, ये परंपरा वहां से शुरू हुई थी। और ये बिंदु लगाने का जो एक मोटिव था वो ये था कि हमारी थर्ड आई जो होती है वो हमारे माथे के सेंटर पे होती है, तो हम उस चक्रा को एक्टिव कर रहे होते थे उस टाइम वो बिंदु लगा के। और धीरे धीरे बिंदी जो है वो विवाहित महिलाओं की पहचान बननी शुरू हो गई, और धीरे धीरे ये उनके श्रृंगार का पार्ट बनता गया। और आज जब हम बिंदी की इस परंपरा की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक परंपरा नहीं, ये फैशन और सेल्फ एक्सप्लेनेशन का एक परफेक्ट एग्जांपल बन चुकी है। कई महिलाएं तो इसे अपनी पर्सनालिटी और स्टाइल को हाईलाइट करने के लिए भी लगाती हैं। और अब बिंदी के साइज के हिसाब से बताया जाता है कि उनका लुक कितना बोल्ड हो रहा है। छोटी सी बिंदी मतलब वो ज्यादा अपने आप को उस वे में हाईलाइट नहीं करनी चाह रही, और बड़ी बिंदी जो दूर से ही लोगों को अट्रैक्ट कर लेती है, तो आप उसी लेवल पे अपने चक्रास एक्टिवेट कर लेते हैं। तो महिलाओं ने तो इसे बिंदी के रूप में ले लिया, बट पुरुष आज भी इसे टीके के रूप में ही लगाते हैं, बट वो लगाते जरूर हैं। 89.6 रेडियो महारानी, कुछ हटके।

0: जब मैं छोटी थी ना, वैसे देखो हाइट से तो मैं अभी भी छोटी हूँ, लेकिन जब मैं छोटी थी ना, अपने बचपन की बात करूँ, तो मेरे दिमाग में ना बहुत अलग अलग चीजें आती थी। कभी मेरा पुलिस वाला बनने का मन करता था, कभी मेरा डॉक्टर बनने का मन करता था, और अक्सर जब मैं ट्रैफिक पुलिस वालों को देखती थी ना, तो यार मेरा बड़ा ही मन होता था वो बीच रोड पर खड़े होकर सिग्नल्स के बारे में बताना, अपने हाथ इधर से उधर करना और अपनी पूरी ट्रैफिक को मैनेज करना। लेकिन ना वो सपना मेरा सपना ही रह गया यार। फरीदाबाद में ना कभी वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली नहीं, लगता फरीदाबाद वालों ने ना मेरी टैलेंट को नहीं समझा। लेकिन भाई बैंगलोर ने ना एक ऐसा इनिशिएटिव निकाला है जहाँ पर अगर आपका मन है ना ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी करने का, तो आप कर सकते हो, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले सकते हो। तो वही बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस ने कॉप ऑफ द डे इनिशिएटिव दोबारा से लॉन्च किया है, जहां सिटीजंस एक दिन ट्रैफिक कॉप्स के साथ ऑन ग्राउंड ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं और साथ ही रोड्स को सेफ बनाने के लिए अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। तो भाई अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूँ ना, आई लव दिस इनिशिएटिव बैंगलोर, और मैं फरीदाबाद से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी यार, प्लीज इस तरह के इनिशिएटिव आप भी लेकर आइए ना। इससे पता क्या होता है, इससे ना जब हम एज सिटीजंस निकलते हैं ना इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सड़कों पर, तो हमें पता होता है कि भाई कितना टफ है ये जॉब और हमें क्या करना चाहिए रोड पर, किस तरह से हमें ट्रैफिक के बारे में समझना चाहिए। तो जो अब तक हम ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ते थे ना, रूल्स फॉलो नहीं करते थे, वो अपने आप ही हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूँ, तो चलिए फिर से बैंगलोर लौट पड़ते हैं, मैं तो कहाँ फरीदाबाद आ जाती हूँ। तो देखिए अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूँ ना, तो भाई ज्वाइन करने के लिए आपको एक ऐप है बीटीपी, इस ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, होम पेज पर ट्रैफिक कॉप ऑफ द डे ऑप्शन मिलेगा आपको, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अपनी डिटेल सबमिट करनी है, साथ ही सिलेक्शन पुलिस रजिस्ट्रेशन रिव्यू के बाद करेगी। सो देखिए ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत अगर आप इस प्रोसेस पर खरे उतर जाते हैं, तो आप होंगे ट्रैफिक कॉप ऑफ द डे, मतलब एक दिन चालान काटने का मौका मिलेगा। जितने चालान अभी कटे थे ना यार, उन चालानों को याद करके ना, जितने भी व्हीकल आपको ऐसे दिखते हैं जो कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे हैं, उनके चालान आप लोग काट देना। तो भाई देखिए यहाँ पर आपको चालान भी काटना है, ट्रैफिक भी संभालना है, और इस इनिशिएटिव से ना आपको ये भी पता चलेगा कि भाई कितनी मेहनत चाहिए ट्रैफिक कॉप बनने के लिए। ये जो हम सड़कों पर निकल जाते हैं ना, रूल्स फॉलो नहीं करते, फिर आपको पता चलेगा बेटा। तो
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 69.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
6: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

0: फ्लेवर।
1: हाँ जी, क्या हाल चाल है आप सबके? लंच का सीन सेट है या अभी भी आप ये डिसाइड कर रहे हो कि आज खाने में क्या खाएं? और वैसे ना 2 बजे का टाइम ना मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि आधा दिन निकल चुका होता है और काम का जो प्रेशर होता है ना वो थोड़ा कम हो चुका होता है, और दिमाग बस एक ही चीज बोल रहा होता है कि भाई अब थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए। तो बस इसी एंटरटेनमेंट के लिए मैं आ गई हूँ। मैं हूँ आरजे पलक और ये है फिल्मी फ्लेवर। अगले 2 घंटे मूवीज, ओटीटी सॉन्ग्स और सिनेमा के दुनिया की बातें होंगी, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चाय के साथ आप किसी दोस्त के साथ बैठकर गॉसिप कर रहे हो। तो आप बस वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि 2 से 4 बजे तक ना बोरिंग होने की परमिशन बिल्कुल नहीं है। लेकिन बातें आगे बढ़ाने से पहले एक गाना हो जाए। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा, अगर आपने अल्फा अभी तक नहीं देखी और आप इसको देखने का प्लान बना रहे हो ना, तो पहले मेरी बात सुन लो। आपकी ना उम्मीदें इसको देखने के बाद थोड़ी लो हो सकती हैं। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि फिल्म को स्पाई थ्रिलर के नाम पे प्रेजेंट किया गया है, लेकिन ऑनेस्टली स्पाई थ्रिलर से ज्यादा ये फैमिली ड्रामा लगती है, क्योंकि स्टोरी में वो ग्रिप नहीं है जो आपको स्क्रीन से बांध के रखे। और अगर आपने धुरंधर देखी है ना, आप इसको देखने के बाद तुरंत कंपैरिजन कर लेंगे, और उस कंपैरिजन में अल्फा काफी वीक पड़ती है। इस मूवी में स्टाइल है, एक्शन है, बिग लोकेशंस भी हैं, बस स्टोरी में वो बात नहीं है जो एक्चुअल में होनी चाहिए थी। इस मूवी में ऋतिक रोशन का रोल भी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं लगा। और अगर मैं ओवरऑल मूवी की बात करूं, तो मेरे लिए अल्फा डिसअपॉइंटिंग वॉच रही। और अगर आपने ये मूवी देखी है तो आप अपना रिव्यू मुझे बता सकते हैं कॉल या व्हाट्सएप करके। नंबर है 9654896896। मैं रिपीट कर देती हूँ, नंबर है 9654896896। चलिए, बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस गाने के बाद स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: everyone. Myself, Dr. Rajni Benival. I am a dentist and a nutritional psychologist. I'm a women health coach and a teen parenting expert. Many times parents comes to me and many times I am seeing teenagers. They are just not know about the nutrition. They do not know what to follow, what not to follow. They are very curious about their bodies. Unki body mein bahut sare hormonal changes ho rahe hain. They are into adolescence age. Unki reproductive or sexual life active ho rahi hai. Aur wo bahut galat galat fancy trends Google aur Instagram aur social media se dekh ke follow to karte hain and landed up into big problems. To ek basic si baat hai ki first of all today's parents are much aware, educated and knowledgeful. To हम लोगों को ना एक बात करने का जो टैबू है वो ब्रेक करना होगा. पेरेंट्स को अपने बच्चों से खुल के बात करनी होगी. आपका बच्चा 12-13 साल का हो गया है, वो अपनी बॉडी के लिए अवेयर हो चुका है, उसकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, वो सेक्सुअली बड़ा हो रहा है, अपोजिट सेक्स के लिए अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मेल्स का फीमेल्स की तरफ, फीमेल्स का मेल्स की तरफ, और सोशल मीडिया की वजह से वो चैनल बहुत ओपन और ईजी एक्सेसिबल है. तो पेरेंट्स को पहले इस चीज़ से बाहर निकलना होगा कि हमारे पेरेंट्स ने हमसे बात नहीं की तो हम अपने बच्चों से नहीं करेंगे. दिस इज नॉट राइट. आज की जनरेशन में अगर आप बात नहीं करोगे तो वो आपके लिए हेट्रेड डेवलप होगा और बच्चा गलत सोर्स से जाके गलत इन्फॉर्मेशन लेगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपनली बात करिए और द राइट नॉलेज ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइट एज पर योर बच्चे की बॉडी. अगर आपका बच्चा लीन बॉडी है, आपका बच्चा हेल्दी बॉडी है, आपका बच्चा लिटिल फैटी बॉडी है, तो हर बच्चे की बॉडी अलग है, हर बच्चे का लाइफस्टाइल अलग है, हर बच्चे का प्रोफेशन को चूज करने का आइडिया अलग है. तो व्हाटएवर द लाइफ ही इज चूजिंग, उसके अकॉर्डिंग आपको उसको न्यूट्रिशन प्लान करके देना होगा. और उसके मन में जो भी सवाल है, एक राइट डॉक्टर की हेल्प लीजिए, एक राइट कंसल्टेंट की हेल्प लीजिए, जो आपको बहुत हेल्पफुल होगा. न्यूट्रिशन, एक्टिव लाइफस्टाइल और सबसे जरूरी बात, एक राइट एडवाइस ऑफ डीलिंग विद द बॉडी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन टुडेज लाइफ. थैंक यू.
1: डॉक्टर कॉलिंग.

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा एक कन्फेशन करूं, कुछ मूवीज ना थिएटर में देखने का प्लान हम बनाते हैं, लेकिन फिर टिकट का प्राइस देख के हम बोलते हैं ना कि यार नेटफ्लिक्स पे देख लेंगे, है ना, जब टीवी पे आएगी तब देख लेंगे। तो इसी को ध्यान में रख के मैं आपको एक मूवी सजेस्ट कर रही हूँ। अगर आपसे धमाल 4 थिएटर में मिस हो गई थी तो अब टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद और जावेद वाली धमाल 4 अब 4 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है। जी हाँ, इस फिल्म को थिएटर्स में मिक्स्ड रिस्पांस मिला था, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि धमाल फ्रेंचाइज की ना ये अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनी। अब आप देख रहे हैं कि जिस मूवी को देखकर हमें लगता है कि उतनी खास नहीं रही, वही बैकग्राउंड में धमाल मचा रही होती है। तो अब आप इस मूवी को घर पर बैठ के देख सकते हैं। तो धमाल 4 आपकी OTT वॉच लिस्ट में अगर नहीं है तो इसको ऐड कर लीजिएगा। चलिए वक्त हो गया है एक गाने का, और गाने के बाद बात करेंगे एक नए ट्रेलर और टीजर के बारे में। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

कभी कभी ना फिल्म का नाम देखकर लगता है कि भाई ये तो ब्लॉकबस्टर मटेरियल है, लेकिन फिल्म देखने के बाद ऑडियंस ही बोल दे कुछ तो गड़बड़ है दया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत और आज की पहली सिनेमा की अपडेट थोड़ी सी टॉक्सिक है। जी हाँ, बात हो रही है यश की टॉक्सिक की। यश की स्क्रीन प्रेजेंस, एक्शन और विजुअल्स की तो तारीफ हो ही रही है, लेकिन कहानी और स्क्रीन प्ले को लेकर ऑडियंस और क्रिटिक्स के रिएक्शन काफी मिक्स्ड है। कई लोगों को लगा कि फिल्म के विजुअल पर इतना फोकस कर दिया है कि कहानी रास्ते की छूट गई है। मतलब भाई नाम टॉक्सिक, एक्सपेक्टेशन ब्लॉकबस्टर वाली, और रिव्यूज में कहीं कहीं ऑडियंस बोल रही है ये कहानी थी या पेशेंस टेस्ट। अब यश के फैंस तो शायद कहेंगे भाई बस यश दिख रहा है, हमें और क्या चाहिए, लेकिन बाकी ऑडियंस पूछ रही है स्टोरी भी दिखा दो। यानी टॉक्सिक ने रिलीज होते ही एक बात तो प्रूव कर दी है, नाम बिल्कुल सही रखा है, ओपिनियंस को लेकर पूरा माहौल ही टॉक्सिक बन गया है। आपको कैसी लगी टॉक्सिक?

0: हटके
1: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला दो।

0: चला तो गाना बजा दूं।
1: फिल्मी फ्लेवर।
2: अच्छा मार्वल फैंस, एक सवाल है आपके लिए। अगर एवेंजर्स एंड गेम दोबारा थिएटर में लगे तो क्या आप फिर से वही इमोशनल डैमेज लेने थिएटर जाओगे? क्योंकि एंड गेम एक बार फिर बिग स्क्रीन पर वापस आ रही है, लेकिन इस बार नाम है एवेंजर्स एंड गेम एंड कोड। और मार्वल स्टूडियो ने इसे री रिलीज के लिए एक नया ट्रेलर भी रिवील किया है, ताकि फैंस को वो पुराना एक्साइटमेंट दोबारा फील हो। और इमेजिन करो कि थिएटर डार्क हो, स्क्रीन पर एवेंजर्स का लोगो आए और बैकग्राउंड में वही फैमिलियर म्यूजिक, पुरानी मेमोरीज एकदम फ्लैशबैक में आ जाएंगी ना। और ये फिल्म 25 सितंबर को आपको थिएटर्स में देखने को मिलेगी। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, एंड गेम का ना बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड भी अब डिस्कशन में है, क्योंकि रिसेंटली स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर उसे ओवरटेक कर लिया था। मतलब मार्वल फैंस के लिए ना ये सिर्फ री रिलीज नहीं, बल्कि थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कॉम्पिटिशन और फुल थिएटर एक्सपीरियंस है। अब आप मुझे बताइए कि एंड गेम दोबारा थिएटर में ही देखना पसंद करोगे या फिर इसको घर पे बैठ के वही पुरानी वाली वाइब के साथ रिक्रिएट करना पसंद करोगे? चलिए वक्त हो गया अब एक गाने का। गाने के बाद बात करेंगे एक ऐसे गाने की जो आजकल काफी अटेंशन ग्रैब कर रहा है। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

जब मैं छोटी थी ना, वैसे देखो हाइट से तो मैं अभी भी छोटी हूँ, लेकिन जब मैं छोटी थी ना, अपने बचपन की बात करूँ, तो मेरे दिमाग में ना बहुत अलग अलग चीजें आती थी। कभी मेरा पुलिस वाला बनने का मन करता था, कभी मेरा डॉक्टर बनने का मन करता था, और अक्सर जब मैं ट्रैफिक पुलिस वालों को देखती थी ना, तो यार मेरा बड़ा ही मन होता था वो बीच रोड पर खड़े होकर सिग्नल्स के बारे में बताना, अपने हाथ इधर से उधर करना और अपनी पूरी ट्रैफिक को मैनेज करना। लेकिन ना वो सपना मेरा सपना ही रह गया यार। फरीदाबाद में ना कभी वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली नहीं, लगता फरीदाबाद वालों ने ना मेरे टैलेंट को नहीं समझा। लेकिन भाई बैंगलोर ने ना एक ऐसा इनिशिएटिव निकाला है जहाँ पर अगर आपका मन है ना ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी करने का, तो आप कर सकते हो, आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले सकते हो। तो वही बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस ने कॉप ऑफ द डे इनिशिएटिव दोबारा से लॉन्च किया है, जहाँ सिटीजंस एक दिन ट्रैफिक कॉप्स के साथ ऑन ग्राउंड ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं और साथ ही रोड्स को सेफ बनाने के लिए अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। तो भाई अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूँ ना, आई लव दिस इनिशिएटिव बैंगलोर, और मैं फरीदाबाद से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी यार, प्लीज इस तरह के इनिशिएटिव आप भी लेकर आइए ना। इससे पता क्या होता है, इससे ना जब हम एज सिटीजंस निकलते हैं ना इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सड़कों पर, तो हमें पता होता है कि भाई कितना टफ है ये जॉब और हमें क्या करना चाहिए रोड पर, किस तरह से हमें ट्रैफिक के बारे में समझना चाहिए। तो जो अब तक हम ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ते थे ना, रूल्स फॉलो नहीं करते थे, वो अपने आप ही हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूँ, तो चलिए फिर से बैंगलोर लौट पड़ते हैं, मैं तो कहाँ फरीदाबाद आ जाती हूँ। तो देखिए अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूँ ना, तो भाई ज्वाइन करने के लिए आपको एक ऐप है बीटीपी, इस ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, होम पेज पर ट्रैफिक कॉप ऑफ द डे ऑप्शन मिलेगा आपको, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अपनी डिटेल सबमिट करनी है, साथ ही सिलेक्शन पुलिस रजिस्ट्रेशन रिव्यू के बाद करेगी। सो देखिए ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत अगर आप इस प्रोसेस पर खरे उतर जाते हैं, तो आप होंगे ट्रैफिक कॉप ऑफ द डे, मतलब एक दिन चालान काटने का मौका मिलेगा। जितने चालान अभी कटे थे ना यार, उन चालानों को याद करके ना, जितने भी व्हीकल आपको ऐसे दिखते हैं जो कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे हैं, उनके चालान आप लोग काट देना। तो भाई देखिए यहाँ पर आपको चालान भी काटना है, ट्रैफिक भी संभालना है, और इस इनिशिएटिव से ना आपको ये भी पता चलेगा कि भाई कितनी मेहनत चाहिए ट्रैफिक कॉप बनने के लिए। ये जो हम सड़कों पर निकल जाते हैं ना, रूल्स फॉलो नहीं करते, फिर आपको पता चलेगा बेटा। तो इस इनिशिएटिव का पार्ट बनना हो तो जरूर बन जाइए। और हाँ, फरीदाबाद में भी अगर ऐसा आ गया ना इनिशिएटिव, तो मैं आपको स्टूडियो में ही मिलूंगी, मैं आपको फरीदाबाद की सड़कों पर मिलूंगी, बिकॉज मेरा तो ना ये ड्रीम जॉब है। तो भाई देखिए अभी फिलहाल आगे चलते हैं, अब वक्त हो गया इस गाने का, तो एंजॉय कीजिए ट्रैक।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: फिल्मी फ्लेवर वे बॉलीवुड नेवर स्टॉप्स
5: पिक्चर परफेक्ट म्यूजिक लोडेड।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: यार रिलेशनशिप में फाइट तो छोटी सी बात पे हो जाती है, लेकिन असली टैलेंट तो तब है जब कोई सॉरी बोल के मना भी ले, है कि नहीं? और लगता है इस फीलिंग को नेहा कक्कर और महेंद्र बुट्टर ने अपने पंजाबी ट्रैक सॉरी सॉन्ग में पकड़ लिया है। गाने की स्टोरी भी बड़ी क्यूट सी है। छोटी सी बात पे कपल की फाइट हो गई और मैडम को रियलाइज हुआ कि शायद उन्होंने थोड़ा ओवर रिएक्ट कर दिया, क्योंकि हम लड़कियों की आदत होती है छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाने की। और अब फोन पिक करवाने से लेकर वीडियो कॉल तक पूरा मनाने का मिशन स्टार्ट हो चुका है। नेहा अपने अपसेट पार्टनर को मनाने के लिए सॉरी बोल रही हैं, फ्लावर्स लेकर घर के बाहर आने तक का प्रॉमिस कर रही हैं। ऐसा भी करती हैं क्या लड़कियां? मुझे तो नहीं लगता। मतलब ईगो गई तेल लेने, रिलेशनशिप बचाना जरूरी है। और सोशल मीडिया पर भी इसका ट्रेंड काफी क्यूट सा चल रहा है। गर्ल्स भी और बॉयज भी इस ऑडियो पर रील्स बना रहे हैं, अपनी अपनी रिलेशनशिप वाली सिचुएशन को इसके साथ परफेक्टली कनेक्ट करने की कोशिश जारी है। और वैसे सच बताओ, आप फाइट के बाद पहले सॉरी बोलते हो या आपका पार्टनर? और मुझे पता है इसके मोस्ट ऑफ द आंसर यही होंगे कि हम क्यों सॉरी बोले, उसने गलती करी है तो वही सॉरी बोलेगा, वही। और उसने गलती नहीं करी है तो भी वही सॉरी बोलेगा, ऐसा मैं अक्सर सुनती हूँ। चलिए अब इस गाने की मैंने बात कर दी है तो सुनाऊं आपको यही सॉरी सॉन्ग। गाना एंजॉय कीजिए और गाने के बाद बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग बॉलीवुड अपडेट की। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

0: सुबह की बेल
1: आंखों में नींद,
0: बैग में बुक्स दिमाग में स्पीड, टीचर बोले
1: नोटबुक खोलो,
0: हम बोले मैम बस 2 मिनट्स प्लीज।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: यार फैशन का भी ना अपना एक अलग ही गेम है। कुछ लोग आउटफिट पहनते हैं और कुछ लोग आउटफिट को इवेंट बना देते हैं। और अभी हाल ही में करण जौहर ने अपने सोशल मीडिया पर द ट्रेटर्स सीजन 2 से अपना एक लुक शेयर किया है। और भाई सच बताऊं, पैलेस की रॉयल सेटिंग में उनका आउटफिट देखकर ना एक चीज तो मैं जान गई कि करण जौहर ने अपनी सिंपल एंट्री का कंसेप्ट कब का रिटायर कर दिया है। उन्होंने अपने पोस्ट में कैप्शन लिखा था कि ट्रेटर से बवाल मचाया और मैंने उन्हें मेरे कपड़ों से डराया। अब आप देख रहे हो, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, उन्होंने इस पोस्ट पे हरियाणवी बीट दी है। जी हाँ, हरियाणवी गाना लगाया था उन्होंने अपनी इस पोस्ट पे। अब आप देख रहे हो, पोस्ट एकदम क्लासी, गाना हरियाणवी और कैप्शन एकदम राइम करता हुआ, और मुझे ये कॉम्बिनेशन काफी एंटरटेनिंग लग रहा है। अगर आपने करण जौहर का ये लुक देखा है तो मुझे बताइएगा कि आउटफिट ने इम्प्रेस ज्यादा किया या हरियाणवी गाने ये जो लगा रहे हैं वो ज्यादा इम्प्रेसिव है। चलिए इसी के साथ वक्त हो गया है एक गाने का। गाने के बाद बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग फिल्मी अपडेट की। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।
2: सारेगामा कारवां, द परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर लव्ड वंस।

0: नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव कुमार सेतिया, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, यथार्थ हॉस्पिटल फरीदाबाद। पेन किलर और बिना डॉक्टर की सलाह के मेडिसिन लेने से किडनी पे क्या फर्क पड़ता है, उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पेन किलर और कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो किडनी पे नेगेटिव इफेक्ट डालती हैं, किडनी को खराब करती हैं, जिनको हम नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग्स बोलते हैं। तो बिना डॉक्टर की सलाह के ये दवाइयां ना लें, क्योंकि ये किडनी को डैमेज करती है और किडनी फेलियर प्रेसिपिटेट कर सकती है। थैंक यू
1: डॉक्टर कॉलिंग।

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: पंजाबी मूवीज की ना एक बात मुझे बहुत पसंद है, कहानी चाहे कितनी सीरियस हो बीच बीच में एंटरटेनमेंट का तड़का जरूर मिलता है। और अब एक ऐसी ही पंजाबी फिल्म आ रही है जिसका नाम है लुट मुबारक। स्टोरी है शुभ की, जो एक सिंपल और ऑनेस्ट लड़का है, लेकिन जब उसकी माँ पर एक करप्ट जूलर गलत इल्जाम लगा देता है और पूरी फैमिली की इज्जत पे बात आ जाती है ना, तो शुभ की पूरी लाइफ का डायरेक्शन ही चेंज हो जाता है। अपने परिवार की डिग्निटी वापस लाने के लिए वो क्राइम और ग्रीड की डेंजरस दुनिया में एंटर करता है और उसका साथ देती है डिटेक्टिव नियामत। और इस मूवी के लीड रोल में है हरीश वर्मा और कनिका मन। मतलब इस मूवी में फैमिली इमोशन भी है, ड्रामा भी है, क्राइम भी है और कॉमेडी का तड़का भी है। और ये फिल्म आपको थिएटर्स में देखने को मिलेगी 25 सितंबर को। अब देखना ये है कि शुभ अपनी फैमिली की इज्जत वापस लाता है या क्राइम की दुनिया उसे बदल देती है। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड टू 89.6 रेडियो महारानी।

कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप बाहर निकलकर रिव्यू नहीं करते बल्कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और अब बात करेंगे उस फिल्म की जिसने लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी का भी डोज दिया है। नाम है हनुमान अंश। ये फिल्म नीम करोली बाबा की लाइफ और टीचिंग से इंस्पायर्ड है और ऑडियंस से इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इमोशनल डेप्थ, फेथ और

0: फिल्मी फ्लेवर।
1: अच्छा जी, पता ही नहीं चला और 4 बजने वाले हैं। मतलब मूवीज की दुनिया में टाइम भी इंटरवल के बिना ही निकल जाता है। बॉलीवुड से हॉलीवुड और पंजाबी सिनेमा तक आज का फ्लेवर एकदम फुल था। मैं हूँ आरजे पलक और अब मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं ना, अभी जाऊंगी तभी तो कल फिर आऊंगी। कल फिर मिलूंगी नए मूवीज, नए सॉन्ग्स और नए फिल्मी अपडेट के साथ। तब तक ये गाना एंजॉय कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए 89.6 रेडियो महारानी के साथ।

की तदी मशीन बैड बॉय ऑन द ट्रैक बेबी कर इट बाउंस जैसे हिटरों के चेक सर पे है क्राउन बेबी नो कैप सिक मेरी ट्रिप मेरी सिक बो कैप बच्चे बच्चे घोराटे मेरा रैप बेबी माइंड होते ब्लो जब बीट करे

जब मैं छोटी थी ना, वैसे देखो हाइट से तो मैं अभी भी छोटी हूँ, लेकिन जब मैं छोटी थी ना, अपने बचपन की बात करूँ, तो मेरे दिमाग में ना बहुत अलग अलग चीजें आती थी। कभी मेरा पुलिस वाला बनने का मन करता था, कभी मेरा डॉक्टर बनने का मन करता था, और अक्सर जब मैं ट्रैफिक पुलिस वालों को देखती थी ना, तो यार मेरा बड़ा ही मन होता था वो बीच रोड पर खड़े होकर सिग्नल्स के बारे में बताना, अपने हाथ इधर से उधर करना और अपनी पूरी ट्रैफिक को मैनेज करना। लेकिन ना वो सपना मेरा सपना ही रह गया यार। फरीदाबाद में ना कभी वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली नहीं। लगता है फरीदाबाद वालों ने ना मेरी टैलेंट को नहीं समझा। लेकिन भाई बैंगलोर ने ना एक ऐसा इनिशिएटिव निकाला है जहाँ पर अगर आपका मन है ना ट्रैफिक पुलिस की ड्यूटी करने का, तो आप कर सकते हो। आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर ले सकते हो। तो वही बैंगलोर ट्रैफिक पुलिस ने कॉप ऑफ द डे इनिशिएटिव दोबारा से लॉन्च किया है, जहाँ सिटीजन्स एक दिन ट्रैफिक कॉप्स के साथ ऑन ग्राउंड ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस ले सकते हैं और साथ ही रोड्स को सेफ बनाने के लिए अपने सजेशंस भी दे सकते हैं। तो भाई अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूँ ना, आई लव दिस इनिशिएटिव बैंगलोर, और मैं फरीदाबाद से भी ये रिक्वेस्ट करूंगी यार, प्लीज इस तरह के इनिशिएटिव आप भी लेकर आइए ना। इससे पता क्या होता है, इससे ना जब हम एज सिटीजन निकलते हैं ना इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सड़कों पर, तो हमें पता होता है कि भाई कितना टफ है ये जॉब और हमें क्या करना चाहिए रोड पर, किस तरह से हमें ट्रैफिक के बारे में समझना चाहिए। तो जो अब तक हम ट्रैफिक सिग्नल्स तोड़ते थे ना, रूल्स फॉलो नहीं करते थे, वो अपने आप ही हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं। अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूँ, तो चलिए फिर से बैंगलोर लौट पड़ते हैं, मैं तो कहाँ फरीदाबाद आ जाती हूँ। तो देखिए अगर मैं इस इनिशिएटिव की बात करूँ ना, तो भाई ज्वाइन करने के लिए आपको एक ऐप है BTP, इस ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है। होम पेज पर ट्रैफिक कॉप ऑफ द डे ऑप्शन मिलेगा आपको, उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अपनी डिटेल सबमिट करनी है, साथ ही सिलेक्शन पुलिस रजिस्ट्रेशन रिव्यू के बाद करेगी। तो देखिए ये पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस के तहत अगर आप इस प्रोसेस पर खरे उतर जाते हैं, तो आप होंगे ट्रैफिक कॉप ऑफ द डे। मतलब एक दिन चालान काटने का मौका मिलेगा। जितने चालान अभी कटे थे ना यार, उन चालानों को याद करके ना, जितने भी व्हीकल आपको ऐसे दिखते हैं जो कुछ ना कुछ हरकतें कर रहे हैं, उनके चालान आप लोग काट देना। तो भाई देखिए यहाँ पर आपको चालान भी काटना है, ट्रैफिक भी संभालना, और इस इनिशिएटिव से ना आपको ये भी पता चलेगा कि भाई कितनी मेहनत चाहिए ट्रैफिक कॉप बनने के लिए। ये जो हम सड़कों पर निकल जाते हैं ना, रूल्स फॉलो नहीं करते, फिर आपको पता चलेगा बेटा। तो इस इनिशिएटिव का पार्ट बनना हो तो जरूर बन जाइए। और हाँ, फरीदाबाद में भी अगर ऐसा आ गया ना इनिशिएटिव, तो मैं आपको स्टूडियो में ही मिलूंगी, मैं आपको फरीदाबाद की सड़कों पर मिलूंगी, बिकॉज मेरा तो ना ये ड्रीम जॉब है। तो भाई देखिए अभी फिलहाल आगे चलते हैं, अब वक्त हो गया इस गाने का, तो एंजॉय कीजिए ट्रैक। बेस्ट ऑफ अंजलि।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

0: ना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: डाल दे, जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: बीजे सरकार।
1: सानू थैंक यू, मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो।
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही बढ़ता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: से तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: परिवार सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, EMI पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: अरे सुनो तो, कहाँ चली?

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: दिक्कत हो कभी भी तो आप बोलना, आपको बताइएगा।
1: आप नहीं रुला गया तो?
2: क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तो प्यार।

क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आप लोग गाड़ी लेके निकले हो और एकदम से आपने देखा कि आपके सामने सड़क के बीचों बीच कौन खड़ा है? एक गिलहरी खड़ी है और वो कंफ्यूज देखे, राइट जाऊं या लेफ्ट जाऊं? रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। और गिलहरी की कंफ्यूजन के साथ एक कंफ्यूजन हमारे मन में भी आती है कि हम लोग भी स्पीड स्लो करें या फिर स्पीड वैसे की वैसे ही रहने दें जैसी गाड़ी चल रही है, क्योंकि ये गिलहरी की वजह से बहुत सारी बाइकें स्लिप होते हुए मैंने देखी है और एक दो बार तो स्कूटी से हम भी गिर चुके हैं। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हैं आप सब? पता है मुझे आज ऐसे लग रहा था जैसे आज फ्राइडे है, पता नहीं क्यों मेरे को हर मंडे आते ही ट्यूसडे आते ही ऐसा मन करने लग जाता है जैसे फ्राइडे आ गया होगा, या फिर मन करता है कि जल्दी से जल्दी वीकेंड आ जाए ताकि हम लोग फिर से रेस्ट मोड पे जा सके। आई डोंट नो ये रेस्टिंग मोड बार बार कहाँ से आ जाता है। और एक चीज़ और बोलूँगा मैं आप सभी से कि ना आप लोग कभी भी अपने बारे में गलत मत बोलना, गलत एज इन मतलब आप लोग कभी भी अपने बारे में नेगेटिव मत बोलना, क्योंकि पता है आपको ये यूनिवर्स बहुत कुछ सुनता है, बहुत सारी बातें सुनता है हमारी। खैर इसके अलावा अभी आप सभी को बता दूं, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। चार घंटों के लिए मैं आप सभी के साथ आ चुका हूं मंडे टू फ्राइडे शाम 5 से 9 आता हूं। जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी को बता दूं पूरे फरीदाबाद का हाल यहीं आपको मिल जाएगा, उसके अलावा गाने भी एक से बढ़कर एक मिलेंगे। और फरीदाबाद के बारे में अगर आप लोगों को भी मुझसे कोई भी बातें करनी है, जैसे आप लोग किसी चीज़ से अगर परेशान है या फिर आपने कुछ फरीदाबाद में देखा है जो आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो शेयर कर सकते हैं एक नंबर पर। नंबर है जी 9654, बस ये चार डिजिट याद रखिए 9654। 896-896 तो हमारी फ्रिक्वेंसी है, तो 9654-896-896 ये हमारा नंबर है, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी पर मैं चला रहा हूँ आप लोगों के लिए कुछ गाने, और उन्हीं में से सबसे पहला गाना ये प्यारा सा आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे क्लास तो पीती जा।

0: ये भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

जी हाँ, रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। एक बात बोल रहा था मैं थोड़ी देर पहले, वो ये थी कि क्या आप लोग भी उनमें से हैं जो अपने बारे में ऐसे ऐसे बोलते हैं कि यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। बहुत सारी और भी बातें बोलते होंगे आप लोग, और हो सकता है कि आप लोग इतने पॉजिटिव होंगे कि आप लोग बोलते होंगे दैट्स माय डे, दिस इज माय डे, आज मैं ये कर दूंगा, आज मैं वो कर दूंगा। तो आप लोग हैं पेसिमिस्टिक। हाँ, पेसिमिस्टिक कहते हैं, सॉरी माफ कीजिए, आप है ऑप्टिमिस्टिक। अच्छा चलिए मैं आपको बोलता हूँ, देखो एक होते हैं ऑप्टिमिस्टिक, होते हैं पेसिमिस्टिक, एक नेगेटिव सोचने वाले और एक पॉजिटिव सोचने वाले। तो आप लोग इनमें से कौन से हैं वो आप खुद डिसाइड कीजिए। बट एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो भी सोचते हैं ना, आप वो बन जाते हैं। आप लोग अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलिए हमेशा। देखिए एक और चीज़ मैं बोलूँगा, आप लोग ना एक एफर्मेशन होते हैं, अब मैं उसको हिंदी में अनुवाद उसका नहीं कर सकता बट मैं एक बात जरूर बोलूंगा कि आप लोग ना अपने बारे में अच्छा अच्छा बोलिए, बोलिए दिस इज माय डे, सुबह सुबह उठते ही बोलिए हाँ आज का दिन मेरा ही दिन है और आज मैं बहुत कुछ कर दूंगा। और जिस भी चीज पर आप काम कर रहे हैं, और मान लेते हैं आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जो आपको अपने बॉस को दिखाना है, और आपके मन में डाउट है कि ये होगा भी या नहीं होगा, या फिर ये सिलेक्ट होगा या नहीं होगा, तो बस अपने मन में उसे बनाते वक्त ये सोचिए कि हाँ यही सेलेक्ट होगा, सिर्फ यही सेलेक्ट होगा, इसके अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं होगा बॉस के पास। तो देखिएगा कि वो चीज़ सेलेक्ट ज़रूर हो जाएगी। मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं इसको कुछ लोग, और पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन यू नो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। जिनको भी आप पूछते हैं, जिनको भी आप भजते हैं, उनका नाम लीजिए और काम कर डालिए। और मैं बस यही बोलूँगा, कर्म करते रहिए, फल की चिंता बिल्कुल भी मत करिए, जल्द ही आपको फल भी मिल जाएगा। बस मैं यही कहना चाहता था कि नेगेटिव मत सोचना। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आज के प्रवचन होते हैं यहीं पर समाप्त। अभी चला गया हूँ आप लोगों के लिए गाना रेडियो महारानी 89.6 पर।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ बी अवेयर।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

जब से निगम अधिकारियों की हड़ताल चालू है तब से एक चीज तो पूरे फरीदाबाद में देखने को मिल रही है और वो है भर भर के कचरा, हर गली में कचरा, हर कोने में कचरा। रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी 9.6 पर। कैसे हैं आप सब? और कचरे की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जग जाहिर है कि हरियाणा में निगम कर्मचारी हड़ताल पर थे और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी लोगों को। हो रही थी क्या? हो रही है। देखो, फरीदाबाद में जहाँ पर भी नज़रें दौड़ाओ वहाँ पर कचरा है। इवन आज बारिश हो गई तो और ज़्यादा स्मेल आने लग गई है। और अगर मैं एक दो रास्ते की बात करूँ, जैसे कि सेक्टर तो नहीं बोलूँगा, NID5 बोलूँगा। NID5 में नीलम बाटा रोड और NID5 में ही नीलम से जब गांधी कॉलोनी की तरफ जाते हैं तब वो वाली रोड, इन दोनों जगह पर आपको कचरा सड़क के किनारे मिल जाएगा। और जैसे ही बारिश होती है फिर उसके बाद वाह क्या कहने हैं, मतलब बारिश के साथ साथ ये कीचड़ बन जाता है, फिर और भी ज़्यादा गंदगी और बदबू बहुत तेज़ आती है। तो मैं अभी किसी के ऊपर दोष नहीं डालूंगा, बट हाँ ये ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मैंने अपने सामने देखा है लोग बोरे भर भर के कचरा

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे ग्लास तो पीती जा। सुन

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
2: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे क्लास तो पीती जा।

5253वां जन्मदिन किसका? हमारे भगवान श्री कृष्ण का। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। कैसे हैं आप सब? पता है आप लोगों को एक पूजा का समय होता है और 4 तारीख को वो पूजा का समय है, रात के 11:57 से लेकर अगले दिन यानी कि 5 सितंबर के 12:43 तक। तो जन्माष्टमी साल 2026 की फ्राइडे को पड़ रही है इस बार और 4 सितंबर है। हर बार अगस्त में आती थी बट इस बार पहली बार ऐसा हुआ है, मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ है 4 सितंबर को आई है जब तक मतलब मेरे जीवन काल में। और हमेशा ये सेलिब्रेट किया जाता है, मिडनाइट आरती होती है, फिर डिवोशनल गाने आप सभी को पता है हर जगह भजन चल रहे होते हैं और झूले बनाए जाते हैं हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे आराध्य के लिए और लड्डू गोपाल जी कहते हैं उन्हें, और हर जगह माखन मिश्री का भोग चढ़ता है, माखन मिश्री मिलती भी है प्रसाद के तौर पर। और मुझे ना उससे भी ज़्यादा एक और चीज़ अच्छी लगती है कि मंदिरों के बाहर जो सजावट होती है, दैट्स अमेजिंग। 5 नंबर का बांके बिहारी मंदिर हो या फिर सेक्टर 7 का हमारा जन कल्याण मंदिर, वहाँ पर भी और सारी जगहों पर झांकियाँ बनाई जाती है और बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं इस दिन आप लोगों को भी अच्छा लगता ही होगा। और जन्माष्टमी के दिन बारिश ना आए ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस बार भी प्रेडिक्शन है बारिश की। खैर बारिश के बारे में तो बाद में बातें होती रहेंगी, बट मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि क्या आप लोगों की 4 तारीख की छुट्टी है? अगर है तो फिर तो लंबे वाला वीकेंड आप लोगों को फिर से मिल गया है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, इक्का बादशाह डीनो जेम्स की आवाज़ में आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना।

0: सुबह की बेल
1: आंखों में नींद,
0: बैग में बुक्स दिमाग में स्पीड, टीचर बोले
1: नोटबुक खोलो,
0: हम बोले मैम।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट।

0: अभी पॉप कल्चर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला करने का तो मतलब करने का। रेडियो महारानी 89.6 पर स्वागत करता हूँ। एक और वीडियो आ गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सेल्फी वीडियो है। कल की वीडियो देश हित में ये वीडियो है सबके लिए।
2: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
1: यार जी, गौरव इन द हाउस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। एंड जो मैं अभी बात बोल रहा हूँ वो यही है कि एक और सेल्फी वीडियो आई है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया कि देश हित के लिए आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। वैसे उन्होंने बोला क्या क्या नहीं करना है वो बता दिया उन्होंने। सबसे पहली चीज़ तो कि ज़रूरत ना होने पर सोना ना खरीदें। अब जिसकी शादी हो रही है उनकी तो ज़रूरत है ना, तो वो लोग तो खरीदेंगे ही सोना, बट हाँ इन्वेस्टमेंट के तौर पर सोना मत खरीदेगा ये बोला गया है। और इसके अलावा जीडीपी, आप सभी को पता है जीडीपी ग्रोथ रेट 7.8% में पहुँच चुकी है, तो इसका जिक्र करते हुए उन्होंने बोला है स्वदेशी आत्मनिर्भरता अपनाइए। देखो स्वदेशी अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम। हम लोगों को अपने इंडियन ब्रांड्स को बढ़ावा देना पड़ेगा। इंडियन ब्रांड्स मींस वोकल फॉर लोकल। लोकल ब्रांड्स, कभी भी ये लोकल वाला जो वर्ड होता है ना वो हमारे आसपास वाली चीजों के लिए यूज होता है, ऐसा नहीं होता। लोकल है, लोकल मींस खराब नहीं होता हर बार, लोकल अच्छा भी होता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह भी बोला कि विदेश यात्राओं से बचें और विदेश में शादी ना करें, उससे ज़्यादा फायदा होगा। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला, देखो मेहनत करते रहो और एक दिन हमारा देश एक विकसित भारत ज़रूर बनेगा और इसका सपना मेरे ख्याल से हर इंसान की आंखों में होना चाहिए। ये भी अपनी अपनी थिंकिंग है। और इसी के साथ साथ मैं एक अपनी तरफ से पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, वो ये कि हमेशा एक ना ब्रांड बनाने की सोचिए। आप लोग एक स्टार्टअप बनाने की सोचिए। अगर आप स्टार्टअप बनाएंगे, अगर वो मान लेते हैं ग्लोबल तक पहुंच गया, मतलब वो इंडिया से निकल के बाहर विदेशों तक पहुंच गया, तो सोचिए कितना फायदा होगा इंडिया को। जरा इसके बारे में भी सोचिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए खूब सारे गाने बजेंगे। उन्हीं में से सबसे पहले ये गाना फरीदाबाद के लड़के की आवाज़ में सुनिए। इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ गौरव आपके।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो अर्ज किया है?
0: अर्ज
1: अभी करते हैं, सुनो।
0: इंस्टार्ट।
1: स्पैम कॉल करके आजकल दिमाग खा जाते हैं।
0: वाह वाह वाह वाह।
1: कोई फर्जी रिश्तेदार तो कोई फर्जी ऑफिसर बनकर हमें डांट देते हैं।
0: तुम अभी इसी लायक।
1: चुप रहो, आगे सुनो। मैं कहता हूँ कि बैंक की डिटेल्स, ओटीपी सब दे दूंगा।
2: अच्छा,
1: बस मेरी शायरी सुन लो।
0: फिर
1: ये सुनते ही पहली फुर्सत में वो फोन काट देते हैं।
0: अरे वाह, तुम्हारी शायरी का कुछ तो फायदा हुआ। अब तुम बोलते रहो, हम चलते हैं।
1: अरे,
0: Ladies and gentlemen, you are not ready.

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

आपको पता है अगर आप लोग अपने सपने में अपने आप को ड्रिंक करते हुए देखते हैं तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है। मैं तो अजीब ही चीज सोचता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे मन में आया और मैंने सोचा चलो आज इस चीज को ना क्यों ना डीकोड करें। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है रेडियो महारानी 89.6 पर। देखो हर सपने का एक मतलब होता है और वक्त हो चुका है सपनों को डीकोड करने का। देखो बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस होती है, अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं सपने में तो इसका क्या मतलब है। खुद को अगर ड्रिंक करते हुए देख रहे हो तो इसका मतलब है आने वाले समय में आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, अच्छी किस्मत, या फिर आपके बिजनेस में फायदा होने के कुछ सिम्टम्स है, संकेत है ये कह सकते हैं। और अगर आप विस्की की दुकान पर खड़े, लिकर शॉप पर खड़े हैं तो इसको थोड़ा सा अशुभ माना जाता है। ये दर्शाता है कि आने वाले टाइम में आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर किसी दोस्त को ड्रिंक करते हुए देख रहे हो आप तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में आपको अपने दोस्त या किसी खास व्यक्ति से मदद मिलने वाली है। अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, काफ़ी बार ऐसा होता है हम सपने में ना प्रवचन दे रहे होते हैं, किसी और को समझाते हैं कि भाई नहीं नहीं ऐसी चीज़ें मत कर, गलत चीज़ें हैं ये, पार्टी करना अच्छी बात है बट कभी कभी करना सही है, रोज़ रोज़ नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप ड्रिंक्स को फेंक रहे हैं, आप पार्टी में गए हैं और आप ड्रिंक्स को फेंक रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ और बुराइयाँ जल्द ही खत्म होने वाली, आप खुद से उनको खत्म कर दोगे। अच्छा अब इस चीज़ में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम लोग सपने में देखते हैं हम अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहे हैं या फिर किसके साथ कर रहे हैं, फैमिली के किसी कज़न के साथ कर रहे हैं या फिर किसके साथ कर रहे हैं, इसमें बहुत मतलब डिफरेंट चीज़ें होती है। तो अगर सपने का सही मतलब निकाले ना तो दोस्त के साथ अगर आप बैठे हैं तो इसका मतलब है मुसीबत में आपको मदद मिलने वाली है और आपका आपसी रिश्ता मजबूत होने वाला है। और एक और चीज़ है, काफ़ी बार ऐसा होता है ना हमारा बर्थडे आने वाला होता है तो हम लोगों के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है, हम लोगों के सपने में भी यही चीज़ यही सारी चीज़ें आ रही होती है कि हम लोग कहाँ पार्टी करेंगे। तो अगर खुशी का माहौल देख रहे हो आप तो समझ लो आपके दोस्तों के सर्कल में कोई सेलिब्रेशन या खुशखबरी आने वाली है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, ऐसे ही और भी सपनों को डीकोड करते रहेंगे, मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना।

अस्थमा के मरीजों के लिए धूल और धुआं जीने का हक छीन सकता है। आइए मिलकर एक कदम उठाएं, एक यूआई का लेवल कम करें, गाड़ी को पूल करें और पेड़ लगाएं। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कदर करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या आप लोगों को पता है टीम इंडिया में एक ऐसा स्विंग बॉलर भी हुआ करता था जो बहुत ही ज्यादा किफायती बॉलर तो नहीं बोलूंगा बट हाँ विकेट के मामले में बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव कह लो या फिर कह लोगे स्विंग का मास्टर था और उनके एक एक्शन पर पूरा वर्ल्ड कप का लोगो भी तैयार किया गया था। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, रेडियो को गौरव स्वागत करता है आप सभी का। रेडियो महारानी 89.6 पर वक्त हो चुका है क्रिकेट की बातें करने का, स्पोर्ट्स की बातें करने का। तो आज क्रिकेट के बारे में मैं बात करने की सोच रहा था क्योंकि मैंने ना एक वीडियो देखी और एक ऐसे बॉलर की वीडियो देखी जो इंडिया के थे, राइट आर्म मीडियम पे स्विंग बॉलर, और उनका एक अलग ही मतलब एक अलग ही बॉलिंग एक्शन था और वो बॉल को दोनों तरफ घुमा सकते थे, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों तरफ। नाम था उनका देवाशीष मोहंती और उन्होंने दो टेस्ट मैच खेले, 45 ओडीआई खेले इंडिया के लिए 1997 से लेकर 2000 तक। 57 ओडीआई में उन्होंने टोटल बहुत सारी विकेट ली और एवरेज था उनका 30 के अराउंड। अब इसमें बात आती है 1999 क्रिकेट वर्ल्ड कप की। अब उनका जो बॉलिंग एक्शन था ना उसको एज अ लोगो बना दिया गया और इसी के साथ साथ हुआ ये कि उन्होंने टेस्ट मैच में सिर्फ दो ही मैच खेले थे बट 4 विकेट ली थी, ओडीआई में 45 मैच खेले थे और 57 विकेट ली थी और यहीं पर उनको टीम से हटा दिया गया। अब लोगों का ये कहना था कि पॉलिटिक्स ज़्यादा हो रही है, ये ज़्यादा हो रहा है, वो ज़्यादा हो रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं था। पॉलिटिक्स तो चलो मैं मानता हूँ हर स्पोर्ट में होती है बट यहाँ पर कंडीशंस की वजह से, टीममेट्स के बीच में कॉम्पिटिशन भी था, टीम की बदलती ज़रूरतों की वजह से भी उनको टीम से बाहर भी किया गया था। क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता था वो बॉलिंग तो बहुत अच्छी करते थे, विकेट तो ले जाते थे बट रन्स भी बहुत ज़्यादा खा जाते थे, ऐसा लोगों का कहना था। और फिर उनके सामने अजीत अगरकर भी आ गए थे और भी काफ़ी सारे नए तेज़ गेंदबाज आने लग गए थे तो इस वजह से उनको बिठा दिया गया। नए तेज़ गेंदबाज कौन आए थे बताता हूँ आपको, अजीत अगरकर जी, आशीष नेहरा एंड जहीर खान। तो ये जब बॉलर्स आए तो फिर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसकी वजह से ही 2001 के बाद उनको टीम में नहीं लिया गया, मतलब फिट नहीं हो पाए वो टीम में, बस नथिंग मोर देन दैट। तो क्या आप लोग देवाशीष मोहंती के बारे में जानते थे? अगर हाँ तो आप लोग भी मुझे बता सकते थे बट अगर आपके पास किसी और स्पोर्ट्स स्टार की स्टोरी पड़ी है तो आप मुझसे शेयर जरूर कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9654896898।

0: संसार का।
1: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
2: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
3: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है, अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

कल ही रात को मेरी एक फ्रेंड मूवी देखने गई हनुमान अंश, और उसने जो बताया वो अमेजिंग था। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, और मैं आप सभी से बात करना चाहता हूँ मूवी हनुमान अंश के बारे में। उनके एक्टर सुधीर, जिसमें फिल्म में जिन्होंने सुधीर का किरदार निभाया है, वो आए थे हमारे स्टूडियो में, और फिर उसके बाद उन्होंने फिल्म के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बताई। उनका आप पूरा वीडियो देख सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे, और उसके साथ साथ आप उनकी वॉइस भी सुन सकते हैं रेडियो पर, वो संडे सैटरडे में चल जाएगी आपके लिए। खैर, मैं आप सभी को बता देता हूँ, 26वें दिन 63 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है। नीम करौली बाबा के ऊपर ये मूवी आधारित थी, 7 अगस्त को रिलीज हुई थी, और टोटल बजट इनका 2 करोड़ था। तो आपको बता दूं, मूवी में ना जितने भी एक्टर्स थे उन्होंने ट्रैवल भी ट्रेन से किया था, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे प्लेन पे ट्रैवल करने के। और फिर उसके साथ साथ मूवी में और भी बहुत सारी चीज़ें हुई, बट जैसे कि ओपनिंग डे था, ओपनिंग डे में सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए कमा पाए, और फर्स्ट फोर्टनाइट अगर हम लोग बोलें तो सिर्फ और सिर्फ 1.48 करोड़ मान लेते हैं, 1.48 करोड़ रुपए कमाए थे पहले 2 हफ्ते में, और उसकी वजह से फिल्म सारे थिएटर्स से उतर गई थी। बट अचानक से हुआ क्या, एकदम से लोगों का सैलाब आना शुरू हो गया। लोगों को पता चलने लगा कि हनुमान अंश नाम की कोई मूवी बनी है, लोगों ने देखना शुरू किया, और फिर उसके बाद आज की डेट में 63 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। और हो सकता है कि कल जो डेटा आएगा, वो आज का पूरा मिला के डेटा आएगा, तो इसमें नंबर और भी ज़्यादा इंक्रीज होने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, देखो 2 करोड़ के बजट में 63 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली एक मूवी ने, और ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, इमोशन है लोगों के। तो आप लोग भी देखने ज़रूर जाइएगा, मैं भी देखने जरूर जाऊंगा, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए एक प्यारा सा गाना चला देता हूँ। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर, मैं हूँ गौरव आप सभी के साथ।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप सुनो तो।
1: इरशाद,
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?

0: चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप बाहर निकलकर रिव्यू नहीं करते बल्कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और अब बात करेंगे उस फिल्म की जिसने लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी का भी डोज दिया है। नाम है हनुमान अंश। ये फिल्म नीम करोली बाबा की लाइफ और टीचिंग से इंस्पायर्ड है और ऑडियंस से इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इमोशनल डेप्थ, फेथ और सोलफुल म्यूजिक इसकी खासियत बताए जा रहे हैं और इसका म्यूजिक भी लोगों को कनेक्ट कर रहा है। खासकर डिवोशनल ट्रैक पार्वती को लेकर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

क्या AI हार्मफुल है हम सबके लिए? क्या ये हम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है? क्या आने वाले टाइम में AI खुद को इतना ज़्यादा सशक्त बना लेगा कि वो इंसानों से आगे बढ़ जाएगा? ये सारे सवाल सबके मन में घूमते हैं और सब लोग ये सोचते हैं कि कल को रोबोट ओवरटेक कर लेंगे और रोबोट ही कल ही होने वाला है। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आरजे गौरव इन द हाउस। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। और जो मैं बात बोल रहा हूँ वो यही है कि देखो AI थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है, देखो, बट मैं बता दूं आपको, AI खुद में कोई जीवित विलन तो है नहीं, दुश्मन भी नहीं है, उसका इस्तेमाल गलत हो सकता है। लोग इसको बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका तेज़ी से ऑटोनोमस होना इंसानों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। खुद से ही अपनी लैंग्वेज बना रहा है, खुद से ही चीज़ें बनाते जा रहा है। अब देखो इंसान इसका कैसे गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, साइबर क्राइम और हैकिंग के लिए लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ कुछ लोग डीप फेक कर रहे हैं और कुछ लोग वॉइस क्लोनिंग कर रहे हैं। डीप फेक मीन्स आपका चेहरा यूज करके एक पूरी वीडियो बना दी जाएगी और फिर उसके बाद वो वीडियो दिखाई जाएगी किसी ना किसी को। और इसी के साथ साथ बता दो आपको, वॉइस क्लोनिंग में आप लोगों के साथ कोई भी स्कैम हो सकता है। हो सकता है आपके फैमिली वालों के किसी की भी वॉइस को इस्तेमाल किया जाए और आपको कॉल करके बोला जाए कि देखो ऐसा ऐसा है, मैं यहाँ पर फंस गया हूँ, मेरे पास ये नंबर है, ये किसी और का नंबर है, मेरा फ़ोन भी चोरी हो गया है, आप जल्दी से पैसे ट्रांसफ़र कर दो, अर्जेंसी दिखाई जाएगी, तो उसमें आपको नहीं फंसना है। और इसी के साथ साथ लोग कह रहे हैं जॉब जा रही, तो जॉब भी जा रही है बिल्कुल, ये भी एक तरह से नुकसान है AI का। और डेटा प्राइवेसी भी खतरे में, क्योंकि देखो हम लोग ChatGPT यूज़ करते हैं या फिर कोई भी ऐप्स यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें जाने अनजाने में पर्सनल जानकारी दे देते हैं, तो ये गलत है। और पता है आपको, साइंटिस्ट का ये भी कहना है कि आने वाले टाइम में ह्यूमन कंट्रोल भी खत्म हो सकता है AI बेस से। और अगर ऐसा हो गया तो AI खुद को गॉड फादर मानने लग जाएगा और फिर उसके बाद इंसानों की बातें सुनना बंद कर देगा। वैसे इसके बहुत कम चांसेस हैं, बट स्टिल चांसेस तो है ना, तो हम लोग उसको कंसिडर तो करेंगे ही करेंगे। तो ये सब थे कुछ नुकसान AI के, बट AI आपकी जॉब नहीं खाने वाला। AI के लिए खुद को ट्रेन कीजिए और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए। आप सभी के लिए रेडियो महारानी।

0: निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: क्या आपके घर के आसपास बारिश हो रही है? नहीं हो रही? आज सुबह हुई थी? नहीं हुई थी क्या? हुई तो थी, पूरे फरीदाबाद में हुई है।
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव,
0: आरजे गौरव इन द हाउस। कैसे हैं आप सब? बहुत देर से आप सभी के साथ बैठा पड़ा हूँ, और अभी देखो टाइम क्या हो गया, 5 से 6 बज गए, 6 से 7 बज गए, 7 से 7:30 होने वाले, 7:21 मेरी स्टूडियो क्लॉक में। एंड इसी के साथ साथ मौसम का अगर हाल की बात करें तो अभी आपको ठंडक मिलने वाली है आज रात को भी, और कल पूरे दिन भी हो सकता है आपको थोड़ी बहुत उमस देखने को मिले। हाँ, चांसेस है ह्यूमिडिटी के कल, क्योंकि कल पहले तो बारिश दिखा रहा था 90%, बट अब 20% ही चांसेस है कल बारिश के। और वहीं पर अगर बात करें फ्राइडे की यानी कि जन्माष्टमी की, तो जन्माष्टमी वाले दिन बारिश ज़रूर होगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई प्लान है जन्माष्टमी के, तो प्लीज़ उसको पोस्टपोन कर लीजिए, या फिर हो सकता है तो उसको कैंसिल कर लीजिए, या फिर अगर आप लोगों की प्लान है वृंदावन जाने के, तब तो फिर आप जाइए, बिल्कुल जाइए, घूमने जाइए, आप लोगों की छुट्टी ज़रूर होगी। बट मेरी छुट्टी नहीं है उस दिन। खैर, छुट्टी से वापस आते हैं मुद्दे पर। मुद्दा यही है कि बारिश हुई है, आज सुबह भी हुई और अभी भी कई जगहों पर छींटे पड़े थे शाम के वक्त, अभी 6 बजे तक तो पड़े ही थे, हल्के फुल्के ड्रिजलिंग सी हो रही थी। तो इसी के बीच में आप सभी से बस ये कहना चाहूँगा कि कहीं पर भी आपको पानी भरा हुआ दिखता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वहाँ गड्ढा हो, और ऐसा ज़रूरी भी नहीं कि वहाँ प्लेन रोड हो, तो प्लीज़ गाड़ी आराम से चलाइएगा। और इसी के साथ साथ जल भराव एक बहुत बड़ी परेशानी जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम लगता है। तो अगर आप लोग कहीं पर भी ट्रैफिक में फंसे हैं तो हमारा एक नंबर है 9654896896, इस पर कॉल करके मुझे बता दीजिएगा कि आप लोग ट्रैफिक में फंसे हैं। नहीं नहीं, मैं ये कर दूंगा कि मैं बाकी लोगों को बता दूंगा कि इस रास्ते से नहीं जाना है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, डीनो जेम्स की आवाज में आप सभी के लिए ये गाना।

आता नहीं है मुझको, पर दिल के राज कहना है आज बस ये लगता है यू शुड नो। है मनु दास का पे आवाज, फिर भी मैं जोड़ के हाथ, जो भी है पास है उस पे नाज, बस कहना है थैंक्स लॉट।

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे होश दिल चैन वैन सब उसी के पास है।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: कभी आप लोग ऑफिस पॉलिटिक्स में फंसे हैं? और मुझे एक बात समझ नहीं आती, सब लोग कहते हैं ऑफिस में पॉलिटिक्स है, ऑफिस में पॉलिटिक्स है। अगर सब लोग ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान है तो फिर असलियत में पॉलिटिक्स कर कौन रहा है ऑफिस में?
1: रेडियो का गौरव, आरजे गौरव।
0: नहीं, आरजे गौरव रेडियो में पॉलिटिक्स नहीं कर रहा है, ना ही ऑफिस में पॉलिटिक्स कर रहा है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। वक्त हो चुका है क्या हाल है। हम लोग रोज कोई ना कोई टॉपिक लेकर आते हैं और आज का टॉपिक है ऑफिस पॉलिटिक्स। और किसी से भी पूछो कि क्या हाल है, वो बोलेगा भाई ऑफिस में काम कम हो रहा है और बातों की बोर्ड मीटिंग ज़्यादा चल रही है। सब कलीग्स हैं, कहने को सब कलीग्स हैं, बस किसी पे ट्रस्ट करना एचआर पॉलिसी के अगेंस्ट रखता है। ये तो होता ही है, किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया जाता भले कितने ही क्लोज कलीग क्यों ना हो। किसी से पूछो क्या हाल है, वो बोलेगा ऑफिस में पॉलिटिक्स इतनी है कि लोकसभा भी ओरिएंटेशन लेने आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप लोग ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहे हो ना, तो लोग आपका काम नहीं, लोग आपका सिर्फ क्रेडिट यूज़ करेंगे। हाँ बिल्कुल, आपके काम का क्रेडिट यूज़ कर लेंगे, बोलेंगे हमने किया है जी। किसी से पूछो क्या हाल है जो इंसान ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान है, वो बोलेगा बॉस के सामने सब एक टीम है, बॉस के पीछे सबकी अलग अलग टीम है। ये तो सच्चाई है। और इसी के साथ साथ जब भी किसी इंसान से पूछो कि क्या हाल है, वो बोलेगा ऑफिस में प्रमोशन परफॉर्मेंस से नहीं होता, किसी के साथ लंच करते हो उससे डिसाइड हो जाता सब कुछ, है ना। और इसी के साथ साथ मीटिंग में सब ग्रेट आइडिया बोलते हैं, मीटिंग के बाद वही आइडिया बकवास हो जाता है। सब कहते हैं क्या बकवास आइडिया दिया यार इस इंसान ने। और बॉस का चमचा इतना एक्टिव है कि अटेंडेंस मशीन भी उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। अटेंडेंस मशीन नहीं बोलती, एक्सेप्टेड, वो बोलती है गुड मॉर्निंग। खैर, ऑफिस का पॉलिटिक्स का ये हाल है कि उससे किसी से पूछो क्या हाल है, वो यही बोलेगा ऑफिस में असली वर्कलोड एक्सेल शीट का नहीं, लोगों के इंटेंशन समझने का है। और ये सच्चाई है। तो अगर आप लोग भी ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान है तो छोड़ दीजिए। और क्या बोल सकता हूँ मैं। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, आप सभी के लिए गाना चला रहा हूँ। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर। बस मैं यूं गया और यूं आया।
2: कान टूटे बंदे रवे मित्रा की खेल।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता हूँ।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मिनी बस आ गई।
1: सुनो सुनो

0: क्या आपको मालूम है आजकल ना बॉलीवुड के सिंगर्स और हॉलीवुड के सिंगर्स या फिर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के सिंगर और विदेशी सिंगर मिलकर बहुत अच्छे अच्छे गाने बना रहे हैं।
1: जब शाम को चाहिए एंटरटेनमेंट का ओवरडोज तो पर आ जाता है
2: रेडियो का गौरव
1: आरजे गौरव।
0: स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। और मैं जो बोल रहा था ना, विदेशी सिंगर और इंडियन सिंगर्स मिक्स करके कुछ ना कुछ बना रहे हैं, तो एड शीरन और करण औजला ने कोलैब करके एक बहुत ही अमेजिंग गाना बनाया था। म्यूजिक सीन को मतलब बिल्कुल क्या कर दिया, म्यूजिक सीन पर छा गए थे कह सकते हैं। और एड शीरन का प्ले गाना सुना है आप लोगों ने, एक एल्बम है पूरी की पूरी, तो उसमें वो भारत दौरे पर आए थे और उसमें उन्होंने बहुत सारे गाने बनाए, प्ले द रिमिक्सेस, और उसमें उन्होंने अरिजीत सिंह के साथ गाना गाया, फिर उसके बाद दिलजीत दोसांझ के साथ गाना गाया और साथ ही साथ गाया करण औजला के साथ, और करण औजला के साथ था वो गाना सिमेट्री, क्रॉस कल्चरल पॉप एंड पंजाबी फ्यूजन ट्रैक, जिसमें इमोशनल अलाइनमेंट है, कनेक्शन है, वेस्टर्न और साउथ एशियन म्यूजिकल ट्रेडिशन का एक मिक्स मैशअप कह सकते हो आप लोग। और इसमें यही है कि दोनों की एक ही चीज़ मिक्स हो रही है। एंड आपको नहीं लगता कि इसमें टाइम वाइम सब कुछ पीछे छोड़ दिया कि कीप मी अवेक टिल डार्कनेस टर्न्स इन डे, बहुत सारी चीज़ें थी, मतलब मैं भी अभी पढ़ के बता रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें कल्चरल कोलैबोरेशन है, इंस्ट्रूमेंट्स का भी कोलैबोरेशन है, तबला भी है, ढोलक भी है और घटम भी है, बांसुरी का ताल भी है और इसी के साथ साथ गिटार की ताल भी है, तो कहीं ना कहीं ये गाना अमेजिंग बन के आएगा। तो ऐसा ना हो कि मैं गाना ना चलाऊँ, हो ही नहीं सकता। सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर, एड शीरन की आवाज में सिमेट्री, उनके साथ है करण औजला।

जब से निगम अधिकारियों की हड़ताल चालू है तब से एक चीज तो पूरे फरीदाबाद में देखने को मिल रही है और वो है भर भर के कचरा, हर गली में कचरा, हर कोने में कचरा। रेडियो का गौरव स्वागत करता है आप सभी का रेडियो महारानी 9.6 पर। कैसे हैं आप सब? और कचरे की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जग जाहिर है कि हरियाणा में निगम कर्मचारी हड़ताल पर थे और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रही थी लोगों को। हो रही थी क्या? हो रही है। देखो, फरीदाबाद में जहाँ पर भी नज़रें दौड़ाओ वहाँ पर कचरा है। इवन आज बारिश हो गई तो और ज़्यादा स्मेल आने लग गई है। और अगर मैं एक दो रास्ते की बात करूँ, जैसे कि सेक्टर तो नहीं बोलूँगा, NID 5 में नीलम बाटा रोड, और NID 5 में ही नीलम से जब गांधी कॉलोनी की तरफ जाते हैं तब वो वाली रोड, इन दोनों जगह पर आपको कचरा सड़क के किनारे मिल जाएगा। और जैसे ही बारिश होती है फिर उसके बाद वाह क्या कहने हैं।

बारिश के साथ साथ ये कीचड़ बन जाता है, फिर और भी ज्यादा गंदगी और बदबू बहुत तेज आती है। तो मैं अभी किसी के ऊपर दोष नहीं डालूंगा, बट हाँ ये जरूर बोलना चाहूंगा कि मैंने अपने सामने देखा है लोग बोरे भर भर के कचरा लेकर आ रहे हैं और वहां पर फेंक जा रहे हैं। दैट्स नॉट अ डंपिंग स्पॉट ब्रो, मत डालिए वहां पर। आपके घर पर वो जो सफाई कर्मचारी कलेक्ट करने आते हैं ना, उनको दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, यही रिक्वेस्ट है मेरी सभी से। और इसी के साथ साथ बस मैं यही बोलना चाहूंगा कि कचरे में आग लगाना बंद कर दीजिए। खैर आज तो बारिश हो गई तो इस वजह से आग आज काम करेगी नहीं, बट कल परसों मैं देख रहा था कुछ लोग आग जला रहे थे, हाँ कचरे में आग लगा रहे थे। तो ऐसा नहीं करना है मेरे दोस्त, ऐसा नहीं करना है। क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो, ऐसे मत करो यार। चलिए अभी रेडियो महारानी सुनते जाइए, जन्माष्टमी आने वाली है बस कुछ ही दिनों में, करेंगे उसके बारे में बात, मगर अभी चलिए आप लोगों के लिए रेडियो महारानी पर एक गाना चला रहा हूँ। वापस आकर और भी ढेरों बातें होती रहेंगी। मैं हूँ गौरव आपके साथ, आप सुन रहे शो HR 896।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

आपको पता है अगर आप लोग अपने सपने में अपने आप को ड्रिंक करते हुए देखते हैं तो ये एक शुभ संकेत माना जाता है। मैं तो अजीब ही चीज सोचता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे मन में आया और मैंने सोचा चलो आज इस चीज को ना क्यों ना डीकोड करें। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, रेडियो का गौरव आप सभी का स्वागत करता है रेडियो महारानी 89.6 पर। देखो हर सपने का एक मतलब होता है और वक्त हो चुका है सपनों को डीकोड करने का। देखो बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस होती है, अगर आप ड्रिंक कर रहे हैं सपने में तो इसका क्या मतलब है, खुद को अगर ड्रिंक करते हुए देख रहे हो तो इसका मतलब है आने वाले समय में आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, अच्छी किस्मत, या फिर आपके बिजनेस में फायदा होने के कुछ सिम्टम्स है, संकेत है ये कह सकते हैं। और अगर आप विस्की की दुकान पर खड़े, लिकर शॉप पर खड़े हैं तो इसको थोड़ा सा अशुभ माना जाता है, ये दर्शाता है कि आने वाले टाइम में आपको थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर किसी दोस्त को ड्रिंक करते हुए देख रहे हो आप तो इसका मतलब है कि आने वाले टाइम में आपको अपने दोस्त या किसी खास व्यक्ति से मदद मिलने वाली है। अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें होती है, काफ़ी बार ऐसा होता है हम सपने में ना प्रवचन दे रहे होते हैं, किसी और को समझाते हैं कि भाई नहीं नहीं ऐसी चीज़ें मत कर, गलत चीज़ें हैं ये, पार्टी करना अच्छी बात है बट कभी कभी करना सही है, रोज़ रोज़ नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप ड्रिंक्स को फेंक रहे हैं, आप पार्टी में गए हैं और आप ड्रिंक्स को फेंक रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ और बुराइयाँ जल्द ही खत्म होने वाली, आप खुद से उनको खत्म कर दोगे। अच्छा अब इस चीज़ में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम लोग सपने में देखते हैं हम अपने दोस्त के साथ पार्टी कर रहे हैं या फिर किसके साथ कर रहे हैं, फैमिली के किसी कज़न के साथ कर रहे हैं या फिर किसके साथ कर रहे हैं, इसमें बहुत मतलब डिफरेंट चीज़ें होती है। तो अगर सपने का सही मतलब निकाले ना तो दोस्त के साथ अगर आप बैठे हैं तो इसका मतलब है मुसीबत में आपको मदद मिलने वाली है और आपका आपसी रिश्ता मजबूत होने वाला है। और एक और चीज़ है, काफ़ी बार ऐसा होता है ना हमारा बर्थडे आने वाला होता है तो हम लोगों के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट रहती है, हम लोगों के सपने में भी यही चीज़ यही सारी चीज़ें आ रही होती है कि हम लोग कहाँ पार्टी करेंगे। तो अगर खुशी का माहौल देख रहे हो आप तो समझ लो आपके दोस्तों के सर्कल में कोई सेलिब्रेशन या खुशखबरी आने वाली है। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, ऐसे ही और भी सपनों को डीकोड करते रहेंगे, मगर उससे पहले आप सभी के लिए ये गाना।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: जान पर।
1: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
2: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
1: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े हैं साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

जब बॉडी बन जाती है ना तो लोगों की आवाज यही होती है, आहा आहा क्या जबरदस्त बॉडी बना ली भाई तूने। आपको भी बोलते होंगे बहुत लोग, अगर जैसे ही आप लोग जिम जाते हो या फिर आप लोग कोई भी वर्कआउट करते हो एंड बॉडी से फैट रिड्यूस होता है और मसल जब बनने लग जाती है ना तो फिर लोगों के रिएक्शन देखने लायक होते हैं, फिर उस टाइम अपने आप को भी अच्छा सा लगने लग जाता है कि नहीं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव, आज गौरव इन द हाउस, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। वक्त हो चुका है जिम ब्रो का। एंड देखो मैं एक बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे आप सभी लोगों से कि जब भी आप जिम में जाते हैं ना तो आपके पास ना बहुत सारे लोग आएंगे जो कि आपको बहुत सारी चीज़ें एडवाइस करेंगे, बोलेंगे ई डबल ए ले लो, बी सी डबल ए ले लो, मल्टीविटामिन ले लो, फिश ऑयल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब कुछ बोलेंगे वो। बट जब आपको नीड है तभी तो आप लोगे ना उस चीज़ को। अब मान लेते हैं लोग आपसे बोल रहे हैं वाइटामिन डी के शॉट्स ले लो, हफ्ते में एक बार लेना होता है, ठीक है। बट वाइटामिन डी अगर आपका ऑलरेडी अच्छा है, अच्छे लेवल पर है, तो फिर क्यों लेना है और विटामिन डी की शॉट्स क्यों लें? हम तो धूप में भी खड़े हो सकते हैं ना सुबह सुबह। इसी तरह से विटामिन B12 भी होता है जो कि बॉडी में बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, तो कुछ लोग उसकी टैबलेट्स एडवाइस करते हैं। और ऐसा ही होता है कि लोग बोलते हैं स्किन क्वालिटी के लिए आप ईवियन 400 ले लो। तो आपको ये सब चीज़ें बिना किसी भी डॉक्टर के एडवाइस के नहीं लेनी है, क्या पता आपकी बॉडी में ऑलरेडी ये सब चीज़ें प्रेजेंट है। तो आप लोग अपने एक डॉक्टर से ज़रूर प्रिस्क्राइब कीजिए ये सब चीज़ें। और इसके साथ साथ एक चीज़ जो मैं खुद से एडवाइस करूंगा आप लोगों को कि आप लोग प्रोटीन इंटेक को ज़रूर बढ़ाइए अगर आप लोग जिम जाते हैं या फिर आप कुछ भी वर्कआउट करते हैं एक्स वाई जेड। अब प्रोटीन का मतलब ये नहीं है कि आप जाते ही आज तुरंत ऑनलाइन एक प्रोटीन ब्रांड से प्रोटीन मंगवा लोगे, वे प्रोटीन मंगा लिया, हाइड्रोलाइज मंगा लिया, आइसोलेट मंगा लिया। नहीं नहीं ऐसा नहीं करना आप लोगों को, आपको अपनी बॉडी की ज़रूरत के हिसाब से देखना है। अब अगर आप एक नॉर्मल वर्कआउट करते हैं डेली बेसिस पे, आप वॉक कर रहे हैं, आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, तो प्रोटीन की नीड तो है, प्रोटीन की नीड तो डेली हमारी बॉडी को होती है। तो आप लोग प्रोटीन के सोर्सेज देखिए, आप लोग क्या क्या खा सकते हैं। और अब तो जेमिनी जीपीटी सबके पास है, तो उनसे पूछिए कि आप लोग क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं। फिर अगर आपका खाने से प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं हो रहा तब आप सप्लीमेंट के तौर पर वे प्रोटीन का इस्तेमाल कर सकते हैं, नथिंग मोर देन दैट, इट्स सो सिंपल। और चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए जिम ब्रो की, ये थी आज की एडवाइस। और अभी आप सभी के लिए रेडियो महारानी पर ये गाना, मैं हूँ गौरव आपके साथ।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मौसम अच्छा हो गया, मूड वो भी अच्छा हो गया, बस अब अच्छा सा कुछ खाने को मिल जाए घर जाते जाते, तब तो मजा सा ही आ जाता है कि नहीं। रेडियो का गौरव, आरजे गौरव। जी आरजे गौरव इन द हाउस, स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। 8:50 मेरी स्टूडियो क्लॉक में, और मैं जो ये बात बोल रहा हूँ ना, पूरा दिन कैसा ही गया हो आपका, भले ही अच्छा गया हो या बुरा गया हो, अगर रात का खाना आपका, शाम का मीन्स स्नैक्स या फिर रात का मेन कोर्स, अगर आपको अच्छा सा नहीं मिला तो फिर पूरे दिन पर ऐसा लगता है पानी फिर गया है। और कुछ लोग तो रात की डाइट भी नहीं लेते, मतलब रात को खाना ही नहीं खाते वो लोग, वो कहते हैं नहीं नहीं रात का खाना खाना ही नहीं चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना, थोड़ा सा खा ही सकते हैं। खैर, जो भी लोग खुद से डॉक्टर बनते हैं ऐसा करना बंद कर दीजिए, इसके बारे में भी कभी और बात करेंगे। बट अभी मैं बोलना चाहता हूँ, देखो शाम का टाइम है, आज बारिश भी हुई है, मौसम भी ठंडा ठंडा सा बिल्कुल सा है, तो कहीं जलेबी मिल जाए तो एक आध पीस जलेबी तो खा ही सकते हैं कभी कभार। और इसी के साथ साथ अगर कुछ अच्छा सा खाने को मिल जाए इस टाइम, मज़ा सा नहीं आ जाएगा? तो यही चीज़ ढूंढने के लिए मैं निकल रहा हूँ यहाँ से, तो मतलब इजाज़त ले रहा हूँ आप लोगों से, मैं निकलता हूँ। और फरीदाबाद में क्या क्या चीज़ें बढ़िया बढ़िया मिलती है शाम के टाइम पे, आप लोग बताइएगा ज़रूर। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी मैंने नहीं ट्राई की है फरीदाबाद में, वो भी मैं ट्राई करूँगा। तो इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। वापस आएगी गीत विदेश कुमार, यहाँ प्यार भरी बातें, प्यार भरे गाने लेकर, एंड मैं मिलूंगा आप सभी से कल शाम फिर से 5 से 9। पहले 5 से 8 आता था, 5 से 9 आता हूँ, पूरे 4 घंटे आप लोगों के साथ बातें करता हूँ। तो अभी फिलहाल बाय बाय, टेक केयर, दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी। और ये जो गाना चल रहा है ना पीछे, पारो
1: पारो,
0: बिल्कुल ओरिजिनल आवाज में सुनिए इसको, रेडियो महारानी।

0: सेहत से बड़ी कोई प्रायोरिटी नहीं होती। चेक करो, सॉर्ट करो, एक्सपायर हुई मेडिसिंस को अलग करो, क्योंकि दवा जब तक सही हो।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

रात के इस वक्त में ना कुछ बातें कहने के लिए आवाज की जरूरत नहीं होती, कुछ बातें बस महसूस होती हैं और कुछ अल्फाज बिना इजाजत लिए सीधा दिल तक उतर जाते हैं। तो चलिए आज मिलते हैं उन अल्फाजों से जो शायद किसी शायर ने कागज पर लिखे थे, लेकिन असल में वो हमारी जिंदगी के लिए थे। वेलकम टू इश्क बाजियां और मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत, और आप सुन रहे हैं रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके, और ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट इश्क शायराना। इस सेगमेंट में हम बात करते हैं शायरों की, उनकी शायरी की और उस एहसास की जो कभी उनके जमाने का था लेकिन आज भी हमारी जिंदगी में उतना ही जिंदा है। आज की रात बात होगी एक ऐसे ही शायर की जिनकी शायरी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये है शकील आजमी साहब, एक ऐसे शायर जिनके अल्फाज आपको सिर्फ मोहब्बत नहीं सिखाते, वो आपको जिंदगी जीना सिखाते हैं। वो कहते हैं, खुद को इतना भी ना बचाया कर, बारिशें हो तो भी जाया कर। और शायद आज की हमारी जनरेशन को इससे बेहतर सलाह चाहिए ही नहीं। हम हर चीज से बच रहे हैं, हार्ट ब्रेक से, रिजेक्शन से, लोगों के ओपिनियन से, और इन सब से बचते बचते हम अपनी ही जिंदगी से तो नहीं बच रहे। तो आज की रात थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा दिल खुला छोड़िए, शायद कोई शेर आपको वो बात कह दे जो आप खुद से भी नहीं कह पा रहे हैं। इश्क शायराना में आज की रात शकील आजमी के नाम, और अब इस एहसास को एक खूबसूरत गाने के साथ आगे बढ़ाते हैं। बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर, क्योंकि रात अभी बाकी है, बातें बाकी हैं और गाना भी आपका इंतजार कर रहा है।

वेलकम बैक इश्क की उसी खूबसूरत रात में जहाँ कुछ शेर सुनकर लगता है अरे ये तो मेरे लिए लिखा गया है। मैं हूँ आपके साथ आपके इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां रेडियो महारानी 89.6 FM पर। आज शकील आजमी साहब की नज्म को थोड़ा महसूस करते हैं। कहा है इन्होंने खुद को इतना भी ना बचाया कर बारिशें हो तो भीग जाया कर। कितनी छोटी सी बात है लेकिन हमारी पूरी जिंदगी इसमें छिपी हुई है। हम कहते हैं मुझे फर्क नहीं पड़ता जबकि पड़ता है। हम कहते हैं मैं ठीक हूँ जबकि हम ठीक नहीं होते। हम किसी को मिस करते हैं लेकिन मैसेज नहीं करते। किसी से प्यार करते हैं लेकिन कहने से डरते हैं। किसी के साथ हंसना चाहते हैं लेकिन अपनी फीलिंग्स को लेकर इतने ज्यादा नर्वस होते हैं कि मुस्कुराना भी सोच समझ कर करना पड़ता है। और फिर वो कहते हैं काम ले कुछ हसीन होठों से बातों ही बातों में मुस्कुराया कर। मतलब हर बात का सलूशन सीरियस होना नहीं है। कभी कभी बातों ही बातों में मुस्कुरा भी लिया करो। किसी की बात अच्छी लगे तो बता दिया करो। किसी की मौजूदगी दिल को सुकून दे तो उसे महसूस किया करो क्योंकि जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद वही होता है जो हमने प्लान नहीं किया होता। तो आज की रात अगर बारिश हो तो भीग जाइए, अगर किसी की याद आए तो याद आने दीजिए और अगर दिल मुस्कुराना चाहता है तो उसे रोकिए मत। स्टे ट्यून इश्क बाजियां पर क्योंकि अगला एहसास भी आपका यही इंतजार कर रहा है।

Namaste, myself Dr. Rajni Beniwal. I am a dentist and a nutritional psychologist. Over 13 years of experience, I'm a women health coach and a teen parenting expert. So, हमारी daily diet में nutrition balance maintain करना क्यों जरूरी है? Nutrition और food हमारी life का basic fuel है. अगर हम सही amount of food नहीं खाएंगे, सही quality of food नहीं खाएंगे, तो हमारी body का balance definitely बिगड़ जाएगा. हम लोग गो की बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है अलग अलग वर्क काम करने के लिए. हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा थोड़े अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, प्रोटीन्स की थोड़ी ज्यादा जरूरत है, मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, और कुछ हेल्दी फैट्स की बहुत जरूरत है. एंड द बेसिक थिंग इज हाइड्रेशन, एक कंप्लीट अमाउंट में वाटर इनटेक मस्ट. तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हैं. अब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स, इन सबके सोर्सेस का हमें पता होना बहुत जरूरी है. और कार्बोहाइड्रेट्स हमें अनाज से मिलता है, विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें अलग अलग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें मिल्क प्रोडक्ट्स से मिलते हैं, गुड फैट्स हमें नट्स से मिलते हैं, सीड्स से मिलते हैं, एक अच्छा गाय का देसी घी से हमें बहुत अच्छा गुड फैट मिलता है. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेजरली पार्ट इज प्रोटीन्स. प्रोटीन्स हमें दाल और बहुत सारे चीज, पनीर और मीट, एग, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है. और अच्छा अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है. ये सब चीज़ें जब बैलेंस्ड रहेंगी तभी हमारी बॉडी में हर एक चीज़ बैलेंस तरीके से काम कर पाएगी, सारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे. तो न्यूट्रिशन का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, और न्यूट्रिशन को समझ के खाना खाना ही आज की बेसिक रिक्वायरमेंट है. डॉक्टर कॉलिंग.

कभी कभी हमारी जिंदगी में दर्द आता है ना, तो हमें लगता है कि बस अब इससे बुरा क्या होगा, लेकिन शायद दर्द हमेशा हमें तोड़ने नहीं आता, कभी कभी वो

करेगा, हमें प्यार करेगा, तब हम खुश होंगे। लेकिन क्यों किसी और के हाथ में अपनी खुशी की चाबी क्यों रखनी? कभी कभी खुद से कहना चाहिए, मैं अकेली हूँ तो भी पूरी हूँ, मैं टूटी हूँ तो भी खूबसूरत हूँ, और मेरी रोशनी किसी और की मौजूदगी की मोहताज नहीं है। तो आज रात अपने चेहरे से थोड़ा सा जगमगाइए, किसी और के चांद का इंतजार मत कीजिए। और अगर ये बातें आपके दिल के किसी कोने तक पहुंची हैं, तो उस एहसास को थोड़ा सा म्यूजिक देते हैं, क्योंकि रात अभी खत्म नहीं हुई है। आप रेडियो महारानी 89.6 पर बने रहिए। अगला गाना शायद आपके दिल की वो बात कह दे जो आप खुद से नहीं कह पाए हैं।

ऐसी होती हैं जिन्हें देखने के बाद आप बाहर निकलकर रिव्यू नहीं करते बल्कि थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूँ गीत और अब बात करेंगे उस फिल्म की जिसने लोगों को एंटरटेनमेंट के साथ स्पिरिचुअलिटी का भी डोज दिया है। नाम है हनुमान अंश। ये फिल्म नीम करोली बाबा की लाइफ और टीचिंग से इंस्पायर्ड है और ऑडियंस से इसे काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है। इमोशनल डेप्थ, फेथ और सोलफुल म्यूजिक इसकी खासियत बताए जा रहे हैं और इसका म्यूजिक भी लोगों को कनेक्ट कर रहा है। खासकर डिवोशनल ट्रैक पार्वती को लेकर बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। तो अगर पिछले कुछ दिनों से आपको लगता है कि सिनेमा में बस एक्शन, ड्रामा और क्योस ही चल रहा है, तो हनुमान अंश शायद वो फिल्म है जो थोड़ा पॉज बटन दबाती है, क्योंकि हर फिल्म आपको एंटरटेन नहीं करती, कुछ फिल्में आपको भीतर से भी टच कर जाती हैं।

फांसियां। कुछ शेर खत्म हो जाते हैं लेकिन उनका असर बहुत देर तक हमारे साथ रहता है, और शकील आजमी की ये नज्म भी शायद उन्हीं शेरों में से एक है। धूप मायूस लौट जाती है छत पे कपड़े सुखाने आया कर। कितनी ऑर्डिनरी सी तस्वीर है ना, छत, धूप, सूखते हुए कपड़े, लेकिन शायर उसमें भी अपनी जिंदगी ढूंढ लेता है। हमारी जिंदगी भी तो कुछ ऐसी है ना, कभी धूप बहुत तेज होती है, कभी बारिश बहुत ज्यादा, कभी कोई अपना साथ होता है, कभी कोई अचानक चला जाता है, लेकिन जिंदगी रुकती नहीं है। इसीलिए वो कहते हैं, घर से बाहर निकल हवाओं में, जुल्फ से खुशबुएं उड़ाया कर। मतलब बाहर निकलो, जिंदगी को सिर्फ स्क्रीन पर मत देखो, हवा को महसूस करो, लोगों से मिलो, हंसो, बातें करो, कुछ बनाओ, कोई तस्वीर, कोई अफसाना, कुछ ना कुछ रोज ही बनाया कर। क्योंकि शायद जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट ये नहीं होगा कि हमने कुछ खो दिया, बल्कि ये होगा कि हमने बहुत कुछ जीने की कोशिश ही नहीं की। और आखिर में वो कहते हैं, कौन कहता है दिल मिलाने को, कम से कम हाथ तो मिलाया कर। शायद हर रिश्ता मोहब्बत तक पहुंचे ये जरूरी नहीं, हर इंसान हमारा अपना बने ये भी जरूरी नहीं, लेकिन थोड़ी वार्मथ, थोड़ी काइंडनेस, थोड़ी इंसानियत, ये तो हम हर किसी को दे सकते हैं ना। तो आज की रात शकील आजमी हमें बस एक बात कहकर जा रहे हैं, खुद को बचाते बचाते जिंदगी से दूर मत हो जाना। थोड़ा भीगना, थोड़ा मुस्कुराना, थोड़ा टूटना, थोड़ा संभलना, और हर दिन अपने चेहरे से थोड़ा जगमगाना। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, और ये था हमारा आज का बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट इश्क शायराना इश्क बाजिया में। अब शायरी को थोड़ी देर के लिए खामोश करते हैं और म्यूजिक को बोलने देते हैं। स्टे ट्यून्ड रेडियो महारानी 89.6 पर, क्योंकि इश्क की रात अभी बाकी है। रेट्रो इश्क लेकर आने वाली हूँ बहुत ही जल्दी।

कभी कभी ना सबसे खूबसूरत लव स्टोरी वो होती है जिसके बारे में दुनिया को कम पता होता है। ना कोई फिल्मी डायलॉग, ना कोई ग्रैंड प्रपोजल, बस एक इंसान दूसरे इंसान को याद करता है और अपनी वो याद एक कागज पर लिख देता है। वेलकम टू इश्क बाजियां, मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, और ये है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेकंड सेगमेंट रेट्रो इश्क, सिर्फ रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। आज की कहानी किसी सुपरस्टार की नहीं, आज की कहानी है धीरू मिस्ट्री और कुसुम की। 1966 में धीरू की सगाई कुसुम से हुई। कुसुम अहमदाबाद में थी और धीरू वडोदरा में। उस टाइम ना व्हाट्सएप था ना वीडियो कॉल, और रेगुलर फोन कॉल भी कोई आसान चीज नहीं थी। तो दोनों ने कुछ ऐसा रास्ता चुना जो शायद आज बहुत पुराना लगता है, और वो रास्ता था चिट्ठियां, यानी कि खत। एक लेटर गया, फिर उसका इंतजार, फिर जवाब आया, फिर अगले जवाब का इंतजार, और धीरे धीरे ये लेटर्स सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं रहे, ये दोनों की जिंदगी का हिस्सा बन गए। 1967 में दोनों की शादी हो गई, लेकिन मोहब्बत की वो चिट्ठियां बंद नहीं हुई, क्योंकि कुछ रिश्तों में बात करना जरूरत नहीं होता, एक दूसरे की जिंदगी में बने रहना जरूरी होता है। तो आज की रात हम इसी छोटी सी मगर बहुत गहरी सी मोहब्बत की कहानी सुनेंगे रेट्रो इश्क पर। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि अगली कड़ी में मिलते हैं उन चिट्ठियों के साथ जिन्होंने दो लोगों के बीच की दूरी को छोटा कर दिया। आप बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर।

0: स्वागत है उस मोहब्बत की कहानी में जहां आई मिस यू लिखने के लिए कोई टाइपिंग बॉक्स नहीं था, पूरा एक कागज हुआ करता था। धीरू और कुसुम की शादी हो चुकी थी, लेकिन उनकी लव स्टोरी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शायद शादी के बाद भी चलता रहा। धीरू काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहा करते थे और जब दूरी बढ़ती थी तो एक चिट्ठी दोनों के बीच का ब्रिज बन जाती थी। धीरू बताते हैं कि जब कुसुम की चिट्ठी आती थी तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो उनके सामने बैठकर बात कर रही हो। सोचिए, आज हमारे पास किसी को याद करने के लिए बस एक सेकंड लगता है, एक मैसेज, एक कॉल, एक वीडियो कॉल, लेकिन उस दौर में किसी की आवाज सुनने से पहले शायद कई दिन इंतजार करना पड़ता था और फिर भी लोग रिश्ते निभाते थे। कुसुम चिट्ठियां भेजती, धीरू उन्हें पाने का इंतजार करते, कभी उन्हें लेने के लिए मुंबई तक जाना पड़ता। आज हम कहते हैं रिप्लाई नहीं किया, मतलब इंटरेस्ट नहीं है। उस दौर में रिप्लाई आने में दिन लग जाते थे और फिर भी प्यार कम नहीं था। शायद फर्क टेक्नोलॉजी में नहीं था, फर्क पेशेंस में था। उन दोनों ने 58 साल साथ बिताए और धीरू के पास आज भी उन दोनों के बीच के एक्सचेंज्ड 1000 से ज्यादा हैंड रिटन लेटर्स हैं। कुछ लोग मेमोरीज को फोटोग्राफ्स में रखते हैं। उन्होंने अपनी मोहब्बत को कागज पर संभाल कर रखा और अब इस खूबसूरत एहसास के साथ एक खूबसूरत गाना हो जाए। स्टे ट्यून्ड रेडियो महारानी 89.6 FM पर। रेट्रो इश्क में कहानी अभी बाकी है।
1: शिखर, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया है?
2: हाँ, एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसी, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं? वो किसी और को चाहती है।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए। डॉक्टर कॉलिंग।

मैं कभी कभी सोचती हूँ, अगर किसी रिश्ते की असली कीमत जाननी हो तो उसके ग्रैंड मोमेंट्स मत देखिए, उसकी छोटी छोटी आदतें देखिए। कौन किसकी चिट्ठी का इंतजार करता था, कौन किसकी पसंद याद रखता था, कौन दूर होकर भी दूसरों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाए रखता था। धीरू और कुसुम की कहानी में रोमांस कुछ ऐसा ही था। उनकी मोहब्बत कोई एक बहुत बड़ी घटना नहीं थी, वो सैकड़ों हजारों बातों से बनी थी। एक लेटर में शायद दिन भर का हाल था, कहीं कोई छोटी शिकायत, कहीं कोई याद, और शायद कहीं बस इतना ही, आज तुम्हारी बहुत याद आई। और यही तो प्यार है ना, हर बार आई लव यू बोलना जरूरी नहीं, कभी कभी बस ये पूछ लेना, खाना खा लिया, दूर रहकर भी दूसरों की जिंदगी में मौजूद रहना। और सबसे खूबसूरत बात कि शादी के बाद भी उन्होंने लेटर्स लिखना छोड़ा नहीं था। 58 साल साथ रहने के बाद कुसुम चली गई, लेकिन उनकी आवाज उन कागजों में रह गई। आज धीरू उन लेटर्स को अपने पास संभाल कर रखते हैं, क्योंकि कुछ चीजें पुरानी नहीं होती, स्याही फीकी पड़ सकती है, कागज पीला हो सकता है, लेकिन जिस इंसान ने वो शब्द लिखे थे उसकी याद कभी पुरानी नहीं होती। और शायद इसी को कहते हैं मोहब्बत का बचे रह जाना। और अब कुछ देर के लिए इन शब्दों को खामोश करते हैं और म्यूजिक को बोलने देते हैं। आप जुड़े रहिए मेरे साथ इश्क बाजिया में।

ठीक ऐसा घर जहाँ लोग पहले दिन बोलते हैं मैं किसी से लड़ने नहीं आया हूँ, और फिर तीसरे दिन ही आपने मेरा नाम नॉमिनेशन में क्यों लिया। वेलकम टू सिनेमा कैप्सूल, मैं हूँ गीत, और अब सिनेमा घूमने वाला है उस घर की तरफ जहाँ प्रिवेसी नहीं लेकिन ड्रामा अनलिमिटेड है। जी हाँ, बिग बॉस 20 की तैयारी पूरे रफ्तार पे है और सलमान खान एक बार फिर से होस्ट के रूप में वापस आ रहे हैं। शो का प्रीमियर 6 सितंबर को स्केड्यूल्ड है। इस बार जिन नामों की कॉन्टेस्ट लिस्ट में सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से है कुशल, तनवर, अकागुल्लू, खुशी दुबे, गीता बसरा, मैरी कॉम, काजी तकी, विक्रांत सिंह राजपूत, आशिफा खान, ईशा रिखी, शोविक चक्रवर्ती और आम्रपाली दुबे जैसे नाम शामिल है। और ट्विस्ट ये भी है कि रिया अहीर और लव गिल में से एक को ऑडियंस वोटिंग के जरिए डे वन एंट्री मिलने की बात भी सामने आई है। अब बस देखना यह है कि इस घर में पहले प्यार होता है, दोस्ती होती है या नॉमिनेशन। तो इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ सिनेमा का कैप्सूल में।

था, बस दो लोग थे, दो शहर थे, कुछ दूरियां थी, उन दूरियों के बीच आती जाती चिट्ठियां थी, धीरू और कुसुम। रेट्रो इश्क में कहानी थी धीरू और कुसुम की। आज कुसुम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन धीरू के पास उनकी लिखी हुई पूरी एक दुनिया है, हजार से ज्यादा लेटर्स की दुनिया, और शायद यही बात इस कहानी को इतना ज्यादा खूबसूरत बनाती है। हम अक्सर कहते हैं काश वो वक्त वापस आ जाए, लेकिन वक्त वापस नहीं आता। हाँ, उसकी कुछ निशानियां रह जाती हैं किसी पुरानी तस्वीर में, और शायद प्यार की सबसे खूबसूरत डेफिनेशन यही है, इंसान चला जाए लेकिन उसकी मौजूदगी आपकी जिंदगी में पूरी तरह से न जाए। किसी पुराने कागज को खोलो तो उसकी लिखावट में उसकी आवाज सुनाई दे, कोई पुराना गाना बजे तो वो इंसान अचानक आपके पास बैठा हुआ लगे। यही है रेट्रो इश्क, पुराने वक्त की कहानी लेकिन एहसास बिल्कुल आज का। मैं हूँ आपके साथ आपकी इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब इस कहानी को एक खूबसूरत धुन के साथ विदा करते हैं। कुछ कहानियां सुनाई नहीं जाती, संभाल कर रखी जाती है, और ये कहानी उन्हीं में से एक थी। स्टे ट्यून्ड, अगली

वेलकम बैक, मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। और आज मैं बात कर रही हूं एक ऐसे वर्ड की जो सुनने में बड़ा मॉडर्न सा लगता है लेकिन इसने बहुत सारे दिल जो है वो कंफ्यूज किए हैं। नाम है सिचुएशनशिप। आपने सुना भी होगा, वैसे बहुत लोग जानते हैं सिचुएशनशिप के बारे में। अब सवाल ये है, आखिर सिचुएशनशिप होती ही क्यों है? क्योंकि क्या होती है ये हमें मालूम है, लेकिन होती क्यों है? देखिए, कई बार वजह बहुत बुरी नहीं होती है। कभी किसी को कमिटमेंट का डर होता है, कभी कोई अपने करियर पर फोकस कर रहा होता है, कभी किसी का दिल पहले ही टूट चुका होता है, और कभी लोग बस किसी को खोना नहीं चाहते हैं और पाना भी नहीं चाहते हैं, है ना? बहुत अजीब सी है ना ये सिचुएशनशिप। यानी भाई, आपको बेनिफिट्स पूरे रिलेशनशिप वाले मिलेंगे लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बाद में कर लेंगे, और यहीं से कंफ्यूजन जो है वो शुरू हो जाती है। रोज बात होगी, केयर भी होगी, जलसे भी होगी, वीकेंड्स प्लान भी होंगे, लेकिन जैसे ही कोई पूछ ले हम दोनों का रिश्ता क्या है, बस वहीं साइलेंस आ जाता है। और याद रखिए, क्लैरिटी को डिले करना भी कभी कभी एक आंसर होता है। इसीलिए अगर कोई रिश्ता आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा है तो सिर्फ ये मत देखिए कि सामने वाला क्या बोल रहा है, ये भी देखिए कि वो कंसिस्टेंटली कर क्या रहा है। क्योंकि हेल्दी रिलेशनशिप में बटरफ्लाईज हो सकती है लेकिन रोज रोज कंफ्यूजन नहीं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और थोड़ी देर में मैं बात करूंगी, अगर आप सिचुएशनशिप में हैं तो उसे पहचानना और हैंडल करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

89.6 रेडियो महारानी कुछ कुछ कुछ कुछ कुछ हटके।

गाने के साथ स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आज हम बात कर रहे हैं सिचुएशनशिप की। और अगर अभी तक आपको लग रहा है कि यार शायद मेरे वाला केस भी थोड़ा सा ऐसा ही है, तो जरा ध्यान से सुनिए। देखिए, हर रिश्ता लेबल मांगे ये जरूरी तो नहीं, लेकिन हर रिश्ता क्लैरिटी जरूर मांगता है। अगर आप हमेशा उसके अकॉर्डिंग अवेलेबल हैं, लेकिन वो आपके अकॉर्डिंग कभी भी नहीं है, थोड़ा सोचिए। अगर हर वीकेंड प्लान तो आपके साथ है, लेकिन फ्यूचर का एक भी प्लान आपके साथ नहीं है, थोड़ा सा सोचिए। और अगर आप दोनों कपल वाली सारी चीजें कर रहे हैं, बस हम रिलेशनशिप में हैं ये कहने से एलर्जी है, तो बॉस रिपोर्ट कार्ड कुछ और ही कह रहा है। वैसे आजकल लोग आई नीड स्पेस इतनी बार बोलते हैं कि लगता है डायरेक्ट नासा से रिक्रूटमेंट चल रही है। स्पेस दीजिए, बिल्कुल दीजिए, लेकिन किसी को इतना भी स्पेस मत दीजिए कि वो आपकी जिंदगी से ही आउट ऑफ ऑर्बिट हो जाए। और एक बात याद रखिए, जहाँ आपको अपनी वैल्यू बार बार एक्सप्लेन करनी पड़े, वहाँ रुककर सिर्फ उम्मीद पड़ती है, रिश्ता नहीं। रिश्ते वो होते हैं जहाँ बातें गैस नहीं समझी जाती हैं। मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत और ये चल रहा है रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गीतांजलि केसरी है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यथार्थ हॉस्पिटल सेक्टर 20 में हूँ और आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम ऐसी कौन सी चीज़ें कर सकते हैं जिससे हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो, जो हम कर सकते हैं रोज, इजी बेसिक चीज़ें ऐसी। सबसे पहले हम बेसिक मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होगा। दूसरी चीज़ें जो हम कर सकते हैं वो है बेसिक मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज। मेरे पास कई मरीज आते हैं जो बोलते हैं कि हम मॉर्निंग में नहीं कर सकते, मॉर्निंग में बिजी होते हैं। तो मैंने नहीं बोला कि आप मॉर्निंग में एक्सरसाइज करिए, मैंने कहा मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज करिए, चाहे कभी भी करिए। डॉक्टर कॉलिंग।

0: इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजिया, मैं हूँ आपकी इश्क वाली गीत। तो आज का रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड का वक्त यहीं खत्म होता है। देखिए, सिचुएशनशिप बुरी है या अच्छी ये मैं डिसाइड नहीं करने वाली। हो सकता है दो लोगों के लिए वो फेज बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है दोनों एक ही पेज पर होने चाहिए। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब एक इंसान फ्यूचर देख रहा है और दूसरा सिर्फ फ्राइडे इवनिंग। और वैसे भी आजकल सीन का रिप्लाई 3 दिन बाद आता है, लेकिन इंस्टाग्राम स्टोरी 2 सेकंड में देख ली जाती है। टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है बॉस, बस फीलिंग का नेटवर्क कभी कभी वीक हो जाता है। अगर कोई बार बार बोले देखते हैं, सोचेंगे, अभी टाइम है, तो कभी कभी दिल से भी पूछ लीजिएगा और कितना टाइम है, क्योंकि मोहब्बत में पेशेंस बहुत खूबसूरत होता है, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। और एक बात, अपनी वैल्यू कभी किसी के मिक्स्ड सिग्नल से मत मापिए। जो इंसान आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, उसके मैसेजेस से पहले उसकी नीयत क्लियर होती है। और जो सिर्फ ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है, उसके पास एक्सक्यूजेस हमेशा अनलिमिटेड होते हैं। तो दोस्तों, प्यार कीजिए, दिल खोल कर कीजिए, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का पासवर्ड कभी भी किसी के हाथ में मत दीजिएगा। और हाँ, रेड फ्लैग्स को क्यूट हैबिट बोलकर इग्नोर मत करिएगा, वरना बाद में ये मत कहना यार मुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था। इसी के साथ मैं हूँ आपके इश्क वाली गीत। तो मैं मिलूंगी फिर से आपको रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड में एक और जेन जी रिलेशनशिप ट्रेंड का एक रिपोर्ट लेकर। तब तक अपने दिल को थोड़ा सा वक्त दीजिए, अपनों को थोड़ा सा वक्त दीजिए, और याद रखिए जो रिश्ता बार बार एक्सप्लेन करना पड़े, शायद उससे निभाने से पहले समझना ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं चलती हूँ, आप मुझे इजाजत दीजिए, आप मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए, और हाँ, दिल से ऑनलाइन रहिए, पर हर किसी के लिए अवेलेबल मत रहिए। साइनिंग ऑफ, गुड नाइट, रब राखा।
1: कभी उसे नूर नूर कहता हूँ,

0: रहना आंखों आंखों में ही रहना आंखों आंखों में ही रहना।
1: सिनेमा का कैप्सूल।
2: कभी नोटिस किया है बॉलीवुड में एक फिल्म आती है फिर उसकी कहानी से ज्यादा चर्चा होती है, किसने क्या कहा, किसने क्या किया और किसका क्या रिएक्शन आया। वेलकम टू सिनेमा का कैप्सूल, मैं हूं गीत और अब बात करते हैं उस चीज की जो आजकल फिल्मों जितनी ही इम्पोर्टेंट हो गई है, ओटीटी और एंटरटेनमेंट की दुनिया में क्या चल रहा है। तो इस हफ्ते ओटीटी पर भी नए टाइटल्स ने एंट्री ली है, कुछ मिस्ट्री लेकर आए हैं, कुछ ड्रामा, कुछ थ्रिलर और कुछ ऐसे जिन्हें देखकर आप सोचेंगे ये मैंने कब अपनी वॉच लिस्ट में डाल दिया था। बबीता सिंह रिपोर्टिंग, चुंबक, पार्ट टाइमर्स, द विस्पर मैन, डार्क मैटर सीजन 2 और ग्रेवयार्ड सीजन 3 जैसे टाइटल्स इस हफ्ते अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए रेडी हैं। तो मंडे हो या संडे एंटरटेनमेंट की कोई छुट्टी नहीं होती, बस आपकी वॉच लिस्ट में एक चीज की कमी होती है, वो है टाइम। तो मैं हूँ गीत, आप सुन रहे थे सिनेमा का कैप्सूल, जहाँ सिनेमा की दुनिया की हर इंटरेस्टिंग अपडेट मिलती है थोड़े से मसाले और ढेर सारी मस्ती के साथ।

बदला है, रिश्ते बदले हैं और उनके साथ बदल गई है उनकी डिक्शनरी भी। मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। अब वक्त हो गया है हमारे तीसरे सेगमेंट का, रिश्तों का रिपोर्ट कार्ड। यहाँ ना किसी को पास करना है ना किसी को फेल, यहाँ हम सिर्फ समझाने की कोशिश करते हैं और समझने की भी कि आखिर आज के रिश्तों में चल क्या रहा है। क्योंकि आजकल रिलेशनशिप से ज्यादा जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो ट्रेंडिंग है, कभी होस्टिंग, कभी ब्रेड क्रमिंग, कभी लव बॉम्बिंग और कभी एक ऐसा वर्ड जिसे सुनकर लगता है यार ये क्या है एग्जैक्टली, लेकिन असल में होता कुछ और है। इट्स नॉट अ रिलेशनशिप, इट्स जस्ट अ सिचुएशनशिप। और आपने सिर्फ मुस्कुरा कर हाँ हाँ बोल दिया हो तो टेंशन मत लीजिए, आज के बाद आप सिर्फ इस वर्ड का मतलब ही नहीं बल्कि इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ जाएंगे। तो चलिए खुलते हैं आज के रिश्तों के रिपोर्ट कार्ड के नए पन्ने और देखते हैं कि आखिर ये सिचुएशनशिप आखिर है क्या। लेकिन वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है इश्क बाजियां।

महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी। काम, क्रोध और लोभ नरक के तीन द्वार हैं। श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जब मनुष्य अपने कर्मों के फल की इच्छा रखता है तो उसके मन में काम की उत्पत्ति होती है, और जब कामनाओं की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है। काम की उत्पत्ति का एक कारण लोभ भी है। इसीलिए श्री कृष्ण बताते हैं कि इंद्रियां और मन ही काम का जन्म स्थल है। इसीलिए अगर काम रूपी इस दुश्मन को हराना है तो अपनी इंद्रियों को वश में करना सीखो।

0: से आज तक कभी किसी का मंगल नहीं हुआ है। यह आपके समस्त गुणों का नाश कर देता है।
1: सत्य है ना, जैसे सूर्य प्रकाशित हुआ तो अंधकार हटाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ा, ऐसे आप सत्य को धारण केवल कीजिए, फिर आप देखिए प्रकाश में हो जाए।
0: इसलिए क्रोध की संगति से दूर रहें। रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं स्पिरिचुअल गुरु प्रेमानंद जी के विचार।
2: एक ही उपाय है, गुरुदेव की शरण। जैसे हित हरिवंश विचारी के मनुज देह गुरु चरण गए, सकहि तो सब परपंच तजी कृष्ण कृष्ण गोविंद कहे। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कह रहे हैं, विचार करके देख लो सार क्या है। जितना तुम कुछ जो भी कर रहे हो इसमें सार क्या है? यदि भजन नहीं हो रहा तो आप निशा व्यर्थ है तुम्हारा जीवन। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान त्रिप्यामी। वो मरा हुआ डोल रहा है, मुर्दा है। आप कहोगे किसी जीवित को मुर्दा कैसे कह सकते हो? जो विषयों के अधीन है, भोगों के अधीन है, मलिनता को लिए हुए विचर रहा है, वो मरा हुआ ही तो है। जीवित तो तभी माना जाए जब वो निर्विषय हो जाए, सच्चिदानंद भगवान के रस में डूब जाए। तो कैसे इससे हम आगे बढ़े, माया प्रपंच से कैसे आगे बढ़े? हमारा मन तो बड़ा मलिन हो गया, और भजन साधन निर्मल मन से होता है। तो बोले गुरुदेव की शरण लो, विचार करो, कोई और उपाय नहीं। जैसी हरिवंश विचार कह मनुज देह गुरु चरण गए। ये मनुज देह की सार्थकता गुरु चरणों में क्या बहुत दुर्लभ है। सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना आप लोगों को अनुभव भी नहीं आ रहा, इसलिए कि आपके अंदर भूख नहीं है प्रियालाल की। अगर भूख होती ना तो फिर आपको जो स्वाद मिलता फिर आप कह देते पायो जी पायो, मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, जिस दिन बढ़त सवाय। उपदेश दे देना, मंत्र दे देना कृपा का लक्षण है। आपके ऊपर कृपा है इसलिए मिल गई। लेकिन हाथ पकड़ के श्री जी के हाथ में दे देना बड़ा दुर्लभ विषय है। ये एक सदगुरु भगवान ही ऐसी कृपा करते हैं कि अपने जैसे अधमों को उपदेश मंत्र नाम और शासन और दुलार, इसके द्वारा हमारे मन को अधीन करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देते हैं। इस मल को केवल सदगुरु रूपी रीठा ही साफ कर सकता है, दूसरा नहीं। हरि आपको डांटेंगे नहीं, हरि तो बोल दिए अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो तुम करोगे भोगोगे। लेकिन सदगुरु ऐसा नहीं, करो तुम भोगेंगे हम चिंता मत करो, ये बात कहीं नहीं मिलेगी। तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। महाप्रभु हरिवंश गुरु है, गुरु हरिवंश क्या कह रहे, तिहारे आगले पाछले अपराध हरिवंश खेवी। ए शरणागत तू चिंता मत कर, चिंतन कर मेरी प्रियाजू का, अगर भूल चूक से अपराध बन जाएंगे मैं उसे भोगूंगा, तुम चलो श्री जी के पास। ये त्रिभुवन में ऐसा दयालु कोई नहीं गुरुदेव जैसा। वो हमारे क्षुद्र दोषों को ना देख करके अपनी कृपा से हमें वो महान रस देते हैं जो किसी साधना से नहीं मिलता है। अगर गुरु सानिध्य मिल गया है तो प्रमाद मत करना कभी, बहुत बढ़िया अवसर मिला है निकल जाओ। आपको विशेष साधना नहीं करनी पड़ेगी, नौका में बैठे हो हिलो डुलो मत, उसका बैलेंस मत बिगाड़ो। यद्यपि डूबेगी नहीं